0: पक्षी पक्षी न भैया अन्न मलत
1: ये मेरे भाई
0: ये तो गए राजा।

印度德里广播电台，刚才播放的歌是拉塔和苏里斯瓦特克唱的，我说错了，对不起。下一首歌是拉塔唱的，请收听。

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रामचरित मानस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800

मंगुंजुं की माचा डी रुमा साकी तेंपा दिया मंजलानी परावतान अमेरिका असरी कातेला मनेतापकान लीमा पुलु नगेरा यंग वार्गान्या दिकना कंजामनान वीजा हिंगा दुआ पुलु रिबू डॉलर अमेरिका असरी कात उन तक वीसा विसाता दन बिजनेस समेंतारा इंडिया दी कचवाली का अंदाड़ी का तेंतुआंतर सबूत यंग मंचाकुप नगेरा नगेरा आसिया सलातान सपर्ती बांग्लादेश भूटान दान नेपाल डिपार्टमेंट लुआर नगरी अमेरिका सरी का मलेरीज दफ्तर तरबारू नगेरा नगेरा यंग वर्गानिया हारुस मंबरी कान जामनियन फाइनेंस एन सतेला ममनुही सियारत उन्तुक मंदापत कान वीजा B1 B2 डी सीनी सियारान लुआर नगरी ऑल इंडिया रेडियो तेंगा मनियाम पाइकान वार्ता बरीता प्रेसिडेंट अमेरिका सरी का डोनाल्ड ट्रंप मनेपिस कमुंकिनन पनेरापन पंबतासन तरहादा पंगिरीमान डीजल अमेरिका सरी का सतेला नगेरा नगेरा एरोपा बर कमिटमेंट उन्तुक मनिकात कान कतर सेदियान बहान बाकर दी पासार देंगान मनियाता कान बाहवा ताम बहान पासुकान तर सबूत आकन मंबान तुम मनोरुन कान बियाया एनर्गी बर बीचारा कपाडा वार्तावान दी गदुंग पुती ट्रंप मंगाता कान बाहवा दिया सचारा प्रीबादी तेला ममिंता यूरोपा उन तक मनिकात कान पासुकान डीजल डेलीगासी पार्लियामेंट इंडिया यंग मिम्पिन ओले वाकिल कतुआ राज्यसभा हरिवंश तेला बरांकत का तंजानिया उन तक बर पासपासी दालम सिदांग का सरातुस लिमा पुलुतुजु इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन दान परतेमुआन तरकात यांग दिस लंगारा का अंदारी तांगाल लिमा हिंगा संबुलान बुलान इनी प्रधानमंत्री इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू तेला मंगुंदन पीलोत इंडिया कैप्टन स्मिथ माचार दान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्तुक मनेला कान आपी सेरिमोनियल पाडा परायन हारी का मर्देका इजराइल यांग आकान दातांग दालम पर्चा कापन टेलीफोन देंगन कैप्टन माचर नेतन्याहू ममूजी पीलोत इंडिया तरसबूत सभा गई पहलावान इंडिया इजराइल दान दुनिया आतस का बरानियान मंगागाल कान सरांगन दियुदारा दिया जुगा मंदोवा कान आगर कैप्टन माचर सेगारा पुली सपनुनिया दान मनिया पाई कान हरा पंतर बाइक निया कपाडा कलवारगा पीलोत तरसबूत कॉन्वेंसी प्रवासी भारतीय दिवस कसम बिलान बेलास आकान दि सेलंगारा कान दाई तांगल तुजू हिंगा संबिलान जानवर ताहुन देपान का देपान दी कोलकाता बेंगल भारत कॉन्वेंसी तर सबूत आकान दी सेलंगारा कान ओले कमंती अनुआर नगरी बकर जा सामा देंगान पमरिंता बांगाला भारत कॉन्वेंसी पी बेडे आकान दी बुका ओले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आकान मनेराकान प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दान ममिपिन सेसी पनुतुपन कॉन्वेंसी तर सबूत जुगा आकान ममिली की सेगमेंट यूथ पी बेडे लबी दारी दुआ रातुस लिमापुलु पसर तेला तर दफ्तर दालम उजी चोबा ओबात यांग दापत मंचेगा मरे का तर तुलार इबोला दी कोंगो ओबा तर सबूत दी तुजू कान उन्तुक वायरस बुंदी बोग्यो यांग बर्तांगुंग जवाब आता स्वाबा यांग मनीबार चेपात दान बलू ममिली की वैक्सीन अताव पंगोपतान यांग तर यांग दी सतुजुई उजी चोबा तर सबूत बरलांगसुंग दी प्रोवेंसी इतुरी भाग्यन तिमुर पुसात वाबा तर सबूत इंडिया ममनांग कान लीमा मेदाली एमास दुआ पेराक दान दुआ परंगु दी आसियान गेम्स दी जेपांग दालम होकी इंडिया मंगाला कान मलेशिया लीमा सातु उन तुक मम प्रतहान कान मेदाली एमास पुत्रा मरे का दान का मनांगन तरसबूत जुगा ममास्ती कान क्वालिफिकासी लांगसुंग का ओलंपियाड लॉस एंजलस ताहुन 2028 दालम क्रिकेट पुत्र इंडिया ममनांग कान मेदाली एमास सतेला मंगाला कान राइवल बबूतिना पाकिस्तान देंगन सको देंगन स्कोर संबिलान बिलास रन दालम फाइनल T20 दिनीसिन पगुलात अमन सेरावत मेराही मेदाली इमास केलास लीमा पुलु तुजु केजी पुत्र सतेला मंगाला कंजुआरा दुनिया कोडिया उतारा चोंग सोंग हान उकुम मूद ममनांकन मेदाली इमास इंदिविदु दालम नोमोर पनाहन रिकर्व पुत्री दालम गोल्फ प्रणवी उड्स मंजादी परम्पुअन इंडिया परतामा यंग ममनांकन मेदाली इमास आसियान गेम्स दलम नोमर इंदिविदु पुत्री देंगन पनाम्पिलान मनेगास्कन इन इंडिया नाइक का पोजीसी का एम्पात दालम क्लासमेन परोलेयन मेदाली कसलुरुअन परोलेयन मेदाली इंडिया तेला मनिगत मंजादी दिलापन पुलु लिमा तर मासुक 2.7 एमास 2.7 पिराकदान 3.7 परुंगियो आसियान गेम्स एची नागोया ताहुन 2026 आकन बराहिर हारी इनी मंगाहिरी लबी दारी दुआ मिंगू रंकायान परतांडिंगन ओलारागा यांग मनारिक उपाचारा पनतुपन आकान दी गेलार दी स्टेडियम अतलिक नागोया सिटी मिजू पार्क दी जेपांग तेम्पात यांग सामा

सौडारा सौडारा आचारा कामी उन्तुक बिसोक सौडारा सौडारा आचारा कामी उन्तुक बिसोक अडाला सबगई बड़ी कुत सतेला वार्ता बड़ी ता लागू इंस्ट्रूमेंटल या कॉमन तार लागू राग क्या प्रोग्राम स्पॉटलाइट लागू लागू नॉन फिल्म दा नाहरनिया सारी आचारा ऐसो खारिनिया सौडारा सौडारा अंडा बीस मंकरीम कन लापुरान दान सारन अंडा मला लुई पॉस एल अताओ ईमेल हारप दी चातत कामी सबगई बरिकुत ए आई आर तितिक इंडोनेशिया 373@gmail.com कामी उलांगी ए आई आर तितिक इंडोनेशिया 373@gmail.com लापुरान अंडा तेताब दी तुंगु दी मेजा तुगास कामी दी स्टूडियो दी सीनी।

0: Tarima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat penyiar Anda Mandira Kumari bersama semua staf saksi bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal sampai. Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat penyiar Anda Mandira Kumari bersama dengan semua staf saksi bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
4: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
5: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
1: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िशकियन ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पिज़िशकियन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य

0: नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग।

0: को फरोग देना शामिल है। यह स्कीम भारतीय सनती तरबियती इदारों आईटीआईज को जदीद सनत से हमाहंग तरबियती इदारों में तब्दील करके पेशावराना तरबियत और बेहतर मयार के मौके फराहम करती है। स्कीम की मजमूई लागत 60,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 30,000 करोड़ मरकज की जानिब से, 20,000 करोड़ रियासतों की जानिब से और 10,000 करोड़ रुपए सनत की तरफ से ताउन शामिल है। आईटीआईज नौजवानों को पेशावराना तरबियत से आरास्ता करते हैं और उनके लिए सनत में रोजगार के मौके पैदा करते हैं। दस्तकारी की तरबियत की स्कीम सीटीएस के तहत सरकारी और प्राइवेट सनती तरबियती इदारों में इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग से मुतालिक रोजगार के लिए तरबियत दी जाती है। इस कोर्स की मुद्दत 6 महीने से 2 साल तक है। दिल्ली से हर्षिता ओझा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: नीति आयोग के रुकन राजीव गाबा ने तेजी से तब्दील होते हुए जुग्राफियाई, तकनीकी और इकतसादी माहौल से हम आहंगी करते हुए एक इंजिबाती फ्रेमवर्क तश्कील करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिसी साजों के सामने इंजिबात और तरक्की के दरमियान किसी एक का इंतखाब करना ही एक चैलेंज नहीं है, बल्कि ऐसे जाब्तों को तय करना है जो इख्तरा, मुसाबकत और सरमायाकारी की हिमायत करते हुए खतरा से निमटने की सलाहियत के हामिल हों। जनाब गाबा कल नई दिल्ली में 5वें क्वार्टरलिया इकतसादी कॉन्क्लेव के मुकम्मल सेशन से खिताब कर रहे थे, जिसका मौजू था तेज रफ्तार तब्दीलियों के दौर में जाब्ता जाती निगरानी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपने खुसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि हुकूमत ने हवाई अड्डों पर आलमी मयार की सहूलतें फराहम करके शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे को किस तरह बेहतर बनाया है। पेश है कैंपेगौड़ा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से मुतालिक बेंगलुरु के हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
0: बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा आज एक बड़े मुसाफिर और कार्गो मरकज में तब्दील हो चुका है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामात से जोड़ता है। माली साल 2025-26 के दौरान इस हवाई अड्डे ने 4 करोड़ से ज्यादा मुसाफिरों को खिदमात फराहम की, जबकि बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों की तादाद में तकरीबन 24% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल के दौरान इस हवाई अड्डे पर तकरीबन 2,80,000 तैयारों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। पिछले साल इसने 5,00,000 मैट्रिक टन से ज्यादा सामान का नकल व हमल किया, जिसके जरिए कारोबार को भारत और बैरून मुल्क की बड़ी मंडियों से जोड़ा गया। चेक इन और सामान रखने की जदीद सहूलियात, फ्लाइट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, लाउंजेज और शानदार अंदरूनी डिजाइन की वजह से इसे सोशल मीडिया पर बहुत सराहा गया। टर्मिनल 2 का बागीचे के तस्वर पर मबनी डिजाइन, सब्ज दीवारों, लटकते बागात, खूबसूरत मनाजिर और कारीगरी के साथ बांस का इस्तेमाल कुदरती रोशनी को अंदर आने देता है और आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी यानी बागों का शहर भी कहा जाता है। ये हवाई अड्डा मुसाफिरों के लिए सहूलियात, जदीद बुनियादी ढांचे, मुनफरिद तर्ज तामीर और सख्त हिफाजती इंतजाम को यकजा करता है, जबकि शहर की खसूसियात और मिजाज की भी अक्कासी करता है, जिसकी ये खिदमत करता है। बेंगलुरु से सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वज़ारत खारजा ने पाकिस्तान हाई कमीशन के नाज़िबुल उमूर को तलब किया और पाकिस्तान की जानिब से भारतीय सरहद में गैरकानूनी दरअंदाजी की मुसलसल एयानत करने के खिलाफ पाकिस्तान से सख्त एहतजाज दर्ज किया। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में बैन अल-अक़वामी सरहद पर जुमे के रोज पेश आने वाले एक वाकये के बारे में लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात को भी यकसर मुस्तरद किया। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी फरीक को बताया गया कि 3 अफराद भारतीय इलाके में दाखिल हुए और बीएसएफ की जानिब से कई बार पाकिस्तान वापस जाने की वार्निंग दिए जाने के बावजूद वो सरहदी बाढ़ की तरफ बढ़ते रहे। इन अफराद की जानिब से फौरी खतरा पैदा होने की सूरत में बीएसएफ को कार्रवाई करनी पड़ी। भारत के मुताबिक यह वाकया पाकिस्तान की जानिब से सरगर्म मुसल्ला मुनशियात के गिरोहों की जानिब से बार बार सरहद पार नकलो हरकत करने की कोशिश को जाहिर करता है। पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि वह सरहद पार दरअंदाजी, मुनशियात की स्मगलिंग की सरगर्मियों और पाकिस्तान की सरहदी मुहाफिज फोर्सेज की मिलीभगत की तहकीकात करे और उसे रोकने के मुनासिब इकदाम करे। اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچھر اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے آئندہ یوم آزادی کی تقریباتی شمع روشن کرنے

0: तियाबी के मरहले से गुजर रहे हैं। उन्होंने कॉकपिट में होने वाले हमले के दौरान गैर मामूली दिलेरी और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए 174 मुसाफिरों की जानें बचाई। आईजी नागोया में एशियन गेम 2026 आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस तरह दो हफ्ते से ज्यादा अरसे तक जारी खेलकूद का यह शानदार मुकाबला खत्म हो जाएगा। एशियाई खेलों की इख्तितामी तकरीब जापान के नागोया सिटी मिजो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में मुनाकिद होगी। इसी मकाम पर इफ्तिताही तकरीब भी मुनाकिद की गई थी। इख्तितामी तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगी। इस साल एशियाई खेलों में भारत ने कुल 85 तमगे जीतकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और वो तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर रहा। भारत ने सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे जीते। इख्तितामी तकरीब के लिए भारत की खवातीन परचमबरदार सरकर्दा निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वो नागोया में फख्र के साथ तिरंगा थामेंगी। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-1 रोजा बैन अलाकामी मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत ने सीरीज के पहले 2 मैचों में जीत हासिल की, जबकि कल रात न्यू चंडीगढ़ के मौलनपुर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैन अलाकामी मैच में उसे वेस्टइंडीज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 351 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 92 रन जबकि केएल राहुल ने बगैर आउट हुए 129 रन बनाए। इस तरह भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का निशाना रखा। जवाब में वेस्टइंडीज ने 48 ओवर्स 2 गेंदों में 5 विकेट पर 352 रन बनाकर जीत का निशाना हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप ने 162 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात अपने सफे अव्वल पर मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के भोपाल दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी बनाई है। भारत का फौजदारी निजाम दुनिया के जदीद तरीन निजामों में शामिल होगा, अमित शाह का बयान। इसी अखबार ने नायब सदर जमहूरिया के खिताब को सुर्खी बनाई है। भारत ने यह साबित कर दिखाया कि जमहूरियत और तरक्की साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश तंजानिया में बैन पार्लियामानी यूनियन के 153वें इजलास में भारतीय पार्लियामानी वक्त की क्यादत करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने अपने खेल के सफे पर एशियन गेम्स में भारत की शानदार कारकर्दगी को नुमाया तौर पर शाये करते हुए लिखा है, एशियन गेम्स में भारत को क्रिकेट और हॉकी दोनों में गोल्ड मेडल मिले।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 की मुद्दत के लिए मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक पार्लियामानी कमेटियों की असर नौ तश्कील की है। मरकजी वजारत तालीम ने क्लासिकी जबानों आसामी बंगाली मराठी पाली और प्रकृत के लिए मुतालियात के लिए 5 नए महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। भारत ने पाकिस्तान के एलची को तलब करके पाकिस्तान से मुसलसल होने वाले गैर कानूनी सरहद पार दरअंदाजी में एयानत पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में मुनक़िद होगा। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर को इसराइल भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ और वजीर आजम को इसराइल के यौम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदु किया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब वक्त हुआ है कार्यक्रम साहित्यिकी का।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्यिकी। श्रोताओं, साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि समाज के भीतर चलने वाले संघर्षों, नैतिक मूल्यों और विचारधाराओं का जीवंत दस्तावेज है और इसे परखने वाली दृष्टि है आलोचना। आज की हमारी बातचीत हिंदी साहित्य के उस दौरे तारीख पर केंद्रित है जिसने हमारी साहित्यिक समझ की बुनियाद रखी। इस यात्रा में केवल दो आलोचक नहीं बल्कि बदलती हुई साहित्यिक प्रवृत्तियां बोलती है। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए बातचीत हिंदी आलोचना रामचंद्र शुक्ल।

0: से रामविलास शर्मा तक। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ आलोचक और प्राध्यापक डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, वरिष्ठ साहित्यकार और प्राध्यापक डॉक्टर हेमंत कुकरेती। बातचीत का आरंभ कर रहे हैं डॉक्टर हेमंत कुकरेती।
1: अक्टूबर का महीना हिंदी आलोचना के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। 4 अक्टूबर को रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ और 10 अक्टूबर को रामविलास शर्मा का। हालांकि इस नज़रिए से देखें तो उनके जन्म के बीच 28 वर्ष का अंतराल है, और काम करने की दृष्टि से देखें तो अलग अलग रास्ते होने के बावजूद दोनों का लक्ष्य लगभग एक जैसा दिखाई देता है कि आलोचना को रचना की कुंजी बनाया जाए। मुझे कई बार लगता है कि शुक्ल जी अगर कुछ भी नहीं लिखते, केवल हिंदी साहित्य का इतिहास ही लिखते, तो वो ही अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण कृति है, इतना बड़ा काम है कि उसके सहारे ही वो चलते रहते, जीवित रहते। लेकिन शुक्ल जी ने बहुत कुछ लिखा। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मुझे ये भी लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में जो प्रवेश पाना चाहता है
2: जी
1: तो शुक्ल जी के इतिहास को तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उनकी इतिहास दृष्टि है या उनका जो इतिहास दर्शन है वो पहले जो मौजूद चीज़ें थी उसको बदल कर रखने वाली है।
2: जी
1: आलोचना का मतलब होता था मोटे तौर पर या तो एक्सट्रीम अच्छाई रेखांकित करना या बहुत जो बुरा है उसको बताना। शुक्ल जी ने बताया कि किताब को ठीक से कैसे पढ़ा जाए, ये बहुत बड़ा योगदान है, और समझ कर परख कर उसके ऊपर कैसे लिखा जाए ये भी उन्होंने सिखाया। तो ये पहला ढंग का काम था हिंदी आलोचना को लेकर, और इसी काम को रामविलास शर्मा ने आगे बढ़ाया। इन दोनों के बीच में जो हिंदी आलोचना है या हिंदी साहित्य को देखने की जो इतिहास दृष्टि है वो पनपती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इस बारे में?
2: हेमंत जी, आपने जो शुक्ल जी के बारे में और रामविलास जी के बारे में जो बातें कही हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर रामचंद्र शुक्ल ना होते तो हिंदी आलोचना का जो आज रूप है वो शायद इतना जल्दी नहीं होता। रामचंद्र शुक्ल की जो मेरी दृष्टि में खासियत है कि उन्होंने सबसे ज्यादा जोर जो है वो रचना की क्लोज रीडिंग कैसे की जाए, इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है आप रामचंद्र शुक्ल की आलोचना में पाएंगे, खास तौर से तुलसीदास।
1: तुलसीदास जी,
2: तुलसीदास उनके प्रिय कवि थे
1: जी
2: और तुलसीदास पर उन्होंने जो लिखा है, नए लोगों को कई बार शुक्ल जी को समझने के लिए वो एक तरह से उनकी आलोचना की धार क्या है और उनकी आलोचना का मर्म क्या है और धर्म क्या है, ये तीनों तत्व जो है आप पाएंगे कि रामचंद्र शुक्ल जो है किस तरह से जगह जगह तुलसीदास को रेखांकित करते हैं। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूं कि रामचंद्र शुक्ल रचना में वो सबसे ज्यादा लोक मंगल को महत्व देते हैं और तुलसीदास को इसीलिए उन्होंने मेरुदंड कवि कहा, और लोक मंगल की भावना जो तुलसीदास में है, जिसको बाद में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लोकवादी
1: लोकवादी,
2: तुलसीदास जो
1: जी
2: किताब है वो भी उसी परंपरा
1: उसी
2: में है,
1: परंपरा में।
2: तो ये जो लोक मंगल की अवधारणा है मुझे लगता है कि इस चीज को आगे के आलोचकों ने, जैसे नामवर सिंह ने, रामविलास जी जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, इन लोगों ने भी पकड़ा है। जो सामाजिक यथार्थ की पहचान की बात मार्क्सवादी आलोचना करती है उसकी एक तरह से पूर्व पीठिका जो है वो शुक्ल जी ने तैयार कर ली
1: तैयार
2: थी।
1: कर लेते हैं।
2: तीसरी जो चीज है वो ये आप देखिए कि शुक्ल जी की आलोचना में जैसे भक्ति काल का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने कहा कि ये विरुद्धों का सामंजस्य का दौर है, तो उन्होंने विविधता को रेखांकित किया। कबीर की भूमि अलग है, कबीर को हालांकि उन्होंने, लोग कहते हैं कि कबीर के साथ जाति की, हम लोग भी मानते हैं
1: जी
2: कि
1: जी
2: आप भी शायद सहमत होंगे कि कबीर को वह उस तरह महत्व नहीं दे पाए जिस तरह उन्होंने
1: उसके कई
2: तुलसीदास को,
1: कारण रहे
2: लेकिन
1: हैं।
2: हर आलोचक के अपने पूर्वाग्रह होते
1: बिल्कुल
2: हैं, तो
1: बिल्कुल
2: आप एक आलोचक को भी मतलब उस पर तासीर गर्म नहीं कर सकते कि तुमको इसी तरह लिखना
1: इसी इसी
2: है।
1: तरह लिखना।
2: शुक्ल जी ने यह कहा कि भाई ये जो विरुद्धों का सामंजस्य है भक्ति काल में है, और आप ये देखिए कि शुक्ल जी ने अपनी आलोचना में इस तत्व को जगह जगह रेखांकित किया है, लेकिन लोक मंगल को और साहित्य का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है इसको उन्होंने हमेशा रिफ्लेक्ट किया। जायसी की भूमिका जो उन्होंने लिखी है वो भी बहुत मूल्यवान है।
1: जी।
2: मुझे एक जो शिकायत है परवर्ती प्राध्याप की आलोचना से कि उन्होंने शुक्ल जी को रसवादी दृष्टि से मूल्यांकित करने की कोशिश की, जबकि मुझे लगता है कि शुक्ल जी को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उन्होंने साधारण मनुष्य की खोज,
1: जी।

0: जो रसवाद की जो मोटी चादर बिछा दी गई या खाल ओढ़ा दिया गया कि रसवादी, उसको आप हटाइए जरा तो आप देखिए कि वो साधारण मनुष्य जो है शुक्ल जी की आलोचना में कविता का मूल्यांकन करते हुए जगह जगह जो है स्पष्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि शुक्ल जी का यह बहुत बड़ा योगदान है और बकौल नामवर सिंह की दृष्टि में डेढ़ ही आचार्य हुए, एक तो रामचंद्र शुक्ल और दूसरे जो है वह उनके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी आधा ही है। तो निर्विवाद रूप से शुक्ल जी हिंदी के प्रथम आचार्य, विधिवत आचार्य। और आप ये देखिए कि कविता क्या है, निबंध वो तो कसौटी है, बिल्कुल कविता लिखने वालों के लिए भी और कविता पर बात करने वालों के लिए।
1: जी, जी,
0: वो निबंध आप आज भी पढ़ेंगे तो वो हम लोगों को प्रेरित करता है,
1: प्रेरित कर,
0: और उन्होंने कविता के बारे में जो चिंताएं प्रकट की हैं वो आने वाली पीढ़ियों को भी आकृष्ट करेगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा कि उनके यहाँ लोगों ने रस का आधिक्य देखा।
0: जी जी, जी।
1: तो थोड़ा सा तो छूट देते हैं, ऐसा नहीं कि रस का निषेध उनके यहाँ मिलता
0: जी,
1: है,
0: जी, जी,
1: है वो।
0: जी, जी।
1: और वो सेलिब्रेट करते हैं उसको
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: कोई शास्त्रीय किस्म का रस चिंतन नहीं है
0: जी,
1: उनके
0: जी, जी, जी।
1: लेकिन मुझे जो एक एक शब्द आपने कहा कि समाज को लेकर चलना या लोक को लेकर चलना, बात वही है। तो जो और काम किया, इसका विस्तार किया उन्होंने, समाज को कोई अमूर्त इकाई नहीं बनने
0: जी, जी, जी, जी।
1: ये शुक्ल जी के ही बूते की बात थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि आम तौर पर अभी तक जो कथित तौर पर समाज शास्त्रीय आलोचना के नाम पर चला तो वहाँ पर समाज बड़ा ठस्ता नजर आता है।
0: जी, जी,
1: समाज मतलब क्या?
0: जी, जी, जी, जी।
1: तो उसका कारण ये था कि शुक्ल जी का इतिहास बहुत सघन है, गहन है।
0: जी जी,
1: है ना, इतिहास को नहीं छोड़ते वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो मतलब काल्पनिक स्मृतियों के ऊपर बात नहीं करेंगे, इतिहास के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, लोक से जुड़ाव तो है ही, वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन भाव और सोच का जो मिश्रण है
0: जी जी जी,
1: और संतुलन में है
0: जी जी जी,
1: ये भी उनसे सीखने वाली बात है।
0: जी जी,
1: दुर्भाग्य से नहीं सीखा, बात के आलोचकों ने नहीं सीखा,
0: नहीं सीखा, नहीं सीखा जी।
1: है ना, लेकिन अगर वो करते तो वही जो आपने तुलसीदास की बात की, क्योंकि तुलसीदास उनकी नजर में इसलिए महत्वपूर्ण मुझे दिखाई देते हैं कि उनको ऐसे कवि के रूप में रेखांकित करते हैं या मानते हैं कि वो लोगों के मन से जुड़ा हुआ कवि है।
0: जी जी,
1: इस चीज को उन्होंने ध्यान में रखा है। और दूसरी बात कि उस किताब को, उस चिंतन को वो खारिज करते रहे जो केवल अपने में ही डूबी हुई है।
0: जी जी जी,
1: हालांकि खुद जिस कवि को उन्होंने इतना बड़ा कहा वो स्वांते सुखाए की बात करते हैं, लेकिन लिखने के बाद तो लिखा हुआ अपना थोड़ी रह जाता है, उस सबका हो जाता है। शुक्ल जिसको पहचानते थे
0: जी, जी।
1: कि जो केवल अपने में मगन रहेगा वो क्या मतलब है, वो तो है ही नहीं, साहित्य नहीं है। इसी नजरिए से आम आदमी की भाषा में बात करता है, आम आदमी की बात करता है, इसलिए इन खूबियों के सहारे वो आगे बढ़े। जहां तक रामविलास जी की बात है तो मुझे लगता है कि हालांकि वो उनके शिष्य परंपरा में नहीं आते शुक्ल जी के, लेकिन गुरु केवल वो नहीं होता जिसके
0: जी, जी,
1: पास बैठकर हम कक्षा में पढ़ते हैं या जिसके साथ हम रिसर्च करते हैं, वो नहीं है, रूढ़ अर्थ में गुरु है, सीख तो आप किसी से भी सकते हैं
0: जी, जी।
1: तो रामविलास जी ने बहुत गहरे अर्थ में शुक्ल जी को पढ़ा है
0: जी, जी।
1: उसके ऊपर छाप है, अगर किसी आलोचक की छाप और रामविलास जी इससे कम नहीं हो जाता उनका
0: जी, जी, जी,
1: लेकिन शुक्ल जी के वो बहुत गंभीर अध्येता नजर आते हैं। नकल नहीं कि उन्होंने, लेकिन शुक्ल जी की बातों को अपने समकाल के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाया
0: जी, जी,
1: क्योंकि
0: जी,
1: वक्त बदल गया
0: जी,
1: दोनों
0: जी,
1: के उसमें बहुत फर्क है, चीजें तेजी से बदली। तो उन्होंने क्या काम किया, शुक्ल जी की नजर में जो समाज था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, रामविलास जी ने साहित्य को भाषा और समाज दोनों के साथ जोड़ा
0: जी, जी, जी।
1: जो भाषा पिछड़ रही थी
0: आलोचना, उनकी एक किताब ही है।
1: हाँ हाँ जी, जी, जी, तो ये काम किया। देखिए वैचारिक दृष्टि से वो मार्क्सवादी हैं रामविलास जी, शुक्ल जी के यहाँ मार्क्सवाद जैसी कोई चीज नहीं है
0: जी, जी।
1: लेकिन वही जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, दोनों का जो बिल्कुल आत्यंतिक लक्ष्य है वो एक है
0: जी, जी, जी, समाज,
1: समाज
0: और साधारण मनुष्य का जीवन
1: जी।
0: और श्रम को वो महत्व देते हैं, श्रम से कविता को जोड़ते हैं
1: जी।
0: तो ये मुझे लगता है कि बहुत मूल्यवान है। और वो केवल जो सौंदर्यवादी दृष्टि है नगेंद्र वाली
1: जी,
0: वो नहीं है रामविलास,
1: वो नहीं है।
0: रामविलास जी आगे जाते हैं
1: जी,
0: तो रामविलास जी का ये महत्व तो है। और देखिए उन्होंने निराला को शताब्दी का कवि कहा, और बात सही भी है
1: बिल्कुल,
0: उस बात को उन्होंने पकड़ा।
1: हाँ,
0: उस तरह का काम नए आलोचकों ने नहीं किया,
1: नहीं किया। हाँ,
0: हालांकि ऐसा काम करना चाहिए, बहुत सारे कवि हैं, लेकिन मुझे लगता है कि

0: ये रामलीला जी के बारे में एक विशेषांक निकला था आलोचना का,
1: जी
0: तो नामवर जी ने उसका जो संपादकीय लिखा है उसका शीर्षक ही है भूधर ज्यों जलती मशाल।
1: जी
0: एक भूधर है,
1: जी जी
0: मैं तब दिल्ली केंद्र पर ही कार्यरत था और जब गंभीर रूप से बीमार थे तो नंद भारद्वाज और मैं दोनों आदमी लोकनायक
1: जी जी
0: अस्पताल है वहां रामलीला जी को देखने गए और वो आईसीयू में थे। वो रामलीला जी का अंतिम दर्शन मैंने किया था,
1: जी
0: तो वो मुझे लगा कि वो सोए हुए हैं और ग्रीक पर्सनालिटी उनकी भी थी।
1: जी जी
0: ये आपको पता ही
1: हाँ
0: है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि रामलीला जी को और सिमंगल सिंह सुमन को निराला के पट्ट शिष्य,
1: जी
0: तो इन दोनों को अखाड़ा लड़ाते थे। वो कहते थे कि अगर आलोचना में दम लाना है तो
1: जी
0: पहलवान बनो। और
1: जी
0: आप रामलीला जी की भी पर्सनालिटी आप देखिए,
1: जी
0: और इस आकाशवाणी केंद्र पर भी मेरा सौभाग्य है कि एक बार वो आए और उनका एक इंटरव्यू प्रसारित किया गया।
1: जी
0: तो रामलीला जी तो सचमुच हमारे समय के ऋषि व्यक्तित्व
1: हाँ
0: थे। मैं
1: जी जी जी
0: आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि यह मत भूलिए कि रामलीला जी और शुक्ल जी शुरुआती दौर में कवि थे
1: जी
0: और तार सप्तक के कवियों में एक कवि आपके रामलीला शर्मा,
1: बिल्कुल
0: ये क्यों
1: बिल्कुल
0: आप भूलते हैं?
1: हाँ ठीक
0: और
1: है
0: मेरा भी ये मानना है और आप भी सहमत होंगे कि वही आलोचक बड़ा होता है। हिंदी में अभी तक जितने भी बड़े आलोचक हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं मूलतः कवि रहे हैं। कवि का संस्कार, उनकी सदियों के सूरज जाग उठे उनका कविता संग्रह है वो, आप देखिए। तो वो जो मुझे लगता है कि जो काव्यत्व है, कविता की जो समझ है,
1: जी
0: ये शुक्ल जी में भी और रामलीला जी दोनों में बड़ी गहरी है।
1: जी
0: उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं,
1: बिल्कुल
0: तभी वो उनकी आलोचना भी उतनी ही मूल्यवान है। वो प्राध्यापकीय आलोचना का पिष्ट पेषण नहीं है।
1: जी जी जी जी देखिए ठीक है आप भी अध्यापक रहे मैं भी अध्यापक
0: जी
1: हूँ
0: जी जी
1: लेकिन आलोचना अगर की है
0: जी जी
1: तो 90% अध्यापकों ने ही की है ये भी बात भूलिए है
0: नहीं,
1: ना।
0: रामलीला जी तो अध्यापक रहे ही
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: जी जी
1: तो अगर इस नजरिए से हम देखते हैं
0: और शुक्ल जी भी अध्यापक रहे
1: रहे
0: हैं।
1: हाँ रहे और कवि होने की बात है वो भी ठीक है वो काम करता है मतलब एक जिसे कहते हैं कि अंतर्भुक्त एक
0: जी
1: एक
0: जी
1: तत्व होता है
0: जी जी
1: अब वो सफल असफल कभी अलग बात
0: हाँ हाँ
1: है
0: वो
1: ना
0: अलग है।
1: क्योंकि ये लोग नहीं थे अक्सर डॉक्टर नित्यानंद तिवारी हमारे गुरु वो यही कहते थे वो भी शुरुआती दौर में कवि
0: जी,
1: रहे
0: कवि नई
1: हाँ
0: कविता के अंक में बहुत सारी कविताएं हैं
1: तो तिवारी जी
0: नित्यानंद
1: ये
0: जी की।
1: हाँ वो यही कहते थे कि देखिए आलोचक में वो चाहे किसी भी विधा की आलोचना करे उसे बुनियादी तौर पर कवि होना चाहिए
0: अच्छा,
1: ये बहुत बड़ी बात
0: बहुत
1: थी
0: बहुत बहुत बहुत
1: कि अगर नहीं भी लिखी तो कवि मन होना चाहिए
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल
1: उसमें ये अगर
0: बिल्कुल
1: होगा तो वो
0: बिल्कुल
1: पकड़ पाएगा
0: जी जी
1: क्योंकि यही समझ थी उन्होंने कि कविता साहित्य का गणित है
0: शुक्ल जी ने भी और रामलीला जी ने भी ये बुनियादी रूप से मतलब एक नींव का काम कविता
1: हाँ
0: कर रही थी,
1: कविता
0: इसीलिए
1: कर
0: उनकी आलोचना
1: जी
0: बड़ी हुई। मेरा ख्याल है कि ये हमारे श्रोताओं को ये बातचीत कुछ दिलचस्प लगेगी और आप आए और आपको धन्यवाद,
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: फिर मिलेंगे।
1: फिर मिलेंगे जी जी
2: हिंदी आलोचना रामचंद्र शुक्ल से रामविलास शर्मा तक अभी आप ये बातचीत सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ आलोचक और प्राध्यापक डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी वरिष्ठ साहित्यकार और प्राध्यापक डॉक्टर हेमंत कुकरेती। और आइए अब सुनते हैं श्रीमती योगिता यादव की कहानी आषाढ़ की एक अधूरी बारिश।
3: जिंदगी में सूखा हो तो हर समय बारिश का ख्याल रहता है। मैं इन दिनों हर समय बारिशों के बारे में सोचा करती हूँ। फुहार कणियाँ बौछार मूसलाधार मैं उनकी हर दस्तक हर रूप को पहचानने लगी हूँ। उनकी ध्वनियों और खुशबू से मैं उनकी तासीर जान जाती हूँ। और यह भी कि आषाढ़ का आसमान कई बार यूं ही उमड़ घुमड़ कर धोखा दिया करता है बरसता नहीं है। इस अनुभव से गुजरना मुझे बेतरह तड़पा देता है। यह मौसम अपनी ही देह की तहों में दुश्वारियां ला रखता है। अंबर रात देर तक जागा है उसे अपने ऑफिस का जरूरी असाइनमेंट पूरा करना था पर उसे करने से पहले वह मुझे भली तरह फेंट चुका था। यह उसे ऊर्जा देता है इसके बाद वह ज्यादा फोकस होकर काम कर पाता है। मगर किनारे तक लाकर अपनी सब लहरें समेट लेना मोहब्बत का ये कौन सा शऊर है। फेंटे जाने के बीच भी मैं भय और आनंद के मिश्रित भावों के बीच डूबती उतराती रही थी। दूसरे कमरे में बेटी पढ़ रही है। अंबर इस बात से निश्चिंत था कि यह उसका अपना कमरा है और जब तक बेटा नहीं आ जाता वह यहाँ कुछ भी कर सकता है। एयर कंडीशन कमरे होने के बावजूद मैं बार बार इस भय में झूलती रही थी कि अगर बेटी ने पानी लेने के लिए भी अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह इस कमरे से आ रही सब आवाज़ें सुन लेगी। यह कितनी अजीब बात है कि जहाँ होने का मुझे एक एक पल इंतज़ार रहता है, वहाँ होते हुए भी मैं एक अनहुए की कल्पना पर से शर्मिंदा हो रही हूँ। आधी रात तक जागकर उसने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, वह उसके डिपार्टमेंट की साख बचा सकती है। सर्वजन हिताय अंबर देर रात तक जागा था और मैं रात भर अनिद्रा अतृप्ति में सुबह का इंतजार करती रही थी। बच्चों की उम्रें घर का रंग रूप और स्वभाव बदल देती हैं। हमारा घर अब दो हिस्सों में बंट गया है, एक जैसे जनान खाना हो गया है जहाँ मैं, बेटी और हम दोनों के ज़रूरी सामान रहते हैं, और दूसरा हिस्सा बेटे, उसके पिता और उन दोनों के ज़रूरी सामान का है। बेटा और बेटी ही बस हम दोनों के साझे हैं। हमारी अलमारियाँ, हमारे कमरे, हमारे बिस्तर भी कब अलग हो गए नहीं पता। बच्चों के बढ़ते कद, ज़रूरतें और अपेक्षाएं शायद हम दोनों के बीच पसरते चले गए, पर यह कब हुआ ठीक ठीक याद नहीं। शायद किसी एक सुबह मेरी बगल में आ बैठी होगी मेरी बेटी डाइनिंग टेबल पर, या किसी दिन शायद बेटा अपने पिता के साथ गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया होगा और मैं हंसते हुए पिछली सीट पर चली गई होंगी। हो सकता है बेटी की उम्र के किसी एक बदलाव के समय मैंने अपनी अलमारी का कुछ सामान उसे दिया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई एक बात बेटे ने सिर्फ अपने पिता से साझा की हो। इनमें से कुछ या हो सकता है सब कुछ हुआ होगा और हम दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए, इतना ज़्यादा कि अब मैं अंबर को अपने बच्चों के पिता और अंबर मुझे अपने बच्चों की माँ के तौर पर ही ज़्यादा पहचानते हैं। इसी हैसियत से हमारे बीच ज़्यादातर संवाद होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, वह खुद को विथड्रॉ करता गया। अब वो और उसका दफ्तर, बस यही उसका हर रोज का रूटीन हो गया है। कोई त्यौहार हो, उसने किसी बहुत ज़रूरी काम से छुट्टी ली हो, तो भी वह दिन भर अपने लैपटॉप पर ही व्यस्त रहता है। वह कौन था जो हाथ पकड़कर मुझे गृहस्थी के इस ट्रैक पर ले आया था, एक ऐसा ट्रैक जिसके दो हिस्सों के बीच हमेशा एक संतुलित दूरी बंधी रहती है। बेटी के बिस्तर पर करवटें बदलते रात भर एक वाक्य मेरी आत्मा पर बजता रहा है, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम कभी बूढ़ी नहीं हो पाओगी। आपादमस्तक मुझे चूमते हुए बरसों पहले कहा था अंबर ने, पर शायद वह अपने कहे को खुद ही भूल गया है। तभी तो हर बार अपनी अनुपलब्धता को उम्र के मत्थे मढ़ देता है। मैं बार बार खुद से सवाल करती हूँ, क्या बच्चों के बड़े होने से हम बूढ़े हो गए हैं, और क्या बूढ़े होने से हम एक दूसरे की भावनाओं की लिपि पढ़ना भूल गए हैं। मेरी हल्की फुल्की बातें भी उसे अब ताने लगती हैं, और उसका हर बात पर सफाई देना मुझे उसकी अतिरिक्त चालाकी। वह अब क्यों नहीं मेरे हर शिकवे को मुझे चूम कर भुला देता, क्यों हर बार उन पर लंबी जिरह पर उतारू हो जाता है। वह यह भी भूल गया है कि उसने मुझसे कभी उदास न होने का वादा लिया था, तब जब पहली बार हमें लंबे समय के लिए एक दूसरे से दूर होना पड़ा था। उस दूरी को अपनी मोहब्बत से पाटते हुए उसने कहा था, मैं तुम्हारे हर दुख की भरपाई करूंगा अवनी। कयामत ये कि उसे यह भी याद नहीं है। वह जिस सक्रियता से अपने सोशल सर्कल में सक्रिय रहता है, जिस तत्परता से दफ्तर की हर ईमेल, हर मैसेज का जवाब देता है, घंटों बिना थके फाइलें निपटाता है, अपने जूनियर्स को मोटिवेट रखता है और सीनियर्स के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है, उससे वह 25 बरस का भरी पूरी ऊर्जा वाला नौजवान लगता है। मगर मेरे आभा चक्र में दाखिल होते ही वह दुनिया का सबसे अक्षम, असमर्थ, मजबूर और व्यस्त आदमी हो जाता है। उसकी अनदेखी कैसे एक खुश्की बनकर मेरे वजूद को घेरती जा रही है, उसे अंदाज़ा ही नहीं है। भोर की बारिश ने फिर देहराग छेड़ दिया है। 4 बजते मुझे ख्याल आया कि बेटा अब जिम जाएगा, और बेटी ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया है। यह 4 से 5 बजे के बीच का 1 घंटा हमारी अधूरी बारिशों को फिर से पूरा कर सकता है। मैं बच्चों की आंख बचाकर झट से अपने हिस्से का कुछ समय चुरा लेना चाहती हूँ। मैंने चोर नज़रों से बेटी की तरफ देखा है। वह सचमुच सो रही है ना? बिस्तर के सिरहाने तिपाई पर रखी अलार्म घड़ी को दोबारा जांच कर तस्दीक की है। ये 5 बजे ही बजेगी ना, उससे पहले तो नहीं। रसोई से आ रही आवाज़ों से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि बेटा अपने लिए प्रोटीन शेक बना चुका है और अब वह जूते पहनकर लिविंग एरिया से बाहर निकल रहा है। मैं दम साधे दरवाजे

0: दरवाजा बंद होने का इंतजार कर रही हूँ। दो बार चाबी घुमाने की आवाज़ ने मुझे निश्चिंत किया है कि अब वह जिम के लिए निकल गया है। अब मैं अपने अंबर की तरफ जा सकती हूँ। एक भय अब भी मेरे भीतर है। मेन डोर की चटखनी अंदर से बंद कर मैं उस भय को काबू करने की कोशिश करती हूँ। एक अलग तरह की बेचैनी, झिझक, उतावलापन मुझ में हिलोर ले रहा है। क्या मुझे ये शोभा देता है? अंबर मेरा है, क्यों नहीं? दाम्पत्य में होना ही तो अद्वैत हो जाना है। अगर वो भूल गया है तो मुझे पहल करनी चाहिए। एक आंख से दूसरी को देखने में कैसी झिझक, अपनी जिल्द की सलवटों को खुद ही खोलने में कैसा शर्माना। अंबर के कमरे में दाखिल होते मैंने तमाम तरह से खुद को तैयार किया है। नीम अंधेरे में सिर्फ उसके चेहरे की आभा से पूरा कमरा रोशन हो रहा है। सिर से पांव तक कोई लहर उठी है मेरे भीतर। अंबर जब गहरी नींद में होता है कितना प्यारा लगता है। उसकी भौहें, पलकें, नाक, होंठ, सब कुछ तो वैसा ही है। मुझे बांध लेने को आतुर। बाहर से आती बारिश की आवाज़ भीतर की तरंगों में लयबद्ध हो रही है। मैंने झुककर अपनी शुष्कता को उसके होंठों पर धर देना चाहा है। हम दोनों को अब रतिराग में भीग जाना है। मगर मेरे छूते ही अंबर की घबराई सी देह में हरकत हुई है। उसने अपने होंठों को अपने ही भीतर कस लिया है। ये कैसा भय है? किससे बचने में अंबर ने अपनी देह को इस तरह कस लिया है? अंबर की देह अवनी की छुअन भूल गई है क्या? क्या सब कुछ इतना यंत्रबद्ध हो गया है? मैं प्यास, तड़प, बेचैनी, शुष्कता, उदासी, खामोशी, खालीपन और जो कुछ भी कठोर, रूखा, बोझिल हो सकता था, सबको समेट कर बाहर आ गई हूँ। थोड़ी ही देर में दिन चढ़ने लगेगा। मुझे दिन भर की तैयारी करनी है। 5 बजे बेटी के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनानी है। उसकी नींद भगाने और ध्यान लगाकर पढ़ने के लिए उसे इसकी ज़रूरत होती है। खाना बनाना है, कपड़े इस्त्री करने हैं। बाहर बारिश की आवाज़ और तेज़ हो गई है। बारिश तेज़ हुई तो शायद ड्राइवर समय से ना पहुँच पाए। बेटा बरसाती पहनकर गया होगा कि नहीं? आज दिन के पहले हिस्से में ही मीटिंग है। उसकी तैयारी मुझे भी करनी है। मुझे दफ्तर जल्दी पहुँचना है। बेटा, बेटी, घर, दफ्तर के बारे में सोचते और रसोई की खटपट के बीच मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर छाता कहाँ रख दिया।
1: अभी आप श्रीमती योगिता यादव की ये कहानी आषाढ़ की एक अधूरी बारिश सुन रहे थे। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां। प्रस्तुत कर रहे हैं युवा पत्रकार डॉक्टर नाथूलाल लोटवाड़ा।
2: साहित्य, शिक्षा, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय संस्था पथगामिनी का 5वां वार्षिकोत्सव 27 सितंबर को शाहदरा स्थित ईस्ट एंड क्लब महाराजा सूरजमल मार्ग में उत्साहपूर्ण साहित्यिक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा एवं साहित्य की वर्तमान चुनौतियां एवं बदलते परिवेश पर सार्थक विमर्श हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर SP सिंह ने की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मधु चतुर्वेदी तथा डॉक्टर सविता चड्डा रही। ओम प्रकाश प्रजापति, डॉक्टर विशाल पांडे, ज्ञानचंद मिश्रा, श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव, NK झा, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव, सोनिया सोनामाक्ष, शुभ्रा पालीवाल की कार्यक्रम में उपस्थिति रही। राजभाषा समिति एवं शब्दिता मिरिंडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हिंदी माह का समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम दिनांक 30 सितंबर को संपन्न हुआ, जिसमें हिंदी की चुनौतियां वर्तमान परिपेक्ष पर विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुधाकर पाठक रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शुक्रवार 25 सितंबर को हिंदी भवन विष्णु दिगंबर मार्ग दिल्ली में साहित्यकार सम्मान समारोह 2026 का आयोजन संपन्न हुआ। समारोह में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार श्री अनिल जोशी और अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा मोहन, अध्यक्ष दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन ने की। कार्यक्रम में सम्मानित साहित्यकारों में सर्वश्री चंद्रभानु आर्य, डॉक्टर अंजू दुआ, श्री कमलेश पांडे पुष्प, कमंडीलाल अग्रवाल, अशोक कश्यप, नीलम मदान, बाबा कानपुरी, कविता विकास, मनीषा गिरी और नीति जैन रहे। 27 सितंबर को मानव मंदिर मिशन एवं राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से लेखक एवं चिंतक डॉक्टर मयंक मुरारी की पुस्तक जीवन के अर्थ की खोज का लोकार्पण नई दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी में किया। कार्यक्रम में शिक्षा, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े वक्ताओं ने आधुनिक जीवन में अर्थ, उद्देश्य, चरित्र निर्माण और नई पीढ़ी की चुनौतियों पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव, निदेशक नेताजी सुभाष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रहे। इस अवसर पर सर्वश्री पुरुषोत्तम प्रतीक, डॉक्टर सीमा त्यागी, अमोघ महेश्वरी, मनोज श्रीवास्तव कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राजभाषा विभाग दिल्ली परिवहन निगम द्वारा हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह कवि सम्मेलन का आयोजन 29 सितंबर मंगलवार को IDIR परिसर बुराड़ी में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री निहारिका राय रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि दिनेश रघुवंशी ने की। कवि सम्मेलन में सहभागी कवियों में सर्वश्री वंद प्रकाश, अभय सिंह निर्भीक, मास्टर महेंद्र रहे। वैशाली महिला समिति द्वारा कवयित्री सम्मेलन का आयोजन पीतमपुरा वैशाली कम्युनिटी सेंटर में किया गया। हिंदी पखवाड़े में विशेष रूप से आयोजित इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर राधिका सिंह द्वारा रचित सरस्वती वंदना का युवा कवयित्री द्वारा गायन किया गया, जिनमें अंजू जैन, अदिति गुप्ता, पूजा जैन ने किया। गोष्ठी में चारूगोट, मीनाक्षी यादव, मंजुला गंगराड़े उपस्थित रही। चिंतन हिंदी साहित्य सभा PGDAV महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी पखवाड़ा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मीडिया जगत में हिंदी चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 29 सितंबर 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रोफेसर दविंद्र कुमार, प्रोफेसर निरंजन कुमार, विक्की कुमार, डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर चैन सिंह मीना, डॉक्टर संदीप कुमार रंजन की उपस्थिति रही। प्राध्यापक और डीन प्रोफेसर निरंजन कुमार ने हिंदी की स्थिति और विश्व में इसके स्वरूप और विकास पर विचार व्यक्त किए। प्राचार्य प्रोफेसर दविंद्र कुमार ने सभी का स्वागत करते हुए महाविद्यालय में हिंदी के प्रचार प्रसार पर बल दिया। इमेंटेक अकादमी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद में भविष्य और साधना कवि सम्मेलन का आयोजन हिंदी दिवस पर संपन्न हुआ। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर जयसिंह आर्य ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कवि पवन कुमार रहे। इस अवसर पर दीपक दीप, जयप्रकाश मिश्र, डॉक्टर राधेश्याम मिश्र, संजीव रूप, डॉक्टर कमल तिवारी, संजीव नायक, कोमल रस्तोगी ने अपने काव्य से सभी को भाव विभोर कर दिया। कवि सम्मेलन का संचालन वरिष्ठ कवि श्री JP मिश्रा ने किया। 2 अक्टूबर को फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में अजय साहित्यिक व सामाजिक मंच के तत्वाधान में काव्य कारवां कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आमंत्रित कवियों में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह वीर, डॉक्टर पी भल्ला, रिया अग्रवाल, प्रीति पाठक, माधुरी मिश्र, चेतना वशिष्ठ, शशि रंजन, मधु वशिष्ठ, दीपा शर्मा उजाला, चूड़ामणि प्रभात, मंजुषा पवार, धर्मवीर शर्मा, सागर और अतुल मिश्रा शामिल थे। कार्यक्रम के संस्था की अध्यक्ष मंजू तंवर, उपाध्यक्ष डॉक्टर विकास शुक्ला, विवेक पैरन, डॉक्टर पारुल राज ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम की आयोजिका डॉक्टर प्रीता पवार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कवि नीरज त्यागी ने अपने कायपाठ और उद्बोधन से सभी को प्रभावित किया। जैन युवा क्लब शाद्रा द्वारा 30 सितंबर 2026 को विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन कड़कड़डूमा शाद्रा दिल्ली में आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन में पूरे भारत से आए हास्य कवियों ने खूब हंसाया। हास्य कवि सम्मेलन में विनीत चौहान, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, सुदीप भोला, शिवम श्रीवास्तव, सुनील व्यास, गौरी मिश्रा, भगवान मकरंद, महेंद्र मधुर, मोहित शौर्य ने हास्य के रंग बिखेरे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद एवं वैश्विक हिंदी परिवार के तत्वाधान में हिंदी पखवाड़ा एवं साहित्यिक सम्मान समारोह का आयोजन 1 अक्टूबर को प्रवासी भवन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में किया गया। समारोह में प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा, सुश्री इंदिरा मोहन, प्रोफेसर पूरन चंद टंडन, सुश्री सविता टंडन, ऋषि कुमार शर्मा, डॉक्टर वरुण कुमार, शिव कुमार निगम, मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर शिवम शर्मा, डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र तिवारी, आरुषि ठाकुर, प्रखर शर्मा, सुश्री विशाखा ने हिंदी के विकास एवं संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण विचार रखे।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे श्रीनाथुलाल लोटवाड़ा। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्यिकी और श्रोता लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे अतिथि।
3: नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जानते ही हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत होती हैं वो असल में एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी कहानी होते हैं अपने आप में। कैसे किस काम की शुरुआत हुई, क्या संघर्ष थे, क्या उपलब्धियां और आज किस तरह से दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं अपना काम करते करते, हम ये सब जानते हैं इस कार्यक्रम में और अलग अलग क्षेत्र जो हैं उनके बारे में भी समझते हैं किसी एक व्यक्ति के माध्यम से। आज स्टूडियो में जो शख्सियत हैं जो आपसे मिलने के लिए आए हैं ये हैं संजीव श्रीवास्तव जी। आप जाने माने फिल्म समीक्षक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और हाल ही में आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संजीव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
4: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी।
3: सबसे पहले आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त होने की, ये सम्मान प्राप्त होने की बहुत बहुत बधाई।
4: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
3: हम सब जानना चाहेंगे राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा ये सम्मान पाते हुए कैसी अनुभूति थी, कैसा लगा आपको?
4: राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मान पाकर के ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन में कोई नया चमत्कार हो गया
3: जी।
4: अब तक मैं विज्ञान भवन में दूसरे कलाकारों और लेखकों को देखा करता था पुरस्कार प्राप्त करते हुए, उस वक्त मैं तालियां बजाया करता था और उस वक्त मेरी आंखों में भी सपने होते थे कि काश कभी मुझे भी यह पुरस्कार मिलेगा क्या। आज जब मुझे यह पुरस्कार मिला तो मैं बहुत ही भावुक हो गया। मैं बताना चाहूंगा नीलम जी कि 18 जुलाई को जैसे ही इस पुरस्कार की घोषणा हुई और मुझे पता चला कि बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड दिया जा रहा है तो घर में बहुत ही भावुक माहौल था और मैं अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ गले से लिपट करके बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगा
3: जी।
4: और घर में भी सब लोग बिल्कुल ही बहुत ही भावुक हो गए। सपनों के सच होने जैसा था जब 22 सितंबर को केवड़िया में राष्ट्रपति जी के हाथों यह अवार्ड मिला। इस बीच पुरस्कार की घोषणा होने से लेकर के पुरस्कार मिलने तक जो धड़कन थी, जो बेताबी थी, वो तो बिल्कुल ही अनकही है। उसे शब्दों में बिल्कुल ही व्यक्त नहीं किया जा सकता
3: जी।
4: ये बहुत ही महसूस करने वाली बात है
3: जी।
4: और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस पुरस्कार की बड़ी सफलता है।
3: मैं ये भी जानना चाहूंगी संजीव जी आपसे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद जीवन में क्या बदला?
4: बहुत कुछ बदला है, नजरिया बदला है नीलम जी। बताऊं मैं आपको कि फिल्में देखना और फिल्मों पर लिखना बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया जाता रहा है और मुझे अपने घर में ही उस नजरिए का शिकार होना पड़ा कई बार
3: जी।
4: जब मैं सुबह सुबह फिल्म देखने चला जाता था तो घर में मुझे ताने सुनने के मिलते थे कि और कोई काम नहीं है क्या, सुबह उठे और फिल्म देखने चले गए। या फिर जो हमारे बहुत सीनियर साथी हैं हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, उनका भी एक नजरिया होता था कि यार इतना सीनियर व्यक्ति है और फिल्मों पर लिखता रहता है, उन्होंने कभी बहुत गंभीरता से इस चीज को लिया नहीं
3: जी।
4: लेकिन जब पुरस्कार का ऐलान हुआ तो मुझे अपने घर में ही सबसे पहले छूट मिल गई, जाइए अब जितनी फिल्में आपको देखनी है देखिए। और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग मुझे अभी तक बहुत इग्नोर कर रहे थे, गंभीरता से नहीं ले रहे थे, ये बहुत ही भावुक पक्ष है,
3: तो
4: उन्होंने अब मुझे बहुत अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा काम किया हो, जीवन में एक उपलब्धि हासिल की है, आगे बढ़ो
3: जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत के किस राज्य में आपका जन्म हुआ, बचपन कैसा था?
4: मेरा जन्म बिहार में हुआ है। बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल जैसा उपन्यास लिखा, उनके शहर में मेरा जन्म हुआ। लेकिन वैसे मेरा जो पैतृक शहर है वह बिहार का सीतामढ़ी जिला है
3: जी।
4: सीतामढ़ी नॉर्थ बिहार के बॉर्डर पे है और बहुत ही मशहूर जानकी स्थान मंदिर के लिए बहुत ही फेमस है
3: जी।
4: जो कि सीता जन्म स्थली के तौर पर वह जगह जानी जाती है, तो वह मेरा पैतृक शहर है। वहां का एक गांव है रिखौली, जहां मेरा बचपन बीता। पूर्णिया से आने के बाद कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि शहर छोड़ करके पूरी फैमिली गांव में शिफ्ट हो गई थी कुछ सालों के लिए, तो गांव में कुछ साल हमारे बीते और गांव में जो साल बीते वे साल बहुत ही कठिनाइयों भरे थे। गांव में तब बिजली नहीं थी
3: जी।
4: सड़कें बहुत ही कच्ची हुआ करती थी और वहीं रह करके हमने 12वीं तक पढ़ाई की। पैदल जाता था स्कूल, वो करीब 2.5-3 किलोमीटर भी होता था।
3: तो इन संघर्षों के बीच जब आप पढ़ रहे थे तो उस वक्त क्या सपना था कि बड़े होकर हमें क्या बनना है, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिससे आप जुड़ना चाहते थे?
4: बिल्कुल, जो सिनेमा में आज जो सम्मान मिला है इसका बीज उन्हीं दिनों पड़ गया था। सच बताऊं मैं आपको कि उस वक्त रेडियो से गाने बहुत आते थे, शहर जाकर के फिल्में देखता था और जब शुक्रवार को नए पोस्टर लगते थे हमारे जो कस्बाई इलाके हैं वहां पर कि कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, तो फिल्म तो बाद में देखना है, पोस्टर के सामने खड़ा हो जाता था और पोस्टर पे जो हीरो हीरोइन की तस्वीरें होती थी उनको गौर से देखता था और खास तौर पर देखता था उसमें कौन कौन सितारे हैं, गीतकार है, संगीतकार है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है, सब जो लिखा रहता था पोस्टर पर, उन सबको देखा करता था। तो हमारे शहर में एक बड़ी खास बात थी उस दौर में ये कि स्टूडेंट कंसेशन मिला करता था 50% शनिवार को भी और रविवार को भी। तो शनिवार को मॉर्निंग शो में और रविवार को मैटिनी शो। और सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि मुझे हफ्ते भर जो

0: पॉकेट खर्च मिला करता था, उसमें से मैं कुछ पैसे बचा लेता था फिल्म देखने के लिए, लेकिन मैं हर हफ्ते फिल्म देखता ही था।
1: आज पता चला कि वो इन्वेस्टमेंट था।
0: इन्वेस्टमेंट था
1: जी। संजीव जी, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम ये सोचते हैं कि अब आत्मनिर्भर हुआ जाए, यानी अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए, कमाना शुरू किया जाए। तो जब आप उस पड़ाव पर पहुंचे जीवन के, तब किस तरह के संघर्ष थे?
0: मेरा जो पहला लक्ष्य था वो प्रोफेसर बनने का था
1: जी,
0: क्योंकि हिंदी साहित्य से मैं एमए कर रहा था। शहर में आकर रहने लगे थे हम सब लोग। मेरी इच्छा थी प्रोफेसर बनने की, क्योंकि मैं प्रोफेसरों की दुनिया देखा करता था। वो बड़े आजाद ख्याल से रहा करते थे और बहुत ही बुद्धिजीवी किस्म के होते थे, तो मुझे वो आजादी बहुत पसंद आई थी। लेकिन क्या है कि पत्रकारिता में सबसे पहली एंट्री मुझे मिल गई, तो फिर मैं पत्रकारिता में चला गया
1: जी। यानी कोई प्लानिंग नहीं थी पत्रकार बनने की, लेकिन उस समय ऐसा लगा कि यही बेहतर विकल्प है।
0: यही बेहतर विकल्प है और शायद दूसरा सबसे बेहतर विकल्प लगा था, क्योंकि लिखना पढ़ना शुरू हो चुका था
1: जी।
0: फिल्मों पर भी हमने छोटी छोटी टिकट टिप्पणियां उन्हीं दिनों शुरू कर ली थी। ये बात भी बहुत उल्लेखनीय इसी जगह पर हो जाती है कि सड़क फिल्म एक आई थी महेश भट्ट की
1: संजय दत्त
0: और पूजा भट्ट। उसका एक गाना था, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है
1: जी।
0: फिल्म बहुत ही मशहूर थी उस जमाने में और ये गाना भी काफी चर्चित हुआ था, लेकिन इस गाने का जो पिक्चराइजेशन था, उस पिक्चराइजेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उससे प्रभावित होकर मैंने एक छोटी सी टिप्पणी लिखी और वह टिप्पणी फिल्मों पर लिखी हमारी वो पहली टिप्पणी थी
1: जी।
0: कि कैसे एक नायक बदनाम बस्ती के कोठे पर रहने वाली लड़की को अपने साथ लेकर जाता है एक दिन के मुचलके पर, और लेकर कहां जाता है तो मंदिर। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में, वहां के लिए मैंने प्रवेश परीक्षा दी और वहां मैं पास कर गया। जबलपुर जाके मैंने परीक्षा दी थी, फिर उसके बाद भोपाल में मुझे हॉस्टल मिल गया और एक साल मैंने वहां कोर्स किया। उसके बाद भोपाल में दैनिक नई दुनिया से जुड़ा उस समय के लिए
1: जी,
0: और फिर उसके बाद दिल्ली आ गया
1: जी। तो वो दौर कैसा था? आप दिल्ली आए, परिवार कहीं और था या साथ में था परिवार?
0: दिल्ली जब आया तो मैं बिल्कुल अकेला था, उस वक्त शादी नहीं हुई थी हमारी
1: जी।
0: और समझिए कि दिल्ली आकर के उस दौरान नए जीवन की शुरुआत करनी थी, लेकिन उन दिनों पत्रकारिता की दुनिया में नौकरी मिलना बहुत कठिन था। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले मैंने हिंदुस्तान अखबार में काफी समय तक फ्रीलांस किया, उसके बाद दिल्ली में कुछ नए अखबार शुरू हुए, वहां मैंने अप्लाई किया, तो फिर वहां से फिर नौकरी का एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन वो छोटा सा अखबार था, फिर वो अखबार बंद हो गया, फिर बेरोजगार हो गया
1: जी।
0: फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई, टेलीविजन की दुनिया शुरू हुई, फिर उसके बाद मैं टीवी में चला गया साल 2000 से, के बाद से लगातार मैं टीवी में ही रहा
1: जी। पहले जो है वो शब्दों की दुनिया में थे, उसके बाद आप स्क्रीन की दुनिया से जुड़े, थोड़ा अलग होता है?
0: बिल्कुल अलग होता है, हमें कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है क्योंकि उसको सुनाना है हमें
1: जी, वो विजुअल को सपोर्ट करे,
0: विजुअल को सपोर्ट करे, साथ में जो दर्शक देख रहे हैं
1: जी,
0: वो कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत एजुकेटेड ही हो। जो एक लेखन कौशल है, लेखन कला है ना, वो अखबार के मुकाबले टेलीविजन की कुछ ज्यादा कठिन है, वो एक अलग क्राफ्ट है, उसको सीखने की जरूरत पड़ती है।
1: तो लगातार इस तरह की चुनौतियां आती गई, तो कैसे आप फिल्म समीक्षा से जुड़े, क्या ध्यान रखते थे आप कि आपकी समीक्षा में क्या क्या तत्व होने चाहिए, कैसे वो दूसरे समीक्षक से अलग लगे और किस तरह से वो पाठक के या जो फिल्म प्रेमी हैं, सिने प्रेमी हैं, उनके वो नजदीक हो?
0: पुस्तक समीक्षाओं के साथ साथ मैं फिल्मों पर भी टिकट टिप्पणियां किया करता था। उस वक्त बहुत सारे फिल्म समीक्षक, दिग्गज फिल्म समीक्षक हुआ करते थे, ब्रजेश्वर मदान, बच्चन श्रीवास्तव, संपत लाल पुरोहित, ऐसे कई सारे हुआ करते थे जिनसे मैं मिलता था, और सिनेमा के बारे में जो बातचीत उन सबसे होती थी, उनसे बहुत प्रोत्साहन मिलता था कि तुम फिल्मों पर भी इसी तरह की समीक्षाएं लिखा करो जैसे पुस्तक समीक्षाएं लिखते हो
1: जी।
0: हमने वहां से सीखा और शायद मुझे लगता है कि फिल्म समीक्षा में जो हमने थोड़ी गहराई पकड़ने की कोशिश की, उसकी वजह यही थी कि इससे पहले हमने रंगमंच की और पुस्तकों की समीक्षाएं की
1: जी।
0: तो एक डेप्थ को ढालने का एक प्रैक्टिस हमें हो गया था पहले से। फिल्म समीक्षा वास्तव में डायरेक्टर के विजन कैसा है, डायरेक्टर ने कहानी के जरिए क्या कहना चाहा है, ये बताना फिल्म समीक्षक का सबसे बड़ा इम्तिहान हो जाता है
1: जी।
0: मुझे लगता है जो भी नए लोग आ रहे हैं मीडिया की फील्ड में, एंटरटेनमेंट को संभालना चाहते हैं, उस पर लिखना चाहते हैं, क्रिटिक बनना चाहते हैं, फिल्म जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले ये देखना होगा कि सिनेमा को लेकर के उनके भीतर कैसी जिजीविषा है, और उसके बाद ही वो फैसला करे कि उनको इस फील्ड में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
1: संजीव जी, अब सोशल मीडिया

0: अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है और पत्रकारिता से भी इसे जोड़ दिया गया है। जिसके भी हाथ में मोबाइल है या जिसका अपना सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है, वो सोचता है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। इसमें जिम्मेदारी जो है वो कहाँ तक जरूरी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
1: पहले होता था ना नीलम जी कि हम लोग डायरी मेंटेन करते थे
0: जी,
1: और डायरी बहुत सीक्रेट रखते थे। सोशल मीडिया एक तरह से जगजाहिर डायरी हो गई है। यहाँ भी लेकिन इम्तिहान है कि कौन कैसा लिख रहा है, कौन किस तरह के विचार व्यक्त कर रहा है, उसके भी उसी तरह के फॉलोअर्स बन रहे हैं, उसको भी उसी तरह से प्रसिद्धि मिल रही है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं
0: जी,
1: सोशल मीडिया के माध्यम से ही बने हैं। ऐसे लोगों ने बहुत सारे लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो उन्हीं वजहों से बनाई है कि उन्होंने कैसा लिखा है या फिर कैसा अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो वहां पर लोगों की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि सोशल मीडिया पर अपनी भाषा को थोड़ा संयमित रखे। फिल्म समीक्षकों की एक बड़ी भूमिका है, मैं अक्सर कहता हूं कि फिल्म समीक्षा एक एजुकेशनल विधा है
0: जी।
1: एजुकेशनल इसलिए कि फिल्म समीक्षा पढ़ने के बाद ही हम कोई फिल्म देखने का विचार बनाते हैं, तो फिल्म में जो खूबियां हैं वो समीक्षक अगर नहीं बताएगा तो दर्शकों को मालूम कैसे होगा
0: जी। तो चलते चलते ये सवाल आपसे कि आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? अब आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है तो इसके बाद जिम्मेदारी का एहसास है या ऐसा लगता है कि जो मेहनत की थी बस सफल हो गई, अब थोड़ी थकान महसूस हो रही है?
1: ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। फिल्मों से जुड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म मैंने भी शुरू किया था और वह प्लेटफॉर्म था पिक्चर प्लस। पिक्चर प्लस नाम से हमने एक फिल्म पत्रिका शुरू की थी और यह पत्रिका कुछ वर्ष चली और यह मासिक पत्रिका थी। हमारी कोशिश थी कि हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए देश भर में, हिंदी सिनेमा क्या बल्कि भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए देश भर में जितने भी प्रमुख लेखक हैं उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां वो अपनी बातें खुलकर लिख सकें
0: जी।
1: तो बहुत दिग्गज लेखकों ने उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अरविंद कुमार, शरद दत्त, अजय ब्रह्मात्र, मनमोहन चढ़ा, प्रहलाद अग्रवाल, जबरी मल्ल पारख, विनोद अनुपम, ऐसे ऐसे दिग्गज हिंदी के या फिर अंग्रेजी के भी लोगों ने लिखा और पिक्चर प्लस नाम से हमने यूट्यूब भी चलाया। और सिनेमा के प्रति जो एक दीवानगी है उसके ये नजीर है। सिने शास्त्री नाम से सिनेमा लेखकों पर एक सीरीज मैंने शुरू की है और फिल्म की एक वेबसाइट भी चलाई। तो आगे का जो प्लान बता रहे हैं ना, ये जो मेरा अधूरा रह गया, ये जो मेरी अधूरी कहानी रह गई फिल्म पत्रकारिता की
0: जी,
1: कि हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म हो फिल्म का, फिल्म न्यूज व्यूज इंटरव्यूज और जो फिल्म पत्रकारिता के लिए एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म हो, जो मैं आम तौर पर बाजार में बिल्कुल सन्नाटा देखता हूँ, किसी के भी पास नहीं है जो फिल्मों पर एक हिंदी में एक मुकम्मल डिजिटल प्लेटफॉर्म हो
0: जी।
1: तो हमारी ये ख्वाहिश है जो बीच बीच में मैंने रुक रुक कर किया उसको अब इसके आगे मुकम्मल तौर पर करना चाहता हूँ। इसमें हमें कोई खास सहयोगी मिले तो, या फिर मेरे पास संसाधन वैसा हो तो मैं उसको प्रोफेशनली एस्टैब्लिश करके दिखा दूंगा
0: जी।
1: ये मेरा प्रण है, ये हमारी ख्वाहिश है
0: जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आपका ये अगला पड़ाव भी आप जल्दी इस तक पहुंचे, इसे अचीव करें और उसके बाद अपने लिए फिर एक नया सपना संजोए और आपकी जो अलग अलग उपलब्धियां होंगी उस पे हम इस तरह से शामिल होंगे संजीव जी कि फिर आपको हम कष्ट देंगे, अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और आपकी किसी नई उपलब्धि पर हम फिर से आपसे बात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी और तमाम श्रोताओं को भी मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ सुना। बस ये पुरस्कार मुझे एक गेटवे की तरह लाइफ में आया है
0: जी,
1: देखते हैं हाईवे पर कब जाते हैं
0: जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता विवेक कुमार तोमर के साथ मैं नीलम मलकानिया, हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।

Mr.

Fatima.

يد الله فوق أيدي.

0: कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद

0: सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबाहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैंकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैंकड़ों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartruhari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from Lower House and 10 from Upper House, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. The Ministry of Education has approved 5 centers of excellence for studies in classical languages. Department of Higher Education has approved the establishment of the 5 centers of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali and classical Prakrit. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rajinagar Assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and Central Force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. Ministry of External Affairs has summoned the Charge d'Affaires of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector in Punjab along the international border on Friday. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on 4th of October last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smith Machar and Prime

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी और बहुत प्यारी सी बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: खूबसूरत कहना भूलती नहीं है मनीषा, खास करके क्योंकि इससे थोड़ा सा ना एनर्जी आ जाती है
0: जी,
1: जरूरी
0: बिल्कुल, खुद को भी कॉन्फिडेंस आता है।
1: हाँ,
0: और हमारी
1: हाँ,
0: बहनें भी बहुत खुश हो जाती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: यमुना पिता शब्द है जीवन दर्शन, माँ जीवन का सार, पिता शांत है सागर सा और माँ गंगा की धार।
1: पिता अंधेरों में दीपक सा, माँ भटकों को राह, मात पिता इन दो शब्दों में मिल जाता संसार। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। जब हम पितृपक्ष की बात करते हैं तो इस समय पितृपक्ष का दिन चल रहा है, और खास करके देखा जाए तो पितृपक्ष हिंदू धर्म में अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनके निमित्त जो भी श्राद्ध तर्पण जो भी होता करने का विशेष समय है।
0: जी हाँ, इस प्रकार पितृपक्ष लगभग 15 दिनों का यमुना वह समय है जिसमें लोग अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करते हैं।
1: बिल्कुल। और इस प्रकार देखा जाए तो तर्पण की हम बात करते हैं, जल और काले तिल अर्पित करके पूर्वजों का स्मरण

0: किया जाता है, और इतना नहीं है, श्राद्ध और पिंडदान भी किया जाता है।
1: जी हाँ, और साथ ही साथ हम दान पुण्य भी करते हैं और सेवा भी देते हैं।
0: हाँ।
1: इसमें अन्नदान, वस्त्रदान, पशु पक्षियों को भोजन कराना, जरूरतमंदों को भोजन कराना, ये परिवारों की परंपरा का हिस्सा रही है हमारे सनातन
0: धर्म में।
1: जी।
0: तो अगर देखा जाए तो ये 26 सितंबर से शुरू होकर के 10 अक्टूबर तक चलेगा, और इसमें श्रद्धा भाव प्रकट करने का सबसे शुभ अवसर है। और ऐसे में सच कहें तो अगर अपने ही नहीं, अपने पूर्वज ही नहीं, अगर कोई राह चलता मिलता है तो उनको भी उतनी श्रद्धा भाव से, उतनी स्नेह से उनको आदर सम्मान दे, उनकी जरूरत को पूरा करें।
1: जी।

0: हर दिन कुछ खास होता है मनीषा, और खास करके अगर हम बात करें तो हमारे साथ जीव जंतु पशु पक्षी भी जुड़े होते हैं, हमारी दिनचर्या में जुड़े होते हैं, हमारी प्रकृति से जुड़े होते हैं, और हमें बहुत कुछ देते हैं जाने अनजाने में। हम उन्हें थोड़ा सा अगर प्यार देते हैं तो उसका वो 100 गुना देते हैं। इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इसी सोचने समझने की बात को लेकर के विश्व पशु दिवस हम लोग मना रहे हैं आज के दिन।
1: हाँ यमुना, और हमारे जो सनातन धर्म है उसमें ये बात भी है कि पशु पक्षियों की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा कितनी अनन्य है ना। हम जैसे पितृपक्ष चल रहा है उसमें हम कौवे ढूंढते हैं
0: कि हाँ,
1: गाय ढूंढते हैं,
0: हाँ, गाय ढूंढते हैं।
1: तो खाना खिलाने के लिए, हम जिमाने के लिए ढूंढते हैं अक्सर पशुओं को। लेकिन कई बार दफा ऐसा भी होता है कि उन्हीं पशुओं को हम दुत्कारते भी हैं कभी कभी। तो ऐसा ना करें कि जब जरूरत हुई तो हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, और जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हम उन्हें दुत्कार रहे हैं।
0: बिल्कुल, मेरे मन में एक बात आ रही है, दुत्कारने की जो बात आ रही है, हम कभी कभी जैसे हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी भावना होती है, ऐसे उनकी भी भावना होती है। वो भी समझते हैं कि कौन हमें प्यार कर रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन हमें दुत्कार रहा है, तो उनके मन में भी क्रोध आता है। जैसे आप किसी को प्यार करोगे तो वो आपकी तरफ खिंचता चलाएगा, लेकिन आप जब नफरत करोगे तो वो भी पहले से भौंकना शुरू कर देगा, या पहले से ही अपनी एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देगा। तो ये चीज होता है, जब आप थोड़ा प्यार किसी को देंगे, पशु स्वरूप में ही क्यों ना हो, तो आप ये समझ के चलोगे आपको भी पूरा प्यार मिलेगा।
1: बिल्कुल,
0: खास करके जो आज का दिन चल रहा है, जैसे आज हम विश्व पशु दिवस मना रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन की ये बात नहीं है, ये अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में लाना होगा कि हर पशुओं का हम कद्र करें, उनकी देख रेख, उनको एक सम्मान दे जैसा उनको देना चाहिए।
1: बिल्कुल, पशु पक्षी हमारे बेजुबान हैं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं। यदि कोई घायल पक्षी पड़ा होता है ना यमुना, और उसकी हम मरहम पट्टी करते हैं, तो वो भी समझता है कि इस इंसान ने मेरे लिए मरहम पट्टी किया है, मुझे सम्मान दिया है, मेरी केयर की है, तो वो भी समझता है। और ऐसे में पशुओं के प्रति इंसानी क्रूरता को रोकना, सम्मान, उनका हक दिलाना, और साथ ही साथ जहां पर वो रहते हैं यानी जंगलों का संरक्षण करना भी विश्व पशु दिवस के अंतर्गत आता है।
0: बिल्कुल, और हर साल जैसे 4 अक्टूबर को ये मनाया जा रहा है विश्व पशु दिवस, तो बता दें कि जो पहली बार विश्व पशु दिवस मनाया गया 1925 को बर्लिन माने जर्मनी में मनाया गया, और ये दिन जानवरों के संरक्षण और देखा जाए तो उनके प्रति एक प्यार लगाव रखने का सबसे बड़ा दिन है ये।
1: जी हाँ, तो शुरुआत हमेशा अपने घर से होती है, तो घर के आसपास के पशुओं को पानी दें, खाना खिलाएं, भोजन दें, और उसी से उनकी सहानुभूति प्रकट करें।
0: और एक बात और है, जब पिक्चरों को हम देखते हैं तो फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि पहले पहले चिट्ठी पत्री जो पाती भेजी जाती थी, पता है कैसे भेजी जाती थी,
1: कबूतर ले जाते थे,
0: डाकिया भी फेल
1: जी हाँ, हाथी घोड़े हमारे बहुत काम आते थे, और साथ ही साथ कबूतर तो बहुत ही बढ़िया काम करते थे भाई, चिट्ठियां ले जाकर के साजन को देते थे।
0: तो मतलब कुल मिला के एक डाकिया का भी काम वो करते थे, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितने काम के हैं ये, तो इनको बचाए रखना है पशु संरक्षण दिवस पे, हम यही कहना चाहेंगे
1: जी।

0: ये मैं ना गीत संगीत का माहौल बड़ा अच्छा सा बना हुआ है लेकिन हमारी बहनों को हमें जानकारी भी देनी है, जागरूक भी करना है, तो इसके लिए हम सुनवाएंगे उनको बातचीत, और बातचीत का विषय रहेगा स्वच्छता द्वारा महिला स्वास्थ्य सुरक्षा। बातचीत में भाग ले रही हैं डॉक्टर जया चावला, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रही हैं कमलेश मुद्गल।
1: चलते हैं, सुनते हैं बातचीत।
2: बात आती है हमारी बहनों की, ऐसे भी बातें हो जाती हैं, लापरवाही बरत देती हैं, और वो जब बीमार पड़ती हैं तब सोचते हैं कि काश हम उस स्वच्छता का ध्यान रख लेते। आज हमने बातचीत के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर जया चावला को, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में, और इनसे हम बात करेंगे स्वच्छता द्वारा महिला स्वास्थ्य सुरक्षा। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, हम केवल स्वच्छता की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत हमारी बहनों को किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा?
3: देखिए, एक तो स्वयं की स्वच्छता
2: जी,
3: फिर अपने परिवार की स्वच्छता
2: जी,
3: और उसके बाद अपने आसपास की, घर के अंदर स्वच्छता, घर के बाहर स्वच्छता, क्योंकि हम अपने घर परिवार परिवेश से दूर रह करके काम नहीं कर सकते
2: जी।
3: कोई भी बीमारी अगर हमें है या हमारे पार्टनर को है तो उसका जल्दी से जल्दी अस्पताल में आके निदान करा लेना, इससे पहले कि वो दूसरे वाले व्यक्ति को चली जाए, वो बहुत आवश्यक है। तो हेजिटेट ना करें, जैसे ही आपको लगता है कि कोई डाउट है आपको आके हमसे मिल लेना चाहिए
2: जी। तो महामारी एक ऐसा समय होता है कि हमारी बहनें हैं या जो हमारी बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं जिनका अभी अभी मासिक धर्म आरंभ हुआ है, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पहले टाइम था कपड़ा इस्तेमाल करने का
2: जी,
3: आज भी है बहुत घरों में
2: जी,
3: उससे बहुत समस्या है, क्योंकि आप उस कपड़े को साफ बार बार नहीं कर सकते
2: जी,
3: उसमें कुछ भी छूटेगा तो उसके जो नतीजे हैं वो इतने भयंकर हो सकते हैं कि मैं यहाँ बताना भी नहीं चाहूंगी, लोग डर जाएंगे, लेकिन वो जानलेवा बीमारियों की हद तक जा सकती है चीज
2: जी।
3: तो सबसे पहला नियम ये है कि आप कोई

0: ऐसी चीज इस्तेमाल करें जो कि दोबारा नहीं इस्तेमाल करनी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सैनिटरी टैम्पन्स आजकल बहुत जगहों पे वेंडिंग मशीन्स भी लगा रखी है सरकार ने, जहां से फ्री ऑफ चार्ज भी निकल के आते हैं या बहुत नॉमिनल चार्ज पे भी निकल के आते हैं। फिर दूसरी बात आती है कितनी बार चेंज करें। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे आप खेतों में जाके काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने किसी भी कार्यस्थल पे जा रहे हैं, तो आपको अपने लिए अमूमन एक या दो एक्स्ट्रा पैड्स या कोई इस तरह की जो भी आप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्स में रखना आवश्यक है। दूसरा, उसके साथ उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, जब वो इस्तेमाल हो जाएगा उसको फेंकेंगे कैसे। उसके लिए ब्राउन पेपर या जो भी तरह का पेपर बैग आप अपने पास रखना चाहते हैं वो भी रखना उतना ही आवश्यक है जितना उसको रखना आवश्यक है। इसके अलावा हमें ये चाहिए कि जहां भी आप जा रहे हैं वहां पर सुविधा हो शौचालयों की। अगर विमेन के लिए वहां पर फैसिलिटी ही नहीं होगी तो डिस्पोज ऑफ करना, चेंज करना थोड़ा समस्याजनक बन सकता है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने समाज को, अपने परिवेश को इस तरीके का बनाएं कि वो स्त्री के लिए भी उतना ही मित्रवत हो जितना वो पुरुषों के लिए है।
1: बिल्कुल,
0: ये एक समानता से आगे की बात है, ये मानवीयता की बात हो रही है
1: जी।
0: कि जब हम स्त्री से काम करा सकते हैं तो उसी स्त्री के लिए ये जो आवश्यक सुविधाएं हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आगे चल के कार्य क्षेत्र में, जहां पर भी इनका होना आवश्यक है, जहां पर आपने शौचालय बना दिया वहां पानी आना आवश्यक है
1: जी।
0: वहां पर डस्टबिन रखना आवश्यक है
1: जी।
0: तभी जाकर के ये परिवेश स्वच्छ हो पाएगा और जैसा हम बनाना चाहते हैं अपने समाज को वो वैसा नजर आएगा।
1: जो अपने आसपास का जो वातावरण है उसको हम साफ रखने के लिए क्या करें?
0: देखिए, आजकल के परिवेश में सबसे ज्यादा बीमारी जो चल रही है डेंगू। क्या हो रहा है? दिन में काट रहा है मच्छर
1: जी।
0: मच्छर कहाँ आएगा? जहाँ गंदगी होगी
1: जी,
0: पानी होगा ठहरा हुआ वहीं आएगा
1: जी।
0: तो अगर हमारे पास जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर हमारी नियमित सफाई, हमारे मासिक से रिलेटेड सफाई, पहले जीवित रहना तो आवश्यक है
1: जी।
0: तो हमारा जो घर है उससे बाहर निकल के हम कहाँ जा रहे हैं? इमिडिएटली बाहर।
1: बिल्कुल,
0: जब आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं?
1: वहीं
0: से आ रहे हैं
1: जी।
0: वही बीमारी हमारे ही चप्पलों में, जूतों में चल के वापस हमारे ही घर में आ रही है
1: जी।
0: ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, किसी भी इंसान को समझ में आ सकती
1: बिल्कुल।
0: है। तो आजकल हमारे पास घरों के बाहर तक आती हैं गाड़ियां जो लेके जाती हैं हमसे कूड़ा। फिर हमारे जो राष्ट्र में आजकल पॉलिसी है सूखे और गीले कूड़े को अलग अलग सेग्रीगेट करने की, उसके लिए भी हमें फैसिलिटी दी जा रही है कि अलग अलग कलर्स की पॉलिथिन्स हैं, सब कुछ है। तो अगर हम थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों की तरह, पढ़े लिखे से भी ज्यादा समझदार, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने परिवेश के लिए जागरूक व्यक्ति बने, ये एक अवचेतन में घुस जाने वाली चीज है कि जो सामान चाहिए नहीं वो मेरे आसपास भी नहीं होना चाहिए और मेरे सामने वाले व्यक्ति मेरे पड़ोसी के आसपास भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका पड़ोसी बीमार है तो आप बहुत ज्यादा समय के लिए सुरक्षित नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: आपका पार्टनर बीमार है तो आप बहुत ज्यादा समय के लिए सुरक्षित है नहीं, क्योंकि आप भी उसी परिवेश में हैं, यकीनन आज नहीं तो कल आप भी उस बीमारी की चपेट में आएंगे। आप ऐसा मान लीजिए कि गंदगी एक आग है
1: जी,
0: अगर पास वाले घर में लगी है तो आपको नहीं समझना चाहिए कि आपका घर बहुत सेफ है
1: जी।
0: तो और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो मासिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, गंदे कपड़े या जो भी हम इस्तेमाल करना चाहें, मतलब मैं डराना नहीं चाहूंगी लेकिन कितनी बार औरतें हमारे पास बाद में आती हैं कि हमें बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी हो गई है, और जब हम अंदर जांचें करते हैं तो देखते हैं कि नले जो है वो बंद हो गए हैं इन्फेक्शन से। वो इन्फेक्शन कहाँ से आया? नीचे से ऊपर चल के गया है। वो पहले वो आपकी योनि से गया ऊपर बच्चेदानी तक और उससे आगे गया ट्यूब्स तक, ट्यूब्स हो गई बंद। अब आपको IVF जैसे महंगे खर्चे और बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाना, बार बार सुइयां लगाना और उसके बाद भी वो बच्चे ना हो पाना। आपके घर में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं अगर वो इस समय अपनी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखेंगी तो आगे चल के उनके जीवन में जो समस्याएं आएंगी मैं उन पर जा रही हूँ। अगर PID बहुत ज्यादा फैल जाए तो क्या होगा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी चीजें तक आप जा सकते हैं जो आपको ICU तक पहुंचा सकती हैं। अगर आप किस्मत वाले हैं तो आप ICU से वापस अभी आ सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं ध्यान रखें तो उसके आगे भी वो चीज जा सकती है। अपनी जान की कीमत देकर के अदा करने से तो ज्यादा अच्छा है कि हम एक साफ सैनिटरी टैम्पन पे थोड़े से पैसे खर्च करें
1: जी। आजकल हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं और नौकरी के लिए अपने गाँव से निकलकर शहर की तरफ भी जाती हैं, और जो हमारी शहर की बहनें हैं वो तो यहाँ पर कार्यस्थल पर काम करती हैं। तो जब कार्यस्थल की बात आती है तो हर कोई जो है खुश दिखता है, लेकिन जब हाइजीन की बात आती है या स्वच्छता की बात आती है उस पर हमारी बहनों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये तो हम बात कर चुके हैं कि मासिक से संबंधित जो भी उनको चीजें चाहिए वो उनके पर्स में रहें, हमेशा एक्स्ट्रा भी रहें तो अच्छा रहेगा
1: जी।
0: एक छोटी चीज आजकल देखती हूँ कि बहुत लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां मेरे पास आती हैं यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की समस्याओं, संक्रमण के साथ में
1: जी।
0: कारण क्या होता है? पानी लेके नहीं चलते साथ में
1: जी।
0: और पानी कई बार कार्यस्थल पर नहीं मिलता। तो अगर वो लोग भी मुझे सुन रहे हैं जो कार्यस्थल डिजाइन करते हैं, जो अथॉरिटी बन गए ऑफिसर हैं, तो मैं चाहूंगी कि बाकी चीजों को

0: सुसज्जित करने के साथ, फर्नीचर रखने के साथ, वहाँ एक स्वच्छ पानी का सोर्स भी रखें
1: जी
0: कि आप लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके, यूटीआई ना हो। नहीं हो रहा है तो आप पानी साथ लेके चलिए
2: जी,
0: उसको नियमित रूप से पीते रहिए, ताकि आपको बाहर का पानी, अस्वच्छ पानी ना पीना पड़े, उससे बीमारियां ना हो
2: जी।
0: खाने के लिए घर से लेके जाइए, पैक लेके जाइए, जो भी चीज लें वो पैक दो
2: जी।
0: खुली चीजों का सेवन ना करें ताकि आप उस चीज से बच सकें
2: जी।
0: जो आप वॉशरूम जाते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स यूज करने पड़ते हैं, तो आजकल स्प्रेज आते हैं टॉयलेट सीट को स्प्रे करने के लिए, ताकि वो साफ हो जाए, क्योंकि पिछला वाला व्यक्ति क्या संक्रमण लेकर के उसको यूज करके गया हमें नहीं पता
2: जी। डॉक्टर साहब, मान लीजिए हम स्प्रे नहीं लेकर गए और वहीं पर अगर हमें पानी मिलता है, अगर उसको पहले पानी से वॉश कर लें,
0: टिश्यूज उसको क्लीन कर लें, वहाँ पे पेपर अगर आपको मिल रहा है, टॉयलेट पेपर है, उससे क्लीन कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी उपलब्ध है, जागरूकता लाकर उसका इस्तेमाल करें
2: जी,
0: और बीमारियों से बचें
2: जी। कुछ हमारी बहनें इतनी डरती हैं कि जब वो सफर पर जाती हैं तो पानी कम से कम पीती हैं, अगर हम बाहर के टॉयलेट यूज करेंगे तो हो सकता है हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाए, तो क्या ये करना उनके लिए ठीक है?
0: बिल्कुल उचित नहीं है
2: जी।
0: पानी आपके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, पानी के बिना शरीर में पेशाब जो है वो इकट्ठा हो रहा है ब्लैडर के अंदर, आप कई कई घंटे जा नहीं रहे, इससे आपको सोचने से भी दूर की बीमारियां संभव है होना। अगर वो यूटीआई जो है आपका ब्लैडर से ऊपर चढ़ जाए और आपकी किडनीज तक पहुंच जाए, गुर्दे खराब आपके कर देगा, पाइलोनेफ्राइटिस जैसी गंभीर बीमारियां आपको हो जाएंगी, जिनका फीवर नहीं उतरेगा, आपको इतने दर्दनाक इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे उससे बाहर आने के लिए, आपको फिर अस्पताल के ही नहीं आगे आईसीयू तक के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, संभव है कि आप डायलिसिस तक पहुंच जाएं, तो मैं समझती हूँ एक बोतल पानी पी लेना इस सबसे तो बहुत आसान नुस्खा है इससे बचने के लिए।
2: डॉक्टर साहब, आपने अभी एक बहुत ही अच्छी बात की कि आप हमें डॉक्टर से पहले मित्र समझे, तो मित्र जो होता है वो हमेशा अच्छी ही सलाह देता है, और वो यही चाहता है दूसरा मित्र है वो हमेशा अच्छा ही रहे। एक मित्र के नाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सिर्फ एक बात
2: जी,
0: अपनी सेहत को अपने हाथ में रखिए
2: जी,
0: उसकी जिम्मेदारी लीजिए, और जब माँ अपनी जिम्मेदारी खुद ले रही होगी, अपनी स्वच्छता पे ध्यान रख रही होगी, तो बेटी को सिखाने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा,
2: वो देखकर
0: उसको
2: सीख जाएगी।
0: बड़ी बहन को देख के सीख जाएगी
2: जी।
0: जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके जूनियर्स, उनके क्लासमेट्स उनको देख के सीख जाएंगे कि ऐसे करना होता है
2: जी।
0: और उस तरीके से एक कड़ी से कड़ी जुड़कर एक पूरा समाज, एक पूरा राष्ट्र और वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया
2: जी
0: साफ हो सकती है। बस ये मान लीजिए कि सिर्फ मुझे ही नहीं साफ होना, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे राष्ट्र को साफ करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। गाड़ी में से पर्चा वो बाहर फेंकते वक्त का रैपर ये मत सोचिए कि सड़क तो मेरी नहीं है
2: जी,
0: वो भी आपकी ही है।
2: बिल्कुल,
0: बस उतना किसी को समझ में आ जाए तो मैं समझती हूँ कि हमारी जरूरत कम हो जाएगी
2: जी। यानी वो छोटी छोटी चीजें जो हम आज नजरअंदाज कर देते हैं, अगर उन पर हम धीरे धीरे ध्यान लगाएंगे और उन पर काम करना आरंभ करेंगे, हमें सड़क पर या कहीं पर भी कोई भी कागज बिखरा हुआ नहीं मिलेगा, के ढेर नहीं दिखेंगे, तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा पूरा गांव स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे और हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहे। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए और हमारी बहनों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: स्वच्छता द्वारा महिला स्वास्थ्य सुरक्षा, मतलब महिलाएं अपनी स्वच्छता को बनाए रखने के साथ साथ अपनी स्वास्थ्य की सुरक्षा वो कैसे करें, इस विषय पर अभी जानकारी दे रही थी जया चावला जी, डॉक्टर जया चावला जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी सखी कमलेश मुद्गल। और एक बात और कहेंगे मनीषा की, जब हम स्वस्थ होते हैं तो जाहिर सी बात है चमक होती है, सुंदरता आती है, है ना?
4: और जब चमक होती है तो लोग क्या कहते हैं,
3: क्या कहते हैं बताएं?

0: यमुना, हम जब बात करते हैं छोटे छोटे बच्चों की, तो बच्चे जो है ना, वो हमारे देश का एक सुनहरा भविष्य है, और उनके भविष्य को निर्मित करने की जिम्मेदारी होती है हम सबकी। और उनका भविष्य जो निर्मित होता है, एक सुनहरा भविष्य, वो होता है अच्छी आदतों से, खान पान के बेहतर ढंग से। और आजकल के जो माहौल में सबसे ज़्यादा समस्या बनी हुई है, ज़्यादातर बच्चों का मोबाइल यूज़ करना, लैपटॉप चलाना और टीवी के आगे घंटों बैठे रहना, यानी कि स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का, वो बहुत बढ़ गया है।
1: टीवी की तो हम बात ही ना करें, टीवी
0: जी
1: तो पीछे रह गए इस समय। अगर देखा तो स्क्रीन जो टाइम है ना,
0: जी
1: मोस्टली जो है मोबाइल पे ही डिपेंड हो गया है। लेकिन दो दो इसके पहलू अगर देखा जाए, तो पहली बात जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो भी ये थोड़ा बहुत कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चे करते हैं, तो जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनके लिए तो भाई वो जरूरी है मोबाइल के सामने रहना। लेकिन जो बच्चे ऐसे क्लासेस नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चे, मैंने आते जाते भी रास्ते में भी देखा कई जगह, अगर बच्चा रोता है तो उसे मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल देखता है वो, उसमें कुछ गेम वेम देखा, बस खुश हो गया, और माँ को लगा कि भाई ठीक है अब तो खुश है, अब रो नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि जो बचपन में, मतलब 3 साल 4 साल के बच्चे के हाथ में अगर आपने मोबाइल शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया, तो उसकी आदत कितनी खराब हो जाएगी कि वो फिर हैबिट वही उसकी पड़ जाएगी कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए तो हम खाना खाएंगे, मोबाइल चाहिए तो हम हंसेंगे, नहीं तो हम रोएंगे, जिद करेंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देने वाली ही बात है कि स्क्रीन टाइम जो है किस तरीके का वो बिता रहा है।
0: जी हाँ, बिल्कुल। और इसको कम करने के लिए हम छोटी छोटी जो आदतें हैं वो डेली रूटीन में हम शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हम ही अगर ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, हम ही स्क्रीन पर बैठे रहेंगे, तो बच्चा तो देखेगा और फिर वो वही करेगा।
1: बिल्कुल
0: तो कोशिश ये करें कि कम से कम मोबाइल के साथ समय बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अपने बच्चों के साथ बिताएं। और साथ ही साथ एक घर में एक छोटा कोना ऐसा ज़रूर बनाएं, जैसे खाने की टेबल हो
1: हाँ
0: गई या फिर सोने का बिस्तर हो गया, वहां पर हमारा स्क्रीन यानी नो स्क्रीन

0: तो आप दूसरे तरीके से उसे मॉडिफाई करके दूसरा तरीका अपना के कुछ और ऐसा बना करके आप खिला सकते हैं, जैसे बच्चे हमारे तुरई नहीं खाते हैं, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल है, तो हम दाल में सब्जियां डाल देते हैं, वो दाल में डाल के बना देते हैं, घुल जाता है, उनको पता नहीं चलता कि इसमें क्या पड़ा है, तुरई पड़ी है, लौकी पड़ी है, क्या पड़ा है, सब खा जाते हैं। तो बहुत से कोफ्ते भी बनते हैं, आप लौकी नहीं खाते बच्चे, लौकी को कोफ्ता बनाइए, वो प्यार से खाएंगे बच्चे।
1: जी हाँ, लौकी की तो आजकल लौज भी बनती है, बर्फी बनती है, हलवा बनता है, वो प्यार से खाते हैं बच्चे। यानी कि स्वरूप बदल दीजिए,
0: स्वरूप बदल
1: जरूरी
0: दीजिए।
1: नहीं है कि आप लौकी की सब्जी ही बनाएंगे, लौकी को अलग अलग फॉर्म में बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, तो बच्चे बड़े प्यार से और आनंद लेकर खाएंगे। साथ ही हम बच्चों को जंक फूड की आदत ना डालें। जंक फूड की आदत हम अक्सर ऐसे डाल देते हैं कि भाई बच्चों का डिब्बा पैक करना है सुबह, मम्मी के पास टाइम नहीं है, मम्मी ने फटाफट से ब्रेड जैम लगाया और ले रख दिया,
0: बस
1: ले जा भाई। तो ये तो हो गई हमारी कि हमने अपनी जो है राड़
0: निपटा
1: काट
0: दी
1: दी।
0: बस।
1: तो ऐसा ना करें भाई, बच्चों का स्वास्थ्य हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है।
0: एक बात और है ना, जैसे आपने कहा कि राड़ काट दी ले गए जाए, लेकिन आप ये सोचो जो बच्चा दिन भर स्कूल में रह रहा है, सुबह के नाश्ते में बहुत कुछ खास नहीं लिया है और लेकर के टिफिन को जा रहा है, दो रोटी भी उसके पेट में नहीं जा रहा है, तो आप सोचिए उसके स्वास्थ्य में गिरावट आना
1: बिल्कुल,
0: स्वाभाविक सी बात है।
1: ये बड़ा ही सोचने का एक विषय है
0: हाँ
1: जिसपे
0: हाँ
1: हम सभी को सोचना चाहिए कि हम बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं, बच्चों के लिए ही हम सारी सुविधाएं
0: तो वही बीमार
1: जुटा
0: पड़
1: रहे हैं, और
0: जाता है
1: उन्हीं
0: फिर।
1: को हम कुछ चीजें ऐसी हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं, हम बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं सही समय पर, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, बेकार हैं।
0: और जो फास्ट फूड है उसके बारे में बच्चों को जागरूक करिए, बताइए कि ये चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, कैसे नहीं है उसका रीजन बाकायदा दे करके बताइए, वीडियो दिखा के बताइए कैसे हानिकारक है ये। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है।
1: जी हाँ, अच्छी आदतें डालेंगे तभी बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित और संरक्षित होगा।
0: और कुछ
1: लेकिन फिर कभी
0: चीजें
1: कभी यमुना ऐसा भी होता है ना, बच्चे माँ बाप को दुश्मन भी समझ लेते हैं।
0: दुश्मन नहीं समझते, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इन्होंने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी,
1: जी
0: या
1: हाँ
0: कोई अगर मान लीजिए गेम में जाना चाह रहा बच्चा, उसे
1: हाँ
0: सुबह 4 बजे पापा उठा दिए, भाई चलो तुम दौड़ लगाओ, अब उसे लगता है कि भाई नींद से बढ़ के क्या है दुनिया में, सो थोड़ा सा, नहीं, थोड़ा सा बस 4 बजे उठा दिए, समझ लो तो गुस्सा लगेगा ही लगेगा।
1: लेकिन
0: तो फिर
1: यमुना, एक एक चीज मैं कहना चाहूंगी
0: हाँ
1: कि हम सख्ती करें पर उसको समझाएं कि हम ऐसा कर रहे हैं तो उसका
0: क्यों
1: कारण क्या है।
0: क्या है,
1: हम आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, हम चाहते हैं कि आपका
0: आपके
1: जीवन
0: भविष्य के
1: शैली
0: प्रति,
1: अच्छी हो।
0: आपके भविष्य
1: बिल्कुल
0: के प्रति
1: बिल्कुल,
0: हम जागरूक
1: तो
0: हैं।
1: इसीलिए हम ये चीजें आपके साथ कर रहे हैं, ये थोड़ी सी सख्ती कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार भी दर्शाएं।
0: बिल्कुल, एक बात और है, बच्चे क्या कहते हैं ना कि आप जब बड़े हो जाते हैं कुछ नहीं बन पाएंगे, तो जानते क्या कहें, आपने मुझे समय से जगाया नहीं, पढ़ाया नहीं, हमें काबिल बनाया नहीं,
1: जी
0: तो वो मौका मत दीजिए, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा बोलेंगे, और कैसे बोलेंगे, इस गीत के जरिए सुनिए बच्चे क्या कहते हैं गुस्से में।

0: बातें जब होती है जानकारी की तो हम बहुत सी ऐसी जानकारी लेकर के आते हैं कार्यक्रम के जरिए, और खास करके जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और आज हम बात करेंगे आयल सीड्स किसान मित्र की। तिलहन किसानों के लिए ISCR द्वारा शुरू की गई भारत की पहली राष्ट्रव्यापी व्हाट्सएप आधारित मतलब AI परामर्श सेवा केंद्र है। तो इस तरीके से देखा जाए जो
1: जी
0: इसके
1: हाँ, ऑयल सीड्स किसान मित्र एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभर रही है, जो तिलहन की खेती के बारे में विश्वसनीय शोध आधारित ज्ञान को सीधा किसानों के मोबाइल फोन पर और कभी भी उनकी अपनी भाषा में पहुंचा रही है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये।
0: बिल्कुल। और एक बात और, ये निशुल्क है, सुविधा किसानों के लिए पूरी तरीके से निशुल्क है, वो भी 24 घंटे के लिए है।
1: जी हाँ
0: हाँ, और ऐसी एक और जानकारी है, सेवा संकल्प की बात हम जो कर रहे हैं, और जब सेवा संकल्प की बात होती है तो ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्षों के सार्वजनिक सेवा काल और विकसित भारत 2047 के विजन को समर्पित 1 महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए, युवा सेवा संकल्प अभियान की हम जब बात करेंगे तो और जानकारी भी आपको हम देते रहेंगे।
1: जी हाँ, और हम आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को, और वीरांगना क्रम में आज बात करते हैं मातंगिनी हाजरा की। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 में हुआ था, और ये एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी रहीं। प्यार से इन्हें बूढ़ी गांधी कहा जाता था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हुगला गांव में गरीब किसान परिवार में ये जन्मी। कम उम्र में इनका विवाह हो गया और ये फिर विधवा भी हो गईं। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया और कई बार गिरफ्तार भी हुईं।
0: और जो बात है भारत छोड़ो आंदोलन की, इस दौरान तिरंगा फहराने के लिए लगभग 6,000 कार्यकर्ताओं का इन्होंने नेतृत्व भी किया, और ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें रोकने की बहुत मतलब प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन ये पीछे नहीं हटी और गोलियों का शिकार हो गई। जमीन पर गिरने के बावजूद तिरंगा नहीं गिरने दिया, वंदे मातरम का जयगान भी करती रही। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी वीर वीरांगना मातंगना हाजरी की, जो हम हाजिरा की बात हम कर रहे हैं, तो बहुत ही समर्पण का भाव था उनके अंदर, और हम भी चाहते हैं ऐसे ही समर्पण का भाव हमारे बच्चे आने वाले अपने युग में, अपने समय में बहादुरी के साथ आगे बढ़ें। और खास करके हम बात और करना चाहेंगे, एक और है हमारे स्वतंत्रता सेनानी की, हम बात करना चाहेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में, जो कि इनका जन्म 1897 आज ही वर्तमान गुजरात के तटीय शहर मांडवी में हुआ था। उन्होंने लंदन को भारत की आजादी की क्रांति का केंद्र बनाया, और 1905 में उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस द इंडियन सोसाइटी

0: और अब 2026 का चल रहा जो एशियन गेम्स, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं मनीषा।
1: जी हाँ, भारतीय महिला एथलीटों ने एशियन गेम्स में अद्भुत प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर अपने देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है यमुना।
0: और एशियन गेम्स 2026 की हम बात कर रहे हैं तो इसकी स्वर्णिम सफलताओं की हम बात कर लें। महिला हॉकी टीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ है, खास करके हॉकी टीम ने टूर्नामेंट की मौजूदा चीन को 1-0 से हराकर 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है।
1: जी हाँ, और तीरंदाजी में महिला रिकर्व ने तीरंदाजी में अंकिता भकल, कीर्ति कुमकुम मोहोद ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर पहली बार ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता।
0: और गोल्फ में नया इतिहास रचा गया है, गोल्फर प्रणवी उर्स ने इतिहास रचा और खास करके पहली भारतीय महिला गोल्फर बनने का गौरव हासिल किया।
1: जी हाँ, और निशानेबाजी में नीरू ढांडा ने ट्रैम शूटिंग के व्यक्तिगत फाइनल में 30 में से 28 सटीक निशाने लगाकर नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता।
0: ये महिला खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं और एथलेट्स की अगर हम बात करें तो किरण पहल, एम आर पुम्मा, प्राची चौधरी और विद्या रामराज की महिला चौकड़ी ने शानदार दौड़ लगाते हुए 400 मीटर रिले रेस में भारत में एकमात्र रैक में अगर देखा जाए तो 44 साल पुराने रिले दबदबे को भी कायम रखा।
1: जी हाँ, और क्रिकेट और कबड्डी में भी महिलाओं ने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला।
0: और मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने भी महिला 75 किलोग्राम भार में जो है उन्होंने अपना स्वर्ण पदक जीता। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी बहनें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और इस समय हम बात करना चाहेंगे कैप्टन स्मित मच्छर के बारे में, जो कि माक्षर एक भारतीय कमर्शियल पायलट हैं और खास करके आपने सुना होगा कि 30 सितंबर 2026 को दुबई से तेल अभी इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में आपात स्थिति में उन्होंने कैसे सहारा बना और कैसे 174 लोगों की जान बचाई।
1: जी हाँ, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बड़ा ही होशियारी और उसके साथ हिम्मत के साथ उन्होंने
0: उन्होंने
1: मुकाबला किया और लाखों लोगों की जान बचाई।
0: बिल्कुल, तो सलाम है ऐसे लोगों को, नमन है ऐसे लोगों को जो इतनी तेजी से कार्य करते हैं और हमें एक मुकाम देते हैं कि कैसे
1: जी
0: आप भी आगे बढ़ सकते हैं, बहादुरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो कार्यक्रम का समय समाप्त है लेकिन चलते चलते अपने बहनों को पता बताना बहुत जरूरी है।
1: जी

0: हाँ पता है, हमारा कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 1100 1।
1: फीडबैक हम बता दें, हमारा ईमेल का जो एड्रेस है feedback@fnh.gmail.com। और जो कार्यक्रम के प्रस्तुत है करता है वो तुषार पारा सर, और संयोजक है शिवनंदन
0: शिवनंदन लाल।
1: लाल। तो इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन चलते चलते एक चीज और हम बता दें कि हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा शाम का, वो
0: जी
1: 5:10 से लेकर 5:30 होगा, होगा लोक रंजनी और कृषि जगत ग्राम संसार। आप सुन सकेंगे 6:30 बजे से लेकर के 7:35 तक। तो लगातार ये कार्यक्रम शाम को भी आप सुन सकते हैं। तो चलते चलते कहना चाहेंगे बहनों को
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी उनका प्रिय कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार आज का अंतिम दिन है। मतदान से पहले सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए

0: आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the journey of Viksit Bharat will be built on the strength of India's institutes, MSMEs and startups. Addressing the 58th Foundation Day of Institute of Company Secretaries of India, that is ICSI, in New Delhi today, Mr. Radhakrishnan emphasized that the nation cannot progress without gaining the trust and confidence of the investors. The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world, while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements. Talking about ICSI, Mr. Radhakrishnan lauded the Institute for contributing in the promotion of good corporate governance in the country and described it as the global benchmark for sustainable development. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met United States Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo. In a social media post, Dr. Jayashankar said they discussed ways to further strengthen the security partnership and maritime cooperation between India and the United States in the Indo-Pacific region. Delhi police has transferred complaints of alleged sexual harassment made by 3 female journalists against police personnel to the crime branch for a fair and impartial inquiry. The alleged incidents took place yesterday during a protest in the New Delhi area where police personnel were deployed to maintain law and order. According to Delhi police, the New Delhi district received the complaints and handed them over to the crime branch for further investigation. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rajinagar assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and central force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through upgraded ITIs PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on 4th of October last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure, and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smit Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephone conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in foiling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family. Captain

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल का सबसे लोकप्रिय और मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी, आज आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक ही फिल्म से में ऐसी फिल्म की जिसमें रिश्ते हैं, उम्मीदें हैं, टूटन है, लेकिन सबसे बढ़कर है अपने अस्तित्व को पहचानने की तलाश। जी हाँ, आज की हमारी फिल्म है अर्थ। सन 1982 में आई महेश भट्ट की ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी या वैवाहिक रिश्ते की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है जब जीवन में हमारे सबसे करीबी रिश्ते ही हमारा सहारा ना रहे, तब हम अपने जीवन का अर्थ कहाँ तलाशें। तो आइए आज लगभग 4 दशक पीछे चलते हैं और बात करते हैं उस फिल्म की जिसमें रिश्तों को देखने का एक अलग नजरिया दिया, अर्थ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिल्म अर्थ की। फिल्म अर्थ का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था और फिल्म की कहानी तथा पटकथा में महेश भट्ट के साथ सुजीत सेन का योगदान था। फिल्म का निर्माण कुलजीत पाल ने किया। फिल्म की केंद्रीय कहानी है पूजा की, जिसका किरदार निभाया है शबाना आजमी ने। पूजा अपने पति इंदर के साथ एक सामान्य सी ग्रस्त जिंदगी जी रही है। इंदर की भूमिका में है कुलभूषण खरबंदा, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में एक तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है। वो तीसरा व्यक्ति है अभिनेत्री कविता, जिसका किरदार निभाया है स्मिता पाटिल ने। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी भावनात्मक यात्रा जिसमें सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रिश्ता टूटेगा या बचेगा, सवाल ये है कि टूटे हुए रिश्ते के बाद इंसान खुद को कैसे संभालता है। अर्थ की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि फिल्म अपनी कहानी को केवल पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं रखती। ये फिल्म आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और अपनी पहचान की बात करती है। पूजा के सामने एक कठिन परिस्थिति आती है।

सकती है। जिस घर को उसने अपना संसार समझा था, वही संसार अचानक उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से शुरू होती है पूजा की असली कहानी, और यही शायद इस फिल्म के शीर्षक अर्थ को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। अर्थ यानी मतलब, अर्थ यानी मूल्य, अर्थ यानी जीवन का उद्देश्य। फिल्म पूछती है, क्या किसी रिश्ते के खत्म हो जाने से हमारे जीवन का अर्थ भी खत्म हो जाता है?

अर्थ यानी मतलब, अर्थ यानी मूल्य, अर्थ यानी जीवन का उद्देश्य। फिल्म पूछती है, क्या किसी रिश्ते के खत्म हो जाने से हमारे जीवन का अर्थ भी खत्म हो जाता है?

कि मैं वक्त के साथ साथ चल रहा हूँ, जैसे जैसे काम मिलता गया और गजलें मकबूल होती गई वैसे वैसे आपको सुना रहा हूँ।

साथियों, जगजीत सिंह की आवाज और कैफी आजमी के शब्दों ने इस गीत को ऐसी भावनात्मक गहराई दी कि ये फिल्म से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से भी लोगों के दिलों में बस गया। तो आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जी हाँ, हमें पता है आप सभी आज ये कार्यक्रम सुनकर जो मुस्कुरा रहे हैं, जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आई है, खिलखिला रही है, वो हम जानते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है अर्थ। अर्थ की एक बड़ी विशेषता इसका संगीत भी है। फिल्म के संगीत से जुड़ा नाम है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। फिल्म में उनकी गजल नुमा शैली ने कहानी के भावनात्मक संसार को और गहरा किया है, जैसे कि झुकी झुकी सी नजर, कोई ये कैसे बताए। अभी आपने जो गीत सुना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो और तू नहीं तो जिंदगी में, जैसे गीत आज भी इस फिल्म की पहचान माने जाते हैं। खास बात ये है कि इन गीतों में केवल प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, इनमें अकेलापन है, सवाल है, अधूरेपन की कसक है और मन के भीतर चल रही बातचीत है। यही वजह है कि अर्थ का संगीत कहानी से अलग होकर भी कहानी का हिस्सा महसूस होता है।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फिल्म अर्थ की, जो रिलीज हुई थी 1982 में और आज है आपकी दोस्त तृप्ति चौरी आपके साथ। तो बात कर रहे थे हम फिल्म की कहानी के बारे में, फिल्म के किरदारों के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं फिल्म के तीन केंद्रीय किरदारों की। पूजा, जिसका किरदार निभाया शमाना आजमी ने, इंदर की भूमिका में थे कुलभूषण खरबंदा और कविता की भूमिका निभाई स्मिता पाटिल ने। तीनों पात्रों की अपनी अपनी कमजोरियां हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं और अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। फिल्म इन पात्रों को केवल सही और गलत के खाँचे में नहीं रखती, यही इसकी कहानी को अधिक मानवीय और बनाता है। शबाना आजमी के लिए अर्थ उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक बनी। फिल्म में पूजा के भावनात्मक सफर को उन्होंने बहुत संयम के साथ निभाया। उनके अभिनय की खासियत है कि कई बार बिना बोले भी वो बहुत कुछ कह दिया जाता है। एक नजर, एक ठहराव, एक चुप्पी और दर्शक समझ जाता है कि किरदार के भीतर क्या चल रहा है।

अर्थ के लिए शबाना आजमी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। आधिकारिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रिकॉर्ड में अर्थ के लिए उनकी जीत दर्ज है। और दिलचस्प बात यह है कि ये उनके लगातार 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला का पहला पड़ाव था। इसके बाद खंडर और पार के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। दूसरी ओर स्मिता पाटिल का किरदार कविता का था। कविता एक अभिनेत्री है, लेकिन उसके चमकदार पेशेवर जीवन के पीछे उसका अपना अकेलापन और असुरक्षा है। यही इस फिल्म की खूबसूरती है। फिल्म हमें ये समझने का अवसर देती है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी मजबूत दिखाई दे, उसके भीतर भी अपनी लड़ाइयाँ हो सकती है। स्मिता पाटिल ने कविता के भीतर की बेचैनी और असुरक्षा को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। और फिर आते हैं राज, जिसने निभाया राज किरण ने। राज किरण का किरदार कहानी में एक अलग भाव लाता है। वो पूजा के जीवन में उस समय दिखाई देता है जब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे केवल सहारा ही ना दे, बल्कि उसे ये याद भी दिलाए कि तुम अपनी जिंदगी खुद भी बना सकती हो। लेकिन अर्थ का सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही है कि पूजा को अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनना है। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ विवाह, एक तरफ अकेलापन, दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता, और इनके बीच खड़ी एक स्त्री जो आखिरकार खुद से पूछती है, मेरी जिंदगी का अर्थ क्या है?

0: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

साथियों, इतने मधुर से गीत और संगीत दिए हैं हमारे आज की फिल्म अर्थ ने कि एक भी गीत छोड़ने का मन नहीं कर रहा, और एक भी गीत आप सुने तो उसमें डूबे बिना आप रह नहीं सकते। और अर्थ फिल्म ही ऐसी है। अर्थ का मतलब है जीवन का मतलब, अपने होने की वजह, अपनी पसंद, अपना आत्मसम्मान, और शायद सबसे महत्वपूर्ण है अपने फैसले खुद लेने की क्षमता। और देखिए ना, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आपने अपने संदेशों के साथ कुछ ऐसे ही संदेश भेजे हैं, और हम जल्दी से नाम पढ़ देते हैं। राजकुमार डूडी, हीरामणि वर्मा, हरजिंदर शिंदा, कमलकांत गुप्ता, पूनम गंगनीजा, सुधाकर जाधव, डोमेंद्र नेताम और सुदर्शन शाह, इसी के साथ हमारे पास आए हैं जुमेल, इशाक मोहम्मद, सदानंद मांडूरकर, स्वर्ण सिंह, पीएस नाहवकर, संजय ढींगिया, सुदर्शन मुखी, राधे श्याम देवांगन और धर्मेंद्र छिपा, दिग्दर्शन गौड़, भूषण खेरा। कुछ श्रोताओं ने हमारे दोबारा दोबारा मैसेज भेजे हैं, जिसके कारण हम अन्य साथियों के संदेश नहीं ले पा रहे हैं। कमलकांत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरजिंदर छिंदा, तो ये सभी साथी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आइए चलते चलते सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि मुल्क के इदारों, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की कुव्वत पर विकसित भारत का सफर आगे बढ़ेगा। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। सनती तरबियती इदारों की कायापलट के लिए शुरू की गई पीएम सेतु स्कीम को एक साल मुकम्मल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल में कहीं कहीं तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। यमन के हुक्काम ने सना और सादा में हौसियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है। हौसियों ने रियाज में अरामको मरकज को निशाना बनाते हुए मिजाइल और ड्रोन हमला करने का दावा किया है। और 2026 के एशियाई खेल आज जापान के नागोया में इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। भारत सोने के 21 तमगों समेत मजमुई तौर पर 85 तमगे जीत कर चौथे मुकाम पर रहा। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत का सफर मुल्क के इदारों, छोटे, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों, निजी स्टार्टअप इदारों की कुव्वत पर आगे बढ़ेगा। वो आज नई दिल्ली में भारत के कंपनी सेक्रेटरियों के इंस्टीट्यूट ICSI के 58वें यौमे तासीस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब राधा कृष्णन ने जोर देकर कहा कि मुल्क सरमायाकारों का भरोसा और एतमाद हासिल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है, साथ ही वो तेज रफ्तार तकनीकी पेशरफ्त और तरक्की के दौर में भी दाखिल हो रहा है। भारत के कंपनी सेक्रेटरियों के इंस्टीट्यूट ICSI का तस्करा करते हुए जनाब राधा कृष्णन ने मुल्क में अच्छे कारपोरेट इंतजामिया के फरोग में इंस्टीट्यूट के अहम रोल की सताइश की और इसे पायदार तरक्की के लिए आलमी पैमाना करार दिया।
1: Today, as a global benchmark for sustainable development, the ICSI ensures that the modern company secretary fosters robust corporate transparency and serves as the backbone of investor confidence in the Indian market.
0: उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि मजबूत आत्मनिर्भर भारत की तामीर में ICSI की इज्तिमाई कोशिशों की बदौलत मुल्क एक दिन दुनिया की वाहिद सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। वहां मंगल के रोज वोटिंग होगी। इन दोनों हलकों में मरकजी फोर्सेज पहुंच रही हैं। इधर पुलिस और सेंट्रल फोर्स के अहलकारों ने पोलिंग से कबल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की खातिर मुख्तलिफ गांवों में रूट मार्च शुरू कर दिया है। अपग्रेड किए गए ITIs के जरिए प्रधानमंत्री हुनरमंदी और रोजगार के मौके फराहम करने वाली स्कीम पीएम सेतु का आज एक साल मुकम्मल हो गया है। हुनरमंदी की तरक्की और सनतकारी की वजारत की स्कीम पीएम सेतु का आगाज पिछले बरस 4 अक्टूबर को किया गया था। इस स्कीम का मकसद सनत पर मबनी हुक्मरानी को मजबूत करना, तरबियत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और उभरती हुई अफरादी कुव्वत की मांग के मुताबिक कोर्सेज को फरोग देना शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अजीम

0: आप पसंद रहनुमा और मुजाहिदे आज़ादी श्याम जी कृष्ण वर्मा के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुल्क के अवाम उनकी दिलेरी और मादर वतन के वक़ार के तहफ़ के तय उनके पुख्ता अज़्म को हमेशा याद रखेंगे। दिल्ली पुलिस ने 3 खातून सहाफियों की जानिब से पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुबैना तौर पर जिंसी एतबार से हरासा किए जाने की शिकायतों का मामला मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंक्वायरी की खातिर क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया है। ये मुबैना वाकयात नई दिल्ली के इलाके में कल एहतजाज के दौरान पेश आए थे। उस वक्त पुलिस अहलकारों को अमन कानून बरकरार रखने के लिए तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मजीद तहकीकात के लिए ये शिकायतें क्राइम ब्रांच को मुंतकिल कर दी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। इधर अगले 2 दिन के दौरान मराठवाड़ा और विदर्भ के बकिया हिस्सों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ और हिस्सों, नीज शुमाली कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों से जुनूब मगरबी मानसून के मजीद पीछे हटने का इम्कान है। यमन की फोर्सेज ने दावा किया है कि यमन में अहम महाजों पर हौसी लड़ाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। उधर सऊदी अरब ने हौसियों के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि सऊदी शहर रियाज को मिसाइल और ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। मीडिया इतलात के मुताबिक यमन की बैन अलाक्वामी सतह पर तस्लीम शुदा सरकार की मुसल्ला अफवाज ने 2 महाजों पर हौसी कुमक के खिलाफ 97 कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। इतलात में कहा गया है कि इस कार्रवाई में 260 हौसी लड़ाकों को हलाक किया गया है और 44 फौजी मोटर गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट नीज सप्लाई साजो सामान तहस नहस हो गया। मालूम हुआ है कि फोर्सेज ने सना और सादा में हौसी ठिकानों को निशाना बनाया। टकराव वाले अहम महाजों पर लड़ाई में तेजी आ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में खवातीन के 53 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर अंतिम पंघाल को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने चांदी का तमगा हासिल करने पर भारतीय खवातीन की गोल्फ टीम को भी मुबारकबाद पेश की है, जो आदिति अशोक, परनवी सार्थ उर्स और दीक्षा डागर पर मुश्तमिल है। जापान में जारी एशियाई खेल आज इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इस तरह 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी खेल मुकाबलों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। भारत ने 20वें एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीतकर 4थे मुकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। इन खेलों की इख्तितामी तकरीब जापान के नागोया शहर में पलोमो मिजू स्टेडियम में होगी। ये तकरीब अब से कुछ देर बाद भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगी। भारत की सरकर्दा निशानेबाज नीरू ढांडा इख्तितामी तकरीब में भारतीय दस्ते की परचमबरदार होंगी। भारतीय मुक्केबाजों का दस्ता एशियाई खेलों में अपनी शानदार मुहिम के बाद नई दिल्ली वापस आ गया है। अपनी आमद के बाद नामानिगारों से बात करते हुए मुक्केबाज लोलिना बोरगोहेन ने, जिन्होंने अपनी सालगिरह के दिन खवातीन के 75 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता था, इस बात को उजागर किया कि उनकी इस जीत ने इस संग मील को और भी खास बना दिया। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में दूसरी बार मुकाबला करने से उन्हें अपने खेल को बेहतर बनाते हुए सोने का तमगा जीतने का मौका मिला, जबकि सबका खेलों में उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया था।
1: हर एथलीट का सपना रहता है कि बड़े कंपटीशन में जाए, वहाँ गोल्ड मेडल लाए। एशियन गेम्स इतना बड़ा कंपटीशन है और ऊपर से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और इसीलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम्स है और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था, तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा स्पेशल था।
0: भारतीय फिजाइया ने आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दूसरी सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन का एहतमाम किया। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय फिजाइया की जुनूबी फिजाई कमान की जानिब से आज तिरुवनंतपुरम में वाके लूलू मॉल में सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन, SIM 2026 का अहतमाम किया गया। ये तंदुरुस्ती और लोगों से राबते के सिलसिले में भारतीय फिजाइया की एक अहम पहल है। ये प्रोग्राम भारतीय फिजाइया के वाहिद परमवीर चक्र याफ्ता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की अजीम कुर्बानी और बहादुरी को याद करने और हुब्बुल वतनी नज़्म

0: Bastards Conservation Programme. Mr. Yadav also thanked Prime Minister Narendra Modi for his support in enabling the scientific community to work towards the conservation. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Journey of Viksit Bharat will be built on strength of India's institutes, MSMEs and startups, says Vice President C.P. Radhakrishnan. In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram Rejinagar Assembly by-elections. PM Setu scheme aiming to transform industrial training institutes completes 1 year. IMD forecasts heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Yemen confirms strikes against Houthi-controlled areas in Sana'a and Sada'a. Houthi claims missile and drone attack targeting Aramco facilities in Riyadh. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. India secures fourth place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारत अपने संस्थानों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है
2: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है ब्यौरा हमारे संवाददाता से
3: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़ राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं।

0: के तहत 200 ITI क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 ITI क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
2: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
3: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
2: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी

0: जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के रियाद पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैस और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
3: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल

0: अजीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये हुए पूरे 18 सेकंड। स्वागत है आप सभी का, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज इस सफर में आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। और पूछना है आपको कि हमारे आज के कलाकार कौन है। चलिए एक छोटी सी हिंट आपको जरूर देती हूँ। वो उनके दिल में शौक था और दिमाग में था अभिनय का जुनून। ठीक है, चेहरा भी हीरो बनने लायक था, इसलिए सोचा कि अभिनय की बाकायदा ट्रेनिंग लेकर रुपहले पर्दे पर उतरा जाए। लेकिन किस्मत ने पहले ब्रेक दिया गाने के क्षेत्र में और उनके पहले ही गीत ने तहलका मचा दिया। अरे, मैंने आपको बहुत ज्यादा हिंट नहीं दे दी क्या? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अब आप इस गाने को सुनिए और मुझे बताइए हमारे आज के कलाकार कौन है।

जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझी। आज की हमारे कलाकार हैं हमारी बर्थडे बॉय शैलेंद्र सिंह, और हम आपसे कोई भी पहेली पूछें और आप उसको हल ना कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप सभी ने हल कर ली है, लेकिन आपकी सारी बातों को हम शुमार करेंगे हमारे कार्यक्रम में। उसके पहले जरा सी बातें हमारे आज के कलाकार के बारे में, क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, दिल में उतर जाती हैं, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ हमारी अपनी कोई पुरानी याद जुड़ जाती है। किसी को उन इनमें अपनी पहली मोहब्बत की झिझक सुनाई देती है, किसी को दोस्ती की शरारत, किसी को जवानी के उन दिनों की खुशबू जब प्रेम का इजहार भी थोड़ा मासूम हुआ करता था। ऐसी ही एक आवाज़ थी शैलेंद्र सिंह की, है ना। और आज 4 अक्टूबर है, और यह दिन हिंदी सिनेमा के उस गायक का जन्मदिन है जिसने बहुत कम समय में अपनी ऐसी पहचान बनाई कि उनकी आवाज़ एक दौर की पहचान बन गई। शैलेंद्र सिंह का जन्म आज के ही दिन 4 अक्टूबर 1952 को मुंबई में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्होंने हिल ग्रेंज हाई स्कूल से पढ़ाई की और सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक किया, लेकिन उनके मन में अभिनेता बनने का जो सपना था ना, वो इसी सपने को लेकर उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बाकायदा ट्रेनिंग ली। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए ज़िंदगी वह रास्ता चुन लेती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। शैलेंद्र सिंह आए तो अभिनेता बनने थे, और बन गए एक ऐसी आवाज़ जिसे हिंदी सिनेमा लंबे समय तक भूल नहीं पाया। हाँ, है ना। हमने अभी सुना बॉबी का गाना, और बॉबी ने ही हमें दिया शैलेंद्र सिंह। फिर ऐसा हुआ कि शैलेंद्र सिंह ने एक साक्षात्कार में बताया था कि राज कपूर ने उनकी आवाज़ सुनी और उसमें कुछ ऐसा महसूस किया जो उन्हें पसंद आया, और उस समय के कई बड़े नामों पर विचार हो रहा था, लेकिन राज कपूर ने एक नई युवा और बिल्कुल ताज़ा आवाज़ चाहते थे, और वो आवाज़ थी बॉबी, साल 1973। बस बन गए ऋषि कपूर की आवाज़ कौन, हमारे आज के बर्थडे बॉय शैलेंद्र सिंह। और अभी हमने ये गाना सुना, और इसके बाद में जो दूसरा गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है फिल्म अखियों के झरोखों से। अब इस फिल्म का नाम आते ही हमारे सामने आते हैं सचिन, और सचिन की आवाज़ कौन, शैलेंद्र सिंह। तो आइए सबसे पहले इस गाने को सुनते हैं, फिर हमारी दोस्तों की मेल्स का हम शुमार करेंगे कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है।

जी हाँ, सपनों में आवाज़ क्या, हमारी आकाशवाणी से भी आवाज़ दे रहे हैं शैलेंद्र सिंह अपने खूबसूरत अंदाज में, अपने खूबसूरत आवाज़ में। देखिए, हमारे साथ आप सब जुड़े हैं, तो कौन है हमारे साथ जुड़े हैं? दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, और इन्हें अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, थैंक यू। ये है निसार अली जी, और ये नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और ये धनौरी तिलीवाला उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। फिर हमारे साथ हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्णजीत सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। ये हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। और फिर इसके बाद में हमारे साथ हैं संजय ढींगिया जी, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से, और धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे साथ है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, और हमारे साथ हैं ये हैं ग्राम गांव कुम्हार डाडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, और इसके साथ ही हमारे साथ हैं राजकुमार डूडी जी गांव फरासी जिला हिसार से, इनके साथ हैं प्रमोद कुमार डूडी, और इन्हें शैलेंद्र सिंह के बारे में जानकारियां अच्छी लग रही हैं, गीत अच्छे हैं, शुक्रिया। फिर हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, और हमारे साथ हैं डब्बू सम्राट पंचकुल्ला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन जी ये, और इन्हें भी पसंद आ रहा है, धन्यवाद। हमारे साथ हैं मीरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़ और कविता गौड़, शैलेंद्र सिंह जी पर कार्यक्रम जो केंद्रित है इन्हें अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। फिर हमारे साथ हैं वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, धन्यवाद। धर्मेंद्र छिपा जी, शुक्रिया, आपका मेल हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ और चिरपरिचित अंदाज है आपका, उसके लिए धन्यवाद। आपके साथ हैं

जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है गायक शैलेंद्र सिंह की। तो बॉबी फिल्म से तो वो सुपरहिट हो गए थे और फिर उन्हें गाने के इतने प्रस्ताव मिले कि उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं रही। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, फिल्म खेल खेल में, फिर होगा तुमसे प्यारा कौन, जमाने को दिखाना है, फिल्म रफू चक्कर, फिर अखियों की झरोखे सी, मतलब अगर फेहरिस्ट बहुत लंबी है और उनके गानों का जो ग्राफ है, सक्सेस का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा है। लेकिन शैलेंद्र को अपना अभिनय का जो उनके अंदर एक छटपटाहट थी ना, जो अभिनय करना चाहते थे, एक्टर बनना चाहते थे, वो कहीं अभी भी दबी हुई थी। एक दिन उन्हें आरके स्टूडियो में राजेंद्र कुमार जी मिल गए। हाँ, वो जानते थे कि शैलेंद्र पूना फिल्म इंस्टीट्यूट्स के पास आउट हैं और इसीलिए उन्होंने क्या किया, राजेंद्र कुमार जी ने उन्हें राज कपूर से मिलवाया, क्योंकि राज कपूर और राजेंद्र कुमार के जो बड़े भाई हैं, राजेंद्र कुमार के जो बड़े भाई हैं, वो राज कपूर और राजेंद्र कुमार को लेकर के एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दो जासूस। और उस फिल्म में ना उन्हें एक नए चेहरे की ज़रूरत थी। राजेंद्र कुमार ने वो फिल्म शैलेंद्र को दिलवा दी। फिल्म तो खास नहीं चली, लेकिन शैलेंद्र को जहरीली जनता, हवलदार, नौकर और एग्रीमेंट सहित कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला। और ये इत्तेफाक रहा कि जनता हवलदार को छोड़ शैलेंद्र की कोई भी फिल्म हिट नहीं हो सकी। इस बीच उनके पास गीत गाने के प्रस्ताव बढ़ते चले जा रहे थे, इसलिए फिर उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव लिया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिंगिंग पर लगाया और इसीलिए उनका जो अभिनय का जो पैशन था वो थोड़ा कमजोर पड़ता चला गया। तो बस ये तो है हमारे सरल मिजाज शैलेंद्र सिंह, आज के हमारे बर्थडे बॉय। तो हम आपको उनका एक और गाना सुनाते हैं और आप बस इसको सुनिए और अपने इस प्यारे से गायक को याद कीजिए।

हमारे साथ जुड़े हैं बहुत से दोस्त, उसमें हैं चनेश्वर गोट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, और आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इसके लिए धन्यवाद। फिर हमारे साथ जुड़े हैं सहदेव दामोदर जी, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, आप बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ हमारे और भी दोस्त जुड़े हैं, जिसमें हम आपको बता देते हैं, ये हैं नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन, पता है पलारी छत्तीसगढ़, धन्यवाद। फिर हमारे साथ हमारे बहुत से और दोस्त जुड़े हैं, ये हैं स्वर्ण सिंह गिल जी, आपका मैं मेल शुमार कर चुकी हूँ, और हमारे साथ दूसरे हैं सुदर्शन मुखी जी का भी मेल शुमार हो चुका है। फिर राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, नेहा राजू, जगदीश देवांगन, शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। गुरमीत सिंह है, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नाहवकर, निर्मलता नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर। मलकापुर महाराष्ट्र से हैं नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष पन्हेकर। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किन की, जी हाँ, हमारे आज के बर्थडे बॉय हैं हमारे शैलेंद्र सिंह जी। अब इसके बीच में क्या हुआ कि वो बहुत ही सरल और सहज से इंसान है हमारे आज के बर्थडे बॉय। अब मैं इनके गाने, आपने हर तरह के गाने सुने, अब मैं आपके लिए एक ऐसा गाना लेकर आई हूँ जो 1985 का है। हाँ, अब 1985 में रिलीज हुई थी फिल्म सागर, ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया और कमल हासन। इस फिल्म का एक गाना आपके लिए लेकर आई हूँ जो मैं चाहूंगी आप सुने, और इसमें आप आशा भोसले के साथ शैलेंद्र जी की आवाज की रेंज भी देखें और उसमें उनका एक अलग ही वेरिएशन भी देखें।

ये है फिल्म सागर में आशा भोसले के साथ शैलेंद्र सिंह। देखिए इनके गाने बहुत सारे हैं और मैं चाहती हूँ हम बहुत सारे गाने इनके शुमार करें, तो बस आप घड़ी इशारा तो नहीं कर रही लेकिन एक गाने का मौका ज़रूर बन पड़ा है तो वो गाना आपको ज़रूर सुनाऊंगी। और देखिए इतना बता दूं कि इन्हें बॉबी फिल्म के लिए फिल्म फेयर नामांकन हुआ था, मैं शायर तो नहीं गाने के लिए, और कहते भी हैं कि अलमारियों में ही रखे जाते हैं आपके अवार्ड्स लेकिन गाने हमेशा यादों में बसते हैं। और अगर हम एक ऐसे कलाकार के बारे में आज बात करने गए हैं जो अभिनेता बनना का सपना लेकर FTI गया था, बॉबी ने उसे रात रात पहचान दे दी और मैं शायर तो नहीं उसे एक पीढ़ी की आवाज़ बनाकर छोड़ गया लेकिन हमने तुमको देखा ने उसे पहचान को और मजबूत बनाया। गायक शैलेंद्र सिंह की आवाज़ की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उसमें कोई बनावट नहीं है। मोहब्बत को बहुत ऊंची आवाज़ में कहने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी धीमी से कहा हुआ एक गीत भी बरसों तक सुनाई देता है। और हमारे आज के कलाकार भी शैलेंद्र सिंह भी कुछ इसी तरह के कलाकार हैं।

दोस्तों आज हमने बात की शायर हमारे, जी हाँ मैं शायर तो नहीं गीत के, खूबसूरत नायक जिस बहुत सी फिल्मों में उन्होंने नायक का भी काम किया और खूब सारे, और गायकी उनकी इतनी ज़बरदस्त रही कि हमारे आज के जो बर्थडे बॉय हैं शैलेंद्र सिंह, आज हमने उनकी बहुत सी फिल्मों के कुछ कुछ गाने ही सुने। बहुत सारे गाने हैं, कभी और मौका लगा तो ज़रूर आपको सुनाएंगे, लेकिन अब घड़ी हमें इशारा नहीं देती कि, और इजाज़त भी नहीं देती कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो हमसफ़र सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मेरे व्यू 366.3 मीटर। श्रोताओं, दोपहर के 3 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो ब्रज वह सुंदर आए ना अपने आंचल में इतनी कलान को समेटे भई है ना कि जितनी भी बात करो ना उतनी ही कम है।
1: देखो चंपा जी, जब आप उत्सवन की बात कर रहे हो तो या समय तो ब्रज में अच्छो सो जो उत्सव चल रहे हो है, जा में चारों ओर धूम मची रही है, वह है सांझी को उत्सव। और क्वार के महीना में ये जो पितृ पक्ष है या में रंग सांझी, और ये जो चित्र बनाए के जल में सांझी बनाई जाए, फूलन की सांझी है, गोबर की सांझी है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, आप देखो ना सांचो जाते की ब्रज में खाका के में वे खाका बनाए के ना उनमें चौकटा, बेल, कंगूरा, महल, बाग, उपवन, तड़ाग इनको बनायो जा रहे हो और रंगन को प्रयोग करके, यानी कि सांचे के ऊपर भी दूसरो सांचो लगाए के ये जो सांझी की कला है ये उकेरी जा रही है। रंगन को समावेश तो इतनो है के एक सांचे के ऊपर ना दूसरो सांचो छोड़ो जा रहे हो।
1: चंपा जी सीधी बात तो ये है ना कि जो रंग एक बार डर गया वो दोबारा ना डरेगो।
0: हाँ।
1: और ये जो रंग डार के सांझी बन रही है, इतनी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता या समय वृंदावन में ब्रज में चल रही है, तनिक देखो कि प्रत्येक मंदिर में अपनी अपनी सांझी को तरीका से सजाए जा रहे हो है, वहां पर सब समूह में एक दूसरे की सांझी को देख भी जाए कि आज कन्हैया को कैसे लुभाया जा रहे हो है, आज यह मंदिर में काय तरीका की सांझी बनी है।
0: ब्रजराज कृष्ण ने बाल काल में जो लीला करी ना उन लीलान को भी सांझी में उकेरो जा रहे हो है, दर्शायो जा रहे हो है। तो यही के काज है ना जो ये सांझी उत्सव है, पदन के रचनाकार हुए, बाणीकार हुए ना, उनने अनेकानेक पद रच डारे, पद रचना करके ना या सांझी के उत्सव को इतना रसमय बनाए दियो कि उनको जो सस्वर गायन है वो समाज गायन के रूप में हो रहे हो है। नागर या रस रस मगो दो कुसुम सेज के माज, सांझी पूजत पिए मिले परम सलोनी सांझ।
1: तो तनिक देखो चंपा, जो आपने बात कही है यासो ये प्रतीत हुए है कि या में आध्यात्मिक हुए है, या में संगीत हुए है, या में साहित्य जुड़ो भयो है, या में चित्रकला है। और जब आपने ये जो वाणी कारण की बात करी है ना, तो चंपा जी अष्ट छाप के जो हमारे कवि हैं, बल्लभ संप्रदाय से जो जुड़े भाई हमारे रचनाकार हैं, उनने तो अपने पूरे के पूरे मंदिरन में, देवालयन में सांझी उत्सवन को बड़ो सुंदर सुंदर वर्णन करो है अपनी वाणी में। वे लिखे कि चित्र विचित्र बनाए के चुन चुन फूले फूल, सांझी खेल ही दो मिले नव जीवन समतूल। और चंपा जी आप तो जानो हो
0: हाँ,
1: कि
0: हाँ।
1: कि प्रिया प्रियतम की जो माधुर्यमय लीला है ना
0: जी,
1: मूलतः तो सांझी को विषय वही रहे।
0: हाँ।
1: और एक बहुत सुंदर सो पद है, रंग महल की ठोर की पौर पे चित्र चितो चित्रकार, शीश गुजरिया धरी गगरिया है पीड़री को आधार, ऊपर मेघ गरज घन कारे सारंग करे पुकार, रंग भर चित्र विचित्र रचोरी बोल रही हो नार, झलक पलक पल भर जो निरखे निरखे होत निहार, क्वार कृष्ण मावस दिन 15 सांझी को श्रृंगार।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते नृत्य गोपाल जी।
1: जी चंपा जी,
0: देखो ये सांझी को जो सलोनों सा उत्सव है ना, ये चल रहे हो है, और इतनी नैनाभिराम सांझी की जो झांकी है वे जनमन को आकर्षित कर रही हैं। कितने जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, ब्रज धरा की ओर चले आ रहे हैं। तो जो देवालय संस्कृति है ना सांझी की,
1: जी
0: बाकी अलावा सांझी को एक ना लोक रूप भी है। फिर क्यों ना करें कि सांझी को जो लोक रूप है अपने श्रोता भैया बहनान को बाई की ओर लेके चले ना।
1: तो सीधी सीधी क्यों ना करें चंपा जी, आपको याद आ रही है कि आपने भीत पे जो बनाई होगी सांझी,
0: हाँ।
1: सबनी सखी ने मिलके जो सांझी खेली है,
0: जी
1: वाकु कैसे जगायो, कैसे
0: हाँ।
1: भोग लगायो, कहाँ कहाँ करो, या कि ताई आप हमारे श्रोतान को कोई गंभीर चर्चा सुनवा रही हो का?
0: हाँ हाँ नृत्य गोपाल जी।

0: आपने तो हमारो इशारो समझ लियो है।
1: जी हाँ श्रोताओ, आज आपको सुनवा में एक भेंट वार्ता जाको विषय है सांझी का आंचलिक लोक रूप और परंपराएं, और या में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित हैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार, और उनसे बात कर रही हैं चंपा जी।
0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार जी आपको स्वागत है, अभिनंदन है।
2: आपको नमस्कार और सब श्रोताओं को नमस्कार।
0: सिकरवार जी, देखो जो आश्विन मास में ये पितृ पक्ष को उत्सव चले है ना, याद जाते कि क्वार को महीना के में
2: जी,
0: पहले
2: जी,
0: पखवाड़े में, तो हम देखें कि जहाँ कितनी सारी लोक मान्यता है ऐसी है कि कछु नयो ना करें, नयो ना खरीदें, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो उन पर रोक सी लग जावे, पर हम देखें कि ब्रज धरा की वानगी ऐसी है कि या क्वार कनागतन में हूं ना, वहाँ पे उत्सव धर्मिता चलती रही है ना, और जो ब्रज की संस्कृति है ना बाकी महक या सांझी उत्सव में है। तो सिकरवार जी, यही क्रम में सबसे पहले हम आपसे यह बात को जानना चाहेंगे कि जो सांझी को आंचलिक रूप है, जो ग्रामीण रूप है, यानी कि जो लोक की संस्कृति है, बाके बारे में आप हमारे श्रोता भैया बहनान को कछु बताओ।
2: ये एक ऐसी ब्रज की सुंदर कला है और जो एक ऐसी लोक परंपरा है
0: जी,
2: जो चित्रण से जुड़ी हुई है, यानी ब्रज के लोक जीवन में जो बालिकाएं हैं जब पितृ पक्ष में दीवारन पे या सांझी बनावे।
0: सिकरवार जी, जैसे दीवारन पे आपने सांझी बनावे की कह दई, चित्रण की बात कह दई, पर जो लोक रूप है वो तो ऐसा है कि जो गोबर है तो या की तो सहज उपलब्धता है ग्रामीण अंचलन में,
2: बिल्कुल।
0: तो जो गोबर लियो है भैया लेके चार दीवारी बना दी जाए प्रतिपदा तिथि ते, ऐसी लोक मान्यता है। तो देखो कितनो मन भावना उत्सव है ये कि गोबर ते ही,
2: गोबर से ही बनावे, बिल्कुल गोबर से बनावे, और दीवार में हमारी जो बच्ची है बालिका है
0: जी
2: वो बनावे, और वो ऐसा ना है कि एक ही चित्र बनावे, रोजाने 15 दिन तक जो पितृपक्ष हुए अलग अलग अलग बाकी जो भाव अलग अलग आम है,
0: गोबर से ही आकृति उकेरी जा रही है, तो उनमें कोई ऐसी विशेष आकृति लोक की जो आकृति है उनके बारे में हमारे भैया बहनान को बताओ
2: जी। गोबर की जो बनावे हमारी बच्ची और जो महिलाएं
0: बालिका
2: में, बालिका
0: जी,
2: वो देखो बामे गोबर से पर्वत बनावे, पेड़ पौधा बनावे, प्रकृति से जोड़े, गाय बनावे, और अलग अलग जो है चीज ऐसी बनावे जो हमारी लोक संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है।
0: पक्षी में जैसे तोता जरूर बनेगो, मोर बनेगो,
2: साथिया जाए स्वास्थ्य बोले वो बनेगो
0: जी,
2: जाके अलावा और बहुत सारी ऐसी
0: कलाकृति
2: है जो हमारे रोज दिनचर्या में जो हम देखें हमारे जो वो ही सभी चीज बनावे।
0: तो सिकरवार जी, या को मतलब ये हुआ ना कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश है, जो हमारा लोक जीवन है, वहां में ये संस्कार ऐसा है कि बड़ी बूढ़ी बनवाए रही है,
2: हाँ,
0: लाली बेटी आए और बना दे,
2: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: सीधे हाथ के माऊ ई बनेगो, उल्टे हाथ माऊ ये बनेगो, सांझी मैया के और एक और ये बनेगो, ऊपर माऊ ये बनेगो।
2: आज वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं
0: ना,
2: पीढ़ी दर पीढ़ी ये सांझी की कला जो है आगे बढ़ रही है,
0: समृद्ध हो रही है,
2: समृद्ध रह रही है, बच रही है।
0: हाँ, सिकरवार जी खूब चल रही है, दौड़ रही है।
2: हाँ,
0: तो सिकरवार जी हम देखें कि जो ये हमारी सांझी को जो परंपरागत लोक रूप है, तो यहाँ में कोई ऐसी परंपरा है, कोई ऐसे निर्वाह है कि उनको पालन हमें प्रतिदिन संज्ञा को करनो ही करनो है।
2: सांझी की जो आपने बात कही है, संज्ञा को या की आरती हुए और एक जो है या को प्रसाद चढ़ाया जाए, और जई तरीका से ये एक जो है परंपरा हमारे लोक जीवन में पहले से चली आ रही है।
0: हाँ सिकरवार जी, और जो भोग प्रसादी चढ़ाई जाए फिर उस सब में आपस में बटे भी है, तो या को तो मतलब यही हुआ कि जो आपसी तालमेल है, सामाजिक सौहार्द है, और जो एक दूसरे समूह के साथ, एक दूसरे के मोहल्ला पड़ोस के संग जो मेल जोल को भाव है ना, बाको विकास,
2: बहु को विकास हुए
0: है ना?
2: वैसे तो देखो आपने देखे होगा एकल परिवार है तो वहाँ में जो है जब ये सांझी का महोत्सव आवे तो पूरे मोहल्ला की जो हमारी बालिकाएं
0: जी
2: महिलाएं आएंगी, इकट्ठी होंगी, गीत गाएंगी, सांझी के गीत गाएंगी और वो सब बनावे, तो एक सामूहिक जो है सृजनशीलता के हो,
0: हाँ,
2: भाई एक सामूहिक एक सद्भाव की भावना
0: जी
2: पनपे। सांझी की जो आरती वाली बात है रही है
0: जी,
2: तो बामे में आप बताऊं कि जो सांझी माता की पूजा के रूप में गीत गाया जाए,
0: आरती जो हो गए,
2: आरती हो गए, हाँ, जागोरी सांझी माई जागो, भोर भयो भिनसारो, सब सखियन मिल मंगल गायो, जागोरी सांझी माई जागो, ये गीत गायो जाए।
0: सिकरवार जी आपने बड़ी बढ़िया बात बताई है, संज्ञा मैया की जो आरंभिक गीत है, जाकी जाकू की आरतों के में उन्हें जगावे को गीत है, उनको आह्वान को ये गीत है ना, कि तुम आओ, वे आग्रह कर रही है, निवेदन कर रही है।

0: बिल्कुल
1: तो यही
0: बिल्कुल
1: क्रम में देखो शिकरवार जी, जो लोक रूप है सांझी को, तो काऊ दीवारन पे सांझी हाथ ही धर दई जाए के बाके काजे भी जो सांचे हैं उनकी जरूरत पड़े।
0: हाँ, वो ऐसा है कि वो थोड़ा सा समय के साथ साथ कहूँ
1: जी,
0: कहूँ वो हमें सांचो बना ले हैं, लेकिन ज्यादातर है तो वो शुद्ध सांझी तो वो हाथ से बनाई जाए।
1: और ऐसा भी लोक में रूप देखने को मिले है कि सांझी मैया सजानी है, तो सजा के उनको श्रृंगार करनो है, और जब श्रृंगार हो गए हो तो श्रृंगार गीत गानो है, और बामे भी वे सुंदर सुंदर गहने और जो कपड़ा लत्ता है
0: हाँ,
1: उनने लावे
0: उन्हें
1: की,
0: उलाव
1: जो है ना छोटी
0: बिल्कुल।
1: छोटी बालिका।
0: वो जो है, जैसे गोबर को कौदना की एक सांझी बनाई, तो वह ऐसा ना है कि केवल गोबर ही गोबर वहां
1: जी
0: दिखाई दे,
1: जी
0: बाद में जो है फूल, फूलन की पत्ती जाके अलावा औरू कलाकृति, अब जैसे
1: खड़िया
0: गद्दा, खड़िया,
1: घेरू,
0: गेरू,
1: हाँ
0: और बाजार में से औरू कोई ऐसी चिलकनी चीज ले आवे, तो
1: जी
0: वजह
1: जी
0: से वो जो है सुंदर लगे।
1: बागो रूप
0: हाँ,
1: स्वरूप
0: बागो रूप
1: सुंदर
0: से
1: लगे।
0: अब
1: हाँ शिकरवार जी, और देखो एक बहुत अच्छी, हम अपने बचपन में गायो करते गांव में सांझी खेलते समय, जो श्रृंगार की बात हम कर रहे हैं ना, तो हम छोटे से जब यह गीत गाते सांझी माई के काजे, मैं तो गहनो गढ़ाऊंगी, नौलख हार माई तो ये पहराऊंगी,
0: हाँ,
1: पहनोरी
0: बिल्कुल
1: साजी मैया सुंदर कंगना, तुम
0: जी,
1: आवे ते पावन भयो है मेरो अंगना
0: अंगना
1: है।
0: बहुत
1: तो
0: बिल्कुल
1: कितनी
0: सही
1: सुखद
0: कहा,
1: अनुभूति
0: बहुत
1: है
0: सुखद अनुभूति हुए। और
1: हैं।
0: पुरानी बातें जो है हमारी, जो अम्मा दादी सिखाई गई हैं, वो सब नई
1: जी
0: चीज
1: जी
0: नएपन में आई।
1: तो शिकरवार जी देखो, जो ये पारंपरिक शुरुआत है या सांझी की, कादनाते होवे और कितने दिना तक
0: हाँ,
1: चले
0: बहुत अच्छा सवाल करे हो।
1: थी ना।
0: अनंत चौदसी आवे वासे अगले दिना पूर्णमासी है, वासे लगातार 16 दिना तक ताकि सांझी के उत्सव मनाया जाए, ये सांझी पितृ पक्ष में।
1: जी, और ऐसी भी लोग मान्यता है ना शिकरवार जी के, 16 दिना सांझी के हैं, 3 दिना कोट के
0: कोट के
1: हैं,
0: हैं,
1: है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो ये
0: हाँ
1: भी हमारी जो आंचलिक परंपरा है इनमें इन सबको निर्वाह हो रहे
0: निर्वाह
1: हो
0: हो,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, और शिकरवार जी हम सबसे बढ़िया बात ये है सांझी खेलवे में के, आप हमारे श्रोता भैया बहनान को ये बताओ कि सांझी मैया बनाई है, उनको घेनो गूंठे पहना के श्रृंगार करो है, कपड़ा लत्ता पहनाए हैं, पर जो भोग लगावे को जो गीत है उनकी भी तो हमारे ब्रज धरा में बड़ी महती परंपरा है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्रज में भोग लगावे की तो एक अलग ही परंपरा है। और
1: जी
0: आपने देखा होगा जो भी धार्मिक आयोजन हो कोई भी, तो वहाँ भोग लगाया जाए, 56 भोग हो, चाहे कोई दर्शन हो, चाहे कोई
1: कुनवारो
0: कुनवा
1: हो चाहे
0: कुनवा
1: छत्तीस
0: हो।
1: व्यंजन
0: हाँ,
1: है
0: तो वहाँ
1: अभी।
0: पे भोग
1: हाँ
0: को गीत गाया जाए, वहाँ झीमोरी सांझी माई, लाड़ू और पेड़ा,
1: जी
0: मोहन भोग बनायो, कंचन थार परोसो, दूध मलाई की कटोरी भरी है, प्रेम सहित मुख खोलो, माई बेग करो। ये जो है भोग लगावे को गीत गाया जाए।
1: जी शिकरवार जी, आपने तो देखो बिल्कुल ही ब्रज धरा में पहुंचाए दियो है हमारे सब श्रोता भैया बहनान को। देखो आपकी और हमारी बातचीत तो चल रही है, सांझी के मेले इन दिनान ब्रज में चल रहे हैं, तो
0: मेला
1: यही दौरान हम आपसे पूछ वो चाहें कि आपको कोई विशेष पसंद को गीत है वह बातचीत के बीच में आप सुनोगे तो हमें बताए दो।
0: हम आपसे ये चाहेंगे कि कोई मेला को कोई बढ़िया सा गीत सुनाओ।

0: शिखरवार जी है भैया, आप ये मेले को गीत सुन रहे हैं और आपके संग संग हमारे सभी श्रोता भैया बहनान ने सुनो है। तो हमारे ब्रज को जो आंचलिक जीवन है बा में हम ये देखें कि सर्व पितृ अमावस जो आवे है ना, तो
1: हाँ
0: बाकी दिन या सांझी मैया को विसर्जन हो, यानी कि उनको जल प्रवाह
1: जल प्रवाह
0: कर
1: है
0: दियो जाए
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: पूरे 1 साल बाद सांझी मैया फिर लौटेंगी, तो या के समय को भी ब्रज धरा में ना एक बहुत अच्छा सा लोकगीत है।
1: वो जो गीत है जाकी आप चर्चा कर रही हैं वो पितृ अमावस्या को सांझी की विसर्जन पे जल प्रवाह के समय जो विदाई के समय है
0: जी
1: वो गांव में सांझी माई अपने घर को जाती हम सब सखियन के मन अकुलाती अगाऊ बरस तुम बेग आइयो सुख संपत्ति संग अपने लइयो विदा करो री सखी सांझी माई को विदा जी गायो है।
0: देखो कितने सुख
1: हाँ
0: सौभाग्य की और लोक के मंगल की जो कामना
1: हाँ
0: है ना
1: हाँ
0: वो सबके काजे करी गई है। और हम वहीं देखें कि ब्रज संस्कृति को तो अभिन्न अंग सांझी है
1: बिल्कुल
0: ना, पर हम कहीं ना कहीं देखें कि राजस्थान में भी, हरियाणा में भी और मध्य प्रदेश के ना मालवा में भी
1: मालवा में
0: है
1: अलग
0: ना।
1: अलग तरीका से सांझी को रूप
0: हाँ
1: दूसरों बोलो कछु और जाए पर
0: हाँ
1: वो है सांझी।
0: सांझी को ही रूप है,
1: हाँ
0: मतलब नाम कछु और दे देंगे, गीत कछु और तरीका के होंगे, परंपरा में थोड़ी सी भिन्नता होगी, पर ये पितृ पक्ष में वहां पे भी ना जो सांझी है ये मने है।
1: हाँ
0: आपने अभी हमारे श्रोता भैया बहनान को ना एक गीत की पंक्ति बताई ठीक है, तो आप बा में बता रहे हो कि वे विसर्जन कर रही हैं तो मंगल कामना की बात करी गई है, तो हम देखें कि ब्रज लोग को ना अपनी रीति नीति है, बाकी अपनी परंपराएं हैं, अपने सौभाग्य की और सुख समृद्धि की कामना तो है, पर अपने पीहर की यानी कि अपने
1: हाँ
0: मायके
1: बहुत
0: की
1: अच्छी बात
0: है
1: कही
0: ना,
1: है
0: वहां के
1: बिल्कुल
0: काजे
1: बिल्कुल
0: भी कितनी
1: क्योंकि
0: मंगल।
1: सांझी के बारे में जो कहा जाए कि सांझी का जो स्वरूप है वो
0: जी
1: एक ऐसी महिला को है जो अपनी ससुराल से आवे मायके तो
0: जी
1: ससुराल वाले की मंगल कामना तो वो है ही करे जीवन
0: हाँ
1: भर और वो सांग के संग अपने मायके बारे अपने भैया माँ
0: हाँ
1: बाप उनकी मंगल कामना की काजी आवे।
0: देखो सिकरवार जी, कहवे को मतलब ये है कि कोई भी स्त्री हुई, नारी हुई, बाकी का जाए ये बात रे के बाकी दो ही घरों में, बाप घर और आप घर,
1: आप घर
0: तो अपने घर की कामना करी है तो पीहर कैसे पीछे छूट जाएगो।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: यही क्रम में हम देखें कि सांझी मैया थे ना छोटी छोटी बालिका अपने पीहर की मंगल कामना
1: मंगल कामना
0: है
1: करें
0: करते
1: अपने
0: वही
1: भाई
0: कह
1: बहन को
0: में के नौ नवराते देविन के 16 कनागत पितरन के मैं आई तेरे पूजन द्वार पूज पूजन तर काफल होई भैया भतीजे संपत
1: संपत
0: होई,
1: हुई
0: अपनो सुख सौभाग्य तो संग चल रो है, पर जो पीछे छोड़ के हम जाए आए हैं जो हमारो

0: माए को है वो भी सना फलीभूत रहे
1: फले
0: फूले,
1: हाँ,
0: है ना।
1: ये सांझ जी को एक भाव है
0: जी, कोई विशेष ब्रज को गीत की पंक्ति जो आप याद आ रही हो कि भैया ये तो गविंगी गविंगी।
1: मेरी साजी के औरे झोरे फूल रही फुलवारी, तू तो ओढ़ ले रही मैया सोलह गज की साड़ी, जी गाया जाए।
0: हाँ शेखरवार जी, देखो ना कितनी विलक्षण परंपरा है कि साड़ी भी अगर पहनाई है सांझी मैया को तो सोलह गज की साड़ी,
1: सोलह गज की साड़ी
0: है। जो लोक मान्यता है उनमें कितनो लाड लड़ाव कितनी मनोहार है। शेखरवार जी देखो आप, हमने ना सांझी के इतने रूप परंपरान पे बात करी है, तो सांझी है तो हमारी प्राचीन द्वापर कालीन परंपरा, पर चलते चलते हम आपसे पूछें कि कोई ऐसे जागरूकता के भी कार्यक्रम उनको आयोजन अब हो रहे हो कि जाते ही जो सांझी की विरासत है ये आगे भी नए नए आयाम ग्रहण करे।
1: बहुत अच्छा सवाल करे चंपा जी आपने
0: जी।
1: ये सांझी जो परंपरा है ये तो बहुत विरासत से हमारे यहाँ चली आ रही है
0: जी।
1: अब जी जो है आने वाली जो पीढ़ी है और वो जाए संरक्षित रखे संवर्ध हो ये कला जाके काजे काम है रोए
0: जी।
1: एक तो लोगों नो बहुत सारी संस्थानों ये जो है सांझी महोत्सव शुरू करे हुए प्रशासन के द्वारा सांझी महोत्सव को शुरुआत करी गई है
0: जी।
1: जाके एक और है अब कुछ जो है चलन में ऐसा हुआ है
0: जी
1: कि पोर्ट्रेट है ना जो कैनवास
0: हाँ हाँ
1: कैनवास पे वो सांझी काढ़ी जाए जैसे
0: स्थाई
1: स्थाई सांझी है कि जैसे हमारे दफ्तर में
0: हाँ
1: सांझी का ही स्वरूप जो
0: हाँ
1: हम धरती पे काढ़े यानी जो रंगोली के रूप में जैसे
0: जी
1: मान के
0: जी
1: चलो
0: जी हाँ।
1: बाको एक कैनवास के रूप में हूँ आए हुआ है।
0: तो बहुत सुंदर पहल जागरूकता के संग हो रही है, प्रशासन को भी सहयोग से करवार जी देखो मिल रहे हो है। तो शेखरवार जी देखो जो ये सांझी परंपरा को और या लोक कला को आंचलिक स्वरूप है ना, या के बारे में आपने हमारे श्रोता भैया बहनान को इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी, परंपरान की बात बताई, परंपरान के निर्वाह की भी बात बताई, या के काजे आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हम आपसे यही निवेदन करें कि ऐसे ही ब्रज की अनेकानेक विधान पे चर्चा करवे के काजे आप समय समय पे आते रहे करो। नमस्कार,
1: बहुत बहुत धन्यवाद चंपा जी आपने बुलायो। चंपा जी नमस्कार, सब श्रोता भैया को नमस्कार है।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे ये भेंट वार्ता जाको विषय हो सांझी का आंचलिक लोक रूप और परंपराएं, जहाँ मैं विशेषज्ञ के रूप में बात कर रहे चंद्र प्रताप सिंह शेखरवार जी, और उनसे बड़ी अच्छी अच्छी बात करी आपकी चंपा जी ने। चंपा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोक में जो सांझी का रूप है वाकई बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी बात अपने को याद करते हुए आपने हमारे श्रोतान तक पहुंचाई है।
0: नृत्य गोपाल जी देखो जब आपने संकेत ही कर दियो कि आपने बचपन में सांझी खेली है और गोबर से सांझी बनाई है, तो जब लोक रूप की बात चली तो हमारो मन भयो कि अपने श्रोता भैया बहनान को भी ब्रज लोक रूप की ओर ले चलें।
2: तो ऐसी बात तो जो आपको अपनो स्मरण है जाए, अपनो बचपन स्मरण है जाए, या तो हमारे श्रोता अपने बचपन से जुड़ जाए, ऐसी तो बात तो सुनवाते रहे करो आप।
0: हाँ हाँ नृत्य गोपाल जी आपकी बात है तो हम जरूर मानेंगे। तो नृत्य गोपाल जी बात ऐसी है कि देखो लोक रूप है या जो कृष्ण भक्ति साहित्य के अलग अलग संप्रदाय हैं, तो हम देखे हैं कि जब पुष्टि मार्ग को जो संप्रदाय है ना वहाँ पे भी जो सांझी के प्रकार हैं, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ चार तरह की सांझी बनाई जावे, रंग बिरंगे पुष्पंते, केला के पत्तांते, तरह तरह के रंगनते, और जल की सतह पे भी जो रंग होम है ना उनते। तो ये जो ब्रह्म कुंड को सांझी को मेलो है ये तो आज समापन है या मेले को आज संध्या को है, पर हम श्रोता भैया बहनान को बता मैं कि प्यारे भैया बहनाओं के सांझी के दूसरे मेले की भी जो परंपरागत शुरुआत है परसों यानी कि 6 अक्टूबर ते हो रही है और ये मेलो 10 अक्टूबर तक ना चलेगो।
2: स्थान हो तो बता दो
0: ना। बताएंगे तो हमारे भक्त श्रद्धालु हैं, हमारे श्रोता भैया बहनाए वे पहुंचेंगे कैसे हैं? तो प्यारी भैया बहनाओं जो रसखान समाधि स्थल है महावन में, या मेले को 6 से लेकर 10 अक्टूबर तक जो आयोजन है वो हो रहे है, और नृत्य गोपाल जी हम तो आपको बतावे कि हम तो जा रहे हैं और हम तो आपते यो कह में कि आप हमारे संग चलो, और देखो भैया बहनान ते तो हमने बोले ही दी हो कि सब वहाँ पे पधारें और या सांझी के महोत्सव को आनंद लें।
2: जी हाँ चंपा, सब श्रोता आएंगे, पर आएंगे तो तब जब कि आप अब घड़ी की तरफ देखोगे कि अब आज के हमारे ब्रजमाधुरी कार्यक्रम को यही समय संपन्न है रहे हो है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, तो प्यारे भैया बहनाओं इन्हीं प्रेम भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब यही संपन्न हो गए है। मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
2: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जाइवी की अनुमति प्रदान करें। नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब वक्त हुआ है दोपहर के 3:30। आइए अब सुनते हैं बच्चों का कार्यक्रम, बाल कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त विराट मोहन शर्मा बच्चों की दुनिया से। और मेरे साथ हैं,
1: मेरा नाम नबीहा चौधरी है।
2: मेरा नाम मेवान राजपूत है।
3: मेरा नाम कुहक राजपूत है।
4: मेरा नाम प्रियांश है।
5: मैं हूँ सोनल।
6: मेरा नाम समृद्धि है।
0: तो चलिए दोस्तों, आज की मस्ती कहानी ज्ञान और ढेर सारे मजेदार पलों के साथ शुरू करते हैं यह अनोखा सफर जिसका नाम है
7: रेडियो प्लेस।
0: दोस्तों, तुम्हें पता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक और वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है?
1: मैं बताऊं?
0: हाँ हाँ बिल्कुल सोनल,
1: ये 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।
0: अरे वाह सोनल, तुम तो बहुत होशियार हो। दोस्तों, आज हम जानवरों की रंग बिरंगी दुनिया के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
1: अच्छा, और तुम्हें पता है इस बार तो मैं जू भी जा रही हूँ, वहाँ पर और अच्छे अच्छे जानवर देखेंगे और उनके बारे में जानकारियाँ भी प्राप्त करूंगी मैं।
0: क्या बात है, जू जाना तो मेरे को भी बहुत पसंद है। जानवरों की दुनिया बहुत ही रंगीन और विविध है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनके लिए सुरक्षित आवास भी बनाने चाहिए।
1: तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे जीवन में पशुओं का बेहद महत्व है क्योंकि ये पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। इनसे हमें दूध, ऊन और पशु इंसानों की मित्रता तो सदियों से चली आ रही है। हमें इस दुनिया में रहने का अधिकार है, उसी तरह पशुओं को भी तो इस दुनिया में रहने का अधिकार है।
0: दोस्तों, क्या मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछूं?
7: हाँ हाँ पूछो।
0: जानवरों की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो हमें उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, उनको खाना पानी सब देना चाहिए।
0: और कोई बताना चाहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बताओ।
6: और उन्हें मारना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक, और कोई?
1: और हाँ, हमें जानवरों के लिए सुरक्षित आवास बनाने चाहिए
3: और हमें मिल बांट कर रहना चाहिए उनके साथ।
0: हमें जानवरों के बारे में जागरूकता भी फैलानी चाहिए, हमें लोगों को जानवरों के महत्व और उनकी जरूरतों के बारे में बताना चाहिए।
1: तुमने बिल्कुल सही कहा विराट। अच्छा, अब मेरे पास ना एक कविता है पशुओं की रंग बिरंगी दुनिया से।
0: हाँ हाँ बिल्कुल सोनल, हम तो जरूर सुनना चाहेंगे।
1: चलो ठीक है, फिर सुनाती ही हूँ। भगवान ने इंसान बनाया, फिर पशु पक्षी से इस दुनिया को सजाया। क्या खूब चित्रकारी की पशु पक्षी पर, रंगों को आकार दिया जमीन पर। संतुलित किया संसार हमारा भिन्न भिन्न पशु पक्षी द्वारा। पशु पक्षी है मित्र हमारे, बहुत कुछ हमको मिलता उनके द्वारे। दूध से हमको ताकतवर बनाते, ऊन से हमको ठंड से बचाते। इनसे जीवन में है खुशहाली, इनके बगैर ये जीवन है खाली। कुत्ता बिल्ली कौआ गाय संग हमारे नाचे गाए। शेर चीता हाथी बंदर रहते सब जंगल के अंदर। पशु पक्षी की रक्षा करना है हमको, दुनिया की इस सुंदरता को बचाना है सबको। धन्यवाद।
5: अरे वाह सोनल दीदी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: अच्छा, मेरे पास भी एक कविता है, क्या मैं भी सुनाऊं?
1: हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ।
5: प्यारे पशु धरती की शान, इनके बिना है सब वीरान। जंगल पानी धरती आकाश, इनसे ही है जीवन का खास। चिड़िया चहके हाथी चले, शेर की दहाड़ से जंगल जले। हर जीव का है जीवन अधिकार, इनका करें हम सदा सत्कार। प्रकृति की ये अद्भुत रचना, सबसे अनोखी सबसे सच्ची। विश्व पशु दिवस हमें सिखाता, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना। आओ मिलकर संकल्प उठाएं, पशु मित्रों को बचाएं सहलाएं। इनके बिना हम कुछ भी नहीं, इनका संरक्षण है जरूरी यही। धन्यवाद।
1: वाह नबीहा, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई। हमारे और दोस्त इतने शांत क्यों बैठे, आप भी कुछ लाए हो?
0: हाँ हाँ, मेरे को आप लोगों की कविता सुनकर एक शायर याद आ गई, क्या आप लोग सुनना चाहेंगे?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: जंगल की शोभा है जानवर, उनकी रक्षा करना है हमारा धर्म। इनकी दुनिया को बचाना है हमारा काम। पशु पक्षियों की दुनिया है बहुत ही सुंदर, इनकी रक्षा करना है हमारा कर्तव्य अनिवार्य।
1: अरे वाह विराट, तुमने तो कितनी अच्छी शायरी सुनाई है।
0: धन्यवाद। तो दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई, अब टाइम है एक मजेदार सा सॉन्ग सुनने का। तो चलिए सुनते हैं ये सॉन्ग।

वाह, ये गीत तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा दोस्तों, अब हमारे साथ एक और दोस्त जुड़े हैं। चलिए पूछते हैं उनसे उनका नाम और देखते हैं आज वो हमें क्या सुनाने जा रहे हैं। तो आपका नाम क्या?

0: मेवान राजपूत।
1: अच्छा मेवान राजपूत, आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं?
0: आज आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हुआ सवेरा।
1: अच्छा तो सुनाइए।
0: पूरब ने खिड़की को खोला, निकल पड़ा सूरज का गोला, अपने किरणों को फैलाया, अंधकार सब दूर भगाया, हुआ उजाला चारों ओर, नाच रहा है सुंदर मोर, प्यारी चिड़िया गाना गाती, चीची करके हमें उठाती, मोर का वो अलरा कुकड़ू को हुआ सवेरा, अब सोए क्यों, आलस छोड़ो उठ जाओ, काम में अपने लग जाओ, थैंक यू।
1: अरे वाह मेवान, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई।
0: मैं कुछ पहेलियां भी लेकर आई, तो क्या मैं पूछूं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल पूछो मेवान।
0: हिरन बकरी खाता हूँ, जंगल का मैं राजा हूँ, बताओ मैं कौन हूँ?
2: इसका उत्तर मैं दूँ?
0: हाँ।
2: इसका उत्तर शेर है।
0: हाँ विराट भैया सही जवाब।
1: अच्छा अब मैं एक पहेली पूछूं। पीली खाल के अंदर फल, धूप लगे तो जाऊं गल, बिना बीज के फल मैं होता, मुझ में कभी ना कीड़ा होता, तो बताओ इसका उत्तर? बताओ बताओ क्यों चुप हो गए?
2: सोनल क्या तुम एक बार और बोल सकते हो?
1: हाँ हाँ बिल्कुल। पीली खाल के अंदर फल, धूप लगे तो जाऊं गल, बिना बीज के फल मैं होता, मुझ में कभी ना कीड़ा होता, बताओ इसका नाम?
2: इसका उत्तर मैं बताऊं?
1: हाँ हाँ बताओ।
2: केला।
1: कहीं से देख लिया क्या?
2: नहीं नहीं
1: बिल्कुल ठीक। अच्छा चलो एक और पहेली का उत्तर दो। जल और थल पे करे बसेरा, धीमी धीमी चाल, लंबी उम्र खूब है पाई, चमड़ी उसकी ढाल, इसका तो उत्तर पता ही होगा शायद।
2: टॉर्टोइस।
1: अरे वाह विराट, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया, कहाँ से सीख के आए हो ये सब?
2: अच्छा दोस्तों रिडल्स तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कौन इन टंग ट्विस्टर्स को एक बारी में ही 5 बार बोल सकता है। पानी में पकौड़ी, कचौड़ी की चटोरी, इसको पूरे 5 बार बोलना है बिना रुके।
1: मैं बोलूं?
2: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: पानी में कचौड़ी।
2: नहीं नहीं और कोई ट्राई करना चाहेगा? नबीहा क्या तुम ट्राई करना चाहोगी?
3: हाँ विराट भैया। पानी में पकौड़ी, कचौरी की चटोरी, पानी में पकौड़ी, कचौरी की चटोरी, पानी में पकौड़ी, कचौरी की चटोरी, पानी में पकौड़ी, कचौरी की चटोरी, पानी में पकौड़ी, कचौरी की चटोरी।
2: क्या बात है नबीहा, तुमने तो एक बार में ही बोल दिया। अच्छा दोस्तों मेरे पास एक टंग ट्विस्टर और है, जो इसे परफेक्ट 5 बार लगातार बोल देगा तो फिर उसकी पसंद का गाना हम सब सुनेंगे।
1: हाँ हाँ तो फिर बिल्कुल बोलो।
2: चार चोर चार छाते में चार अचार, कौन ट्राई करना चाहेगा पहले?
3: विराट भैया मैं करूँ?
2: हाँ हाँ नबीहा बिल्कुल।
3: चार चोर चार छाते में चार अचार, चार चोर चार छाते में चार अचार, चार चोर चार छाते में चार अचार, चार चोर चार छाते में चार अचार, चार चोर चार छाते में चार अचार।
2: और कुक तुम ट्राई करना चाहोगी?
4: हाँ क्या आप एक बार दोहरा सकते हो?
2: हाँ जी बिल्कुल। चार चोर चार छाते में चार अचार,
4: चार चोर चार छाते में चार अचार, चार चोर चार छाते में चार अचार, चार चोर चार छाते में चार अचार, चार चोर चार छाते में चार अचार, चार चोर चार छाते में चार अचार।
1: मैं ट्राई करूँ एक बार?
2: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: चार चोर चार छाते में चार अचार, चार चोर चार छाते में चार अचार, चार चोर चार छाते में चार अचार, चार चोर चार छाते में चार अचार, चार चोर चार छाते में चार अचार। अरे वाह हम सब ने तो बड़े अच्छे टंग ट्विस्टर बोले, तो चलिए सुनते हैं सुंदर सा गीत।

0: बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर गीत था।
2: अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, आरव तुम इतनी लेट कैसे हो गए? प्रोग्राम तो कब का स्टार्ट हो गया था?
3: अरे वो मैं ना बारिश के मौसम में इतना मगन हो गया था कि मैं भूल गया था आज प्रोग्राम भी है मेरा। वैसे थैंक यू मुझे पूछने के लिए।
2: इसमें कोई दिक्कत नहीं है आरव। चलो कुछ नहीं होता, तुम लेट तो हो गए लेकिन क्या लेके आए हो जरा ये तो बताओ।
3: भाई मेरे ज्ञान के पिटारे में तो सब कुछ है, तुम क्या सुनना चाहोगे?
2: क्या तुम कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में बता सकते हो?
3: वाइल्ड लाइफ, रुको सोचने दो। हाँ मैं बता सकता हूँ।
1: तो बताओ फिर।
3: दोस्तों जैसे कि तुम लोग जानते हो कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और इसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग हर साल वाइल्ड लाइफ सप्ताह मनाते हैं जो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है।
2: जानवरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें उनकी जरूरतों को समझना चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। जानवरों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए सुरक्षित आवास बनाना हमारा ही तो कर्तव्य है।
3: और क्या, बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा कोई मेरे को बता सकता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है?
4: भैया मैं बताऊं?
3: हाँ हाँ जरूर बताओ।
4: टाइगर।
3: अरे वाह, देख रहे हो दोस्तों, इन नन्हे मुन्ने हमारे दोस्तों में भी कितना दिमाग है, और एक तुम लोगो।
1: वैसे आंसर तो इसका मुझे भी पता था, मैंने सोचा चलो समृद्धि को ही चांस दे दूं बोलने की।
3: अच्छा चलो फिर तुम्हें मौका देते हैं, राष्ट्रीय पक्षी कौन है?
1: अरे ये तो कितना आसान सा सवाल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
3: ठीक है अभी के लिए तो तुम्हें छोड़ देता हूँ।
1: और दोस्तों तुम्हें पता है पशुओं के बारे में और जागरूकता फैलाने के लिए भी विश्व पशु दिवस भी मनाया जाता है।
3: हाँ दोस्तों, वैसे मैंने आजकल नोटिस किया कि बहुत टाइम से स्पैरो जैसी बर्ड तो दिख ही नहीं रही है।
5: हाँ हाँ भैया, हमें भी नहीं दिखती स्पैरो।
1: मुझे भी। और दोस्तों इन पशु पक्षियों के बारे में तो हमें स्कूल में भी जानकारियाँ मिलती है, हमारे शिक्षक इन सभी पशु पक्षियों के बारे में भी बताते हैं हमें, इसीलिए हमें अपने गुरुओं को धन्यवाद बोलना चाहिए क्योंकि वो हमें शिक्षित करते हैं, हमें सभ्य मानव बनाते हैं।
3: सही कहा तुमने सोनल।
2: गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शिक्षक वो दीपक है जो जलता खुद है और सबको रोशनी भी देता है, सच्चा मार्ग दिखलाता है। इस श्लोक के जरिए मैं अपने सभी गुरुजनों को हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे कहना चाहता हूँ। आज के दिन हम अपने टीचर्स को धन्यवाद देते हैं, हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हमें सही रास्ता दिखलाते हैं और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं।
1: तुमने बिल्कुल सही कहा, हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के शिक्षकों को योगदान को सम्मानित करने और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों की कड़ी मेहनत और समर्पण को स्वीकार करने का एक तरीका है, तभी तो कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन में कोई मान नहीं, और गुरु वह दीपक है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है।
2: यह दिन शिक्षकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए।

0: एक अवसर भी प्रदान करता है। कुहू, बातें तो बहुत हो गई वर्ल्ड टीचर्स डे पे, क्या तुम हमें कोई कविता सुनाना चाहोगी?
1: हाँ, सर को कैसे याद पहाड़े, सर को कैसे याद गणित, सोचती हूँ मैं। सर को पूरी याद भूगोल, कैसे पता है कि पृथ्वी है गोल। मोटी किताबें वे पढ़ जाते, हम तो थोड़े में थक जाते। तभी माँ ने ये उलझन को सुलझाया, शिक्षा का महत्व मुझे बताया। बोली, बेटा पढ़ लिख कर सब हुआ यह कमाल, यूं ही सीखे सभी सवाल। सचमुच के जादूगर हैं, इसलिए तो वो सर हैं। धन्यवाद।
2: अरे वाह कुहुक, तुमने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। अच्छा कुहुक को देखकर ना मेरे को भी एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है, तो क्या मैं एक कहानी सुनाऊं?
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
2: जैसे कि हम सबको पता है कि गुरु दक्षिणा की प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। शिष्य को शिक्षा लेने के बाद गुरु को कुछ ना कुछ भेंट अवश्य ही देनी पड़ती है। ऐसे ही एक घटना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ घटी। स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा में प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद जी की पाठशाला में उनके चरणों में बैठकर चारों वेदों, अन्य धर्म शास्त्रों तथा व्याकरण का गहन अध्ययन पूरा करने के बाद पशुपेश में पड़ गए कि पूज्य गुरुदेव को दक्षिणा के रूप में क्या वस्तु भेंट की जाए। अंत में उन्होंने एक तश्तरी में लौंग रखी तथा उन्हें गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। स्वामी विरजानंद की आकांक्षा थी कि उनका यह असाधारण प्रतिभा का धनी शिष्य वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर उनकी पाठशाला का नाम रोशन करे। उन्होंने कहा, वत्स दयानंद, मैं अपने दक्षिणा में कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहता। मेरी आकांक्षा है कि तुम वैदिक ज्ञान के सूर्य को प्रकाशित कर लोगों के अंधविश्वास का तथा जड़ता का उन्मूलन करो। तुम्हारी यह अमूल्य दक्षिणा ही मुझे सच्चा गौरव व संतोष प्रदान करेगी। स्वामी दयानंद जी ने गुरु विरजानंद जी के श्री चरणों में प्रणाम कर कहा, आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, मेरा संपूर्ण जीवन वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए ही समर्पित होगा। धन्यवाद।
3: अच्छा दोस्तों, सब कहानी कविता सुना रहे तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा है सुनाने का।
2: हाँ हाँ तो सुनाओ ना आरव।
3: ठीक है, ये कविता कुछ इस प्रकार है। विद्या देते दान गुरु जी, हर लेते अज्ञान गुरु जी, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से, हमको देते ज्ञान गुरुजी, जोड़ घटाना गुना बताते, प्रश्न गणित का हल करवाते, हर गलती को ठीक करते, पकड़ हमारे कान गुरुजी, धरती का भूगोल बताते, इतिहासों की कथा सुनाते, क्या कब क्यों कैसे होता है समझाते विज्ञान गुरुजी, खेल खिलाते गीत गवाते, कभी पढ़ाते कभी सिखाते, अच्छे और बुरे की हमको करवाते पहचान गुरुजी। धन्यवाद।
2: अरे वाह आरव, तुमने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई।
0: अच्छा दोस्तों, सबने कविता और कहानी तो सुना ही दी। नबीहा, तुम क्यों रह गई? क्या तुम भी कुछ सुनाना चाहोगी?
4: हाँ भैया, मैं भी एक कविता लाई हूँ, क्या मैं सुनाऊँ?
0: हाँ हाँ बिल्कुल
4: बिल्कुल। आप देते हो हमको शिक्षा, फिर लेते हो हमारी परीक्षा, गलती करे तो हमें समझाते, हम रोए तो हमें हंसाते, माता ने दिया है जीवन दान, आप बनाते हो इसे महान, ज्ञान का दीप आप जलाकर हमारी चमक बढ़ाते हो, विद्या का जल हमें पिलाकर जीने का ढंग हमें सिखाते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ, जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का करो सम्मान, शीश झुकाकर आदर से तुम बच्चों उन्हें करो प्रणाम।
2: अरे वाह नबीहा, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई।
0: अच्छा दोस्तों, सब कविता और कहानी सुना ही रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं? दोस्तों क्या तुम एक और कविता सुनना चाहोगे?
2: चलो सुना ही दो विराट, तुम भी।
0: गुरु की महिमा अपरंपार, ज्ञान की गंगा बहाते प्यार, जीवन के पथ पर चलने का मार्ग दिखलाते, सच्चाई और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देते, गुरु की शिक्षा से ही हम जीवन के मायने समझते हैं, सफलता के शिखर पर पहुंचने का हमें मार्ग दिखाते हैं।
3: अच्छा अब सबने अपनी कविता कहानियां सुना दी, लेकिन मैंने भी अपनी सुनाई दी है। अब दोस्तों हमारे जाने का समय हो ही गया है, और इसी तरह अगर आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं या आप भी कोई अपने बढ़िया बढ़िया चटपटे आइडिया देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी जीमेल आईडी fmgradiokids@gmail.com पर।
5: बाय बाय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 4 बजने वाले हैं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम स्वांग, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे किस्सा अजीत सिंह राजपाल। कलाकार हैं कर्मपाल शर्मा, मंजू शर्मा और साथी। आइए सुनते हैं

都德里广播电台现在播送一篇喜马扎尔邦的民间故事。

0: 印度队里广播电台，这是普通话节目，播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: Khel Khiladi.
2: Khelon ka aina.
3: नमस्कार श्रोताओं, वक्त हो चला है आपके खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कपिल और मेरे साथ हैं,
4: मैं हूं आपका दोस्त अतुल।
3: आज हम बात करेंगे एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स खत्म हो गए हैं, भारत का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में, इसमें हम कवर करेंगे ईरानी कप, और साथ ही साथ आपका होगा फिटनेस का संडे यानी संडे ऑन साइकिल। तो शुरुआत

0: करते हैं अतुल, कैसा है भारत का एशियन गेम्स का प्रदर्शन?
1: जी हाँ अभिषेक, बात करें तो बहुत सारे खेलों में एक नई उम्मीदें जगी हैं। युवा जोश जो है उसने दिखाया है कि अब हम खेलों में कहीं भी पीछे नहीं हैं। अगर बात करी जाए तो टॉप 4 में रहना शायद ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, और आगे जो ओलंपिक गेम्स आ रहे हैं तो वहाँ के लिए एक अच्छा संकेत है अभिषेक। कुछ गेम्स में जरूर, बैडमिंटन या टेनिस में वहाँ पर भी कुछ अच्छा किया जा सकता था, लेकिन उम्मीदें जगी हैं।
0: तो श्रोताओं, अब सुनते हैं एशियन गेम्स पर ये एक विशेष रिपोर्ट।
1: जापान के आइची नागोया में पिछले 2 सप्ताह से चल रहा एशिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ अब खत्म हो चुका है। 19 सितंबर से शुरू हुए 20वें एशियाई खेल आज नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में हुए समापन समारोह के साथ औपचारिक रूप से संपन्न हुए। आइची नागोया एशियाई खेल जापान में आयोजित होने वाले तीसरे एशियाई खेल थे। इससे पहले जापान 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। इस बार प्रतियोगिताएं जापान के कई शहरों में आयोजित हुई, जबकि तैराकी के मुकाबले टोक्यो में और फुटबॉल के मुकाबले ओसाका सहित दूसरे स्थानों पर खेले गए। करीब 11,000 खिलाड़ियों ने 43 खेलों की 71 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। कुल 469 स्वर्ण पदक स्पर्धाएं रखी गई। इस संस्करण में कुछ नए खेल भी एशियाई खेलों के कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिनमें पैडल, सर्फिंग, मिश्रित मार्शल आर्ट्स, वर्चुअल ताइक्वांडो, फ्री स्टाइल बीएमएक्स और टेकबॉल प्रमुख रहे।
0: अगर आइची नागोया खेलों की पूरी तस्वीर देखें तो एक बार फिर सबसे ऊपर वही नाम दिखाई देता है, चीन। पदक तालिका में चीन 169 स्वर्ण, 89 रजत और 83 कांस्य के साथ कुल 341 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। चीन ने 1982 के बाद से हर एशियाई खेल में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस बार भी उसके प्रदर्शन और बाकी देशों के बीच अंतर साफ दिखाई दिया। मेजबान जापान 83 स्वर्ण, 95 रजत और 91 कांस्य, कुल 269 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। जापान के लिए ये प्रदर्शन घरेलू दर्शकों के सामने खास महत्व रखता है। दक्षिण कोरिया 39 स्वर्ण, 43 रजत और 68 कांस्य सहित 150 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसमें भारत और उज्बेकिस्तान की जोरदार टक्कर देखने को मिली। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया, जबकि उज्बेकिस्तान 21 स्वर्ण, 25 रजत और 24 कांस्य के साथ पांचवें स्थान पर रहा। शीर्ष 10 में ईरान 19 स्वर्ण के साथ छठे, थाईलैंड 18 स्वर्ण के साथ सातवें, कजाकिस्तान 12 स्वर्ण के साथ आठवें, हांगकांग 11 स्वर्ण के साथ नौवें और बहरीन 11 स्वर्ण पदक के साथ 10वें स्थान पर रहा।
1: और अभिषेक, अगर इन एशियाई खेलों की बात करें तो आइची नागोया में सिर्फ पदकों की ही बारिश नहीं हुई बल्कि रिकॉर्ड भी बड़ी संख्या में बने। एथलेटिक्स में थाईलैंड के युवा धावक पोरिपोल बोनसन ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 9.90 सेकंड का नया एशियाई खेल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने उसी शाम सेमीफाइनल में भी रिकॉर्ड तोड़ा और फिर फाइनल में उसे और बेहतर कर दिया। तैराकी में जापान के 17 वर्षीय शिन ओहाशी ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में रिकॉर्ड बनाया। ये प्रदर्शन घरेलू दर्शकों के सामने जापानी खेलों के लिए यादगार क्षणों में शामिल रहा। और कई खेलों में नई पीढ़ी के खिलाड़ियों ने यह संकेत दिया है कि एशियाई खेलों का अगला दशक पुराने चैंपियनों के साथ साथ नए सितारों का भी होगा। कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियों की बात करें तो इन खेलों की एक बड़ी विशेषता यह रही कि कई देशों ने पहली बार ये लंबे अंतराल के बाद ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। हांगकांग के कोलमैन बोंग ने पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा और 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए सीधे स्थान का अधिकार हासिल किया। मेजबान जापान ने नए खेल पैडल में पहला एशियाई खेल स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फुटबॉल में दक्षिण कोरिया ने जापान को हराकर लगातार चौथी बार पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता। और क्रिकेट में भारत तथा पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता ने एक बार फिर एशियाई खेलों में दर्शकों का ध्यान खींचा।
0: भारत के लिए आइची नागोया अभियान एक दिलचस्प उतार चढ़ाव वाली कहानी रहा। शुरुआती दिनों में भारतीय दल उस रफ्तार से पदक नहीं जीत पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन प्रतियोगिता के अंतिम चरण में भारत ने जबरदस्त वापसी की। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट और अन्य खेलों में लगातार पदक आने लगे और भारत देखते ही देखते शीर्ष 10 से निकलकर चौथे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने अपना अभियान 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य कुल 85 पदकों के साथ समाप्त किया। ये संख्या हांगझोऊ में जीते गए भारत के रिकॉर्ड 107 पदकों से कम है, लेकिन फिर भी ये

0: एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का दूसरा सबसे बड़ा कुल पदक प्रदर्शन है। भारत के 21 स्वर्ण पदक क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, तीरंदाजी, शूटिंग, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कुश्ती और गोल्फ में आए।
1: अगर बात करें क्रिकेट की तो क्रिकेट में भारत ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। महिला टीम के स्वर्ण जीतने के बाद पुरुष टीम ने भी पाकिस्तान को फाइनल में 19 रन से हराकर खिताब बरकरार रखा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 211 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर 61 रन और तिलक वर्मा ने नाबाद 51 रन बनाकर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान 192 रन तक ही पहुंच सका। इस तरह भारत ने हांगझोउ की तरह आईची नागोया में भी पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट स्वर्ण अपने नाम किए। हॉकी में भी अगर बात करें तो हॉकी भारत की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में शामिल रही। महिला टीम ने चीन को 1-0 से हराकर 44 साल बाद एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता। 1982 के दिल्ली एशियाई खेलों के बाद यह पहली बार था जब भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई चैंपियन बनी। फाइनल में लाल रेम स्यामी ने 10वें मिनट में निर्णायक गोल किया, जबकि गोलकीपर सविता ने दबाव के बावजूद महत्वपूर्ण बचाव कर भारत की बढ़त कायम रखी। इस स्वर्ण के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी किया। इसके एक दिन बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर अपना एशियाई खेल खिताब बरकरार रखा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि जुगराज सिंह, हार्दिक सिंह और शिलानंद लाकड़ा ने भी 1-1 गोल किया। ये भारत का पुरुष हॉकी में 5वां एशियाई खेल स्वर्ण पदक था और इस जीत ने पुरुष टीम को भी लॉस एंजल्स 2028 का सीधा टिकट दिलाया।
0: भारत के लिए सबसे प्रभावशाली खेलों में से एक रहा तीरंदाजी। भारतीय तीरंदाजों ने कुल 9 पदक जीते और इनमें 5 स्वर्ण शामिल रहे। महिला कंपाउंड टीम, मिश्रित कंपाउंड टीम और पुरुष कंपाउंड टीम ने स्वर्ण जीते, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही रिकर्व तीरंदाजी की। अंकिता भक्त, कुमकुम मोहोद और कीर्ति शर्मा की महिला रिकर्व टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार भारत को एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम का स्वर्ण दिलाया। इसके बाद 17 वर्षीय कुमकुम मोहोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व में दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन को शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण जीता। कुमकुम इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली भारत की सबसे चमकदार युवा खिलाड़ियों में शामिल रही। महिला रिकर्व व्यक्तिगत में उनका स्वर्ण भारत के लिए ऐतिहासिक था। शूटिंग में भारत ने कुल 15 पदक जीते। नीरू ढांडा का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। उन्होंने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर स्पर्धा में भारत का पहला व्यक्तित्व एशियाई खेल स्वर्ण हासिल किया। भारत ने मिश्रित ट्रैप में भी स्वर्ण जीता, जहां नीरू ढांडा और कायनान चिन्नी की जोड़ी ने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया।
1: बात करें अगर भारतीय मुक्केबाजों की तो मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश अपने अपने वर्ग में एशियाई चैंपियन बने। लवलीना की उपलब्धि खास रही, वह मैरी कॉम के बाद एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी का स्वर्ण जीतने वाली भारत की केवल दूसरी महिला बनी। वहीं परवीन और अंकुश ने भी देश को स्वर्णिम सफलता दिलाई। और कुश्ती में भी युवा शक्ति सामने आई। कुश्ती में अमन सहरावत और सुजीत ने स्वर्ण पदक जीते। अमन ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण जीतकर एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय कुश्ती में नई पीढ़ी तैयार है। नितेश शिवाच, दीपक पुनिया और अन्य भारतीय पहलवानों ने भी पदक जीतकर भारत की कुल कुश्ती पदक संख्या को मजबूत किया। भारत ने कुश्ती में 2 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक हासिल किए। गोल्फ से भी अच्छी खबर आई। गोल्फ में प्रणवी उर्स ने इतिहास रचा। उन्होंने महिला व्यक्तिगत गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई खेलों में भारत को इस स्पर्धा का पहला स्वर्ण दिलाया। भारत की महिला टीम ने भी रजत पदक जीता। प्रणवी का स्वर्ण भारत के लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि व्यक्तिगत गोल्फ में देश को पिछला एशियाई खेल स्वर्ण 2002 में मिला था।
0: अगर कुल पदकों की बात करें तो एथलेटिक्स भारत का सबसे बड़ा पदक योगदान देने वाला खेल रहा, जिसमें भारत ने 24 पदक जीते। महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने स्वर्ण जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर और 1500 मीटर में रजत पदक हासिल किए और 5,000 मीटर में कांस्य जीतकर 3 पदकों के साथ शानदार अभियान पूरा किया। सावन बरवाल ने मैराथन में रजत, अंशी सोजन ने लंबी कूद में रजत और तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉट पुट में रजत जीता। पुरुष और महिला रिले टीमों तथा कई अन्य भारतीय एथलीटों ने भी पदक तालिका में योगदान दिया। आईची नागोया से भारत को कई ऐसे नाम मिले जिन पर अब देश की नजर रहेगी। 17 वर्षीय कुमकुम मोहोद उनमें सबसे आगे है। तीरंदाजी में चिकिता तनिपर्थी और साहिल जाधव ने भी स्वर्ण पदक जीतकर अपनी क्षमता दिखाई। शूटिंग में नीरू धांडा का नाम अब भारतीय खेलों में एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। कुश्ती में अमन सहरावत और सुजीत ने नई पीढ़ी की उम्मीदों को मजबूत किया।

0: मुक्केबाजी में अंकुश और प्रवीण हुड्डा ने स्वर्ण जीतकर अपने भविष्य की ओर संकेत दिया और गोल्फ में प्रणवी उर्स ने एक ऐसा अध्याय खोला है जिसका प्रभाव आने वाले कई वर्षों में दिखाई दे सकता है।
1: आईची नगोया एशियाई खेल केवल पदकों तक सीमित नहीं रहे, कई खेलों में यहाँ मिली सफलता ने लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक का भी रास्ता साफ किया। भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने सीधे ओलंपिक स्थान हासिल किए। तीरंदाजी, शूटिंग, गोल्फ, कुश्ती, मुक्केबाजी और अन्य खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अगले ओलंपिक चक्र के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है। बात करें एशियाई खेलों की तो अगला पड़ाव अब दोहा और रियाद जाएगा। 20वें एशियाई खेलों के बाद 21वें एशियाई खेल 2030 में दोहा कतर में होंगे। दोहा इससे पहले 2006 में भी एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। इसके बाद 2034 के एशियाई खेल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होंगे। ये सऊदी अरब में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन होगा।
0: आईची नागोया एशियाई खेलों ने एक बार फिर साबित किया है कि एशिया का खेल परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। चीन का दबदबा बरकरार है, जापान ने घरेलू मैदान पर अपना सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया, दक्षिण कोरिया ने तीसरा स्थान बनाए रखा और भारत ने अंतिम दिनों शानदार वापसी के साथ चौथा स्थान हासिल किया। भारत के लिए इन खेलों की सबसे बड़ी सीख केवल 85 पदक नहीं है, असली उपलब्धि है नई पीढ़ी का उभरना, महिलाओं का मजबूत प्रदर्शन, टीम खेलों में दोहरी सफलता और लॉस एंजल्स ओलंपिक की ओर बढ़ते कदम। कुमकुम मोहात की तीरंदाजी, नीरू धांडा का ऐतिहासिक स्वर्ण, प्रणवी उर्स की गोल्फ सफलता, अमन सहरावत की कुश्ती, मुक्केबाजों की कामयाबी और हॉकी और क्रिकेट की दोहरी स्वर्णिम कहानी, ये सभी क्षण भारतीय खेलों के भविष्य की तस्वीर पेश करते हैं। और जब आज नागोया में एशियाई खेलों का ध्वज उतरा तो आईची नागोया 2026 सिर्फ पदक तालिका में दर्ज एक और अध्याय नहीं होगा, बल्कि एशियाई के खेल इतिहास में नई प्रतिभाओं, नए रिकॉर्डों और नई उम्मीदों के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा।
2: National flag as they walk out into the arena, the Indian contingent. But let's talk about the Indian contingent. There was fantastic performances in boxing. 3 gold medals in boxing at this edition of the Asian Games.
3: Yeah, carrying forward their form from the Commonwealth Games. Lovlina, Ankush, Parveen Huda are 3 gold medal winners, not to mention 3 bronze medals as well.
0: Sunday, yani fitness ka din. Aur is Sunday on Psyche ki vishesh report ke saath पेश है हमारे साथी अभिनव की ये रिपोर्ट।

केवल मंजिल पर पहुंचकर रुक जाना जीत नहीं, बल्कि अपनी जीत से दूसरों को आगे बढ़ने की राह दिखाना ही असली कामयाबी है। एशियन गेम्स के पोडियम पर तिरंगा ऊंचा करने वाले खिलाड़ी आज उसी जज्बे के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरे, जहां मेडल की चमक के साथ फिटनेस का संदेश भी गूंजा। सुबह की ताजगी, साइकिल के पहिए और देश के पदक विजेताओं का जोश, इन सब ने मिलकर संडेज ऑन साइकिल को सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक स्वस्थ और सक्रिय भारत की ओर बढ़ता कदम बना दिया। आज सुबह यानी 4 अक्टूबर को खेल, फिटनेस और स्वच्छता का संदेश एक साथ देखने को मिला। संडेज ऑन साइकिल के 93वें संस्करण का आयोजन स्वच्छ भारत अभियान और राहगीरी डे के साथ मिलकर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों और फिटनेस प्रेमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एशियन गेम्स 2026 में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने आम लोगों के साथ साइकिलिंग और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेकर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत

0: और अगली जो हमारे पास फरमाइश आई है ये आई है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ सिटी बलागा से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, मतलब कितनी कमाल की बात है सुनील भाई, कहां से हमारे पास फरमाइश आ रही है और रेडियो से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल अच्छी बात है हमारे कार्यक्रम के लिए हेमंत भाई। और अगली जो फरमाइश है मेरे लिए, छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश शाहू, जितेंद्र शाहू और पायल शाहू की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास खैल बाजार पानीपत से आई नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू की।
0: नतरंगी से एक फरमाइश हमारे पास आई है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं साले भाटा छत्तीसगढ़ से, जीतू ध्रुव केवल किरण और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे पास फरमाइश आ रही है तिलक राज अरोड़ा की और प्रकाश अरोड़ा जी की, जो सुनना चाहते हैं नरदेव बेनीवाल को।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से और इसको भेजने वाले हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय।
0: गांव ढाड़ी से फरमाइश आई है हमारे पास लाल खान नोहर से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, उसको भेजने वाले ताज मोहम्मद अंसारी और उनका समस्त।

0: अगली फरमाइश हमारे पास भूला कॉलोनी घरोड़ा जिला करनाल हरियाणा से आई है। विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन साहिल और बाणी जयजान की सुनना चाहते हैं नरदेव बेनीवाल को।
1: ये फरमाइश हमें मिली है कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवांशहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनिता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: ये फरमाइश हिमाचल प्रदेश की वादियों से बिलासपुर से ये फरमाइश आई है सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर, गौरव ग्रोवर, श्रिया ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं नरदेव बेनीवाल से ये रागनी, और किस्सा रहेगा पिंगला भरथरी का किस, और ये उसके मौके की रागनी है जब राजा भरथरी अपनी पत्नी पिंगला के मुंह में डूबे हुए थे। वह हर समय रानी के ख्यालों में खोए रहते थे। जब उन्हें संसार की वैराग्यता का पता चलता है तब सब कुछ त्याग कर जोगी बनने की राह पर जाने का मन बनाते हैं। और इस रागनी में राजा भर्तरी को समझाया जा रहा है कि वह स्वयं आत्म मंथन करें कि किसने देखा स्वर्ग आपा मारे बिना, जिसका अर्थ है कि खुद को मारे बिना, खुद तपस्या कष्ट सहे बिना व्यक्ति स्वर्ग को नहीं पा सकता। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: तो सुनील भाई, अभी सुना हमने नरेंद्र बेनीवाल को, बोलते किसने देखा स्वर्ग आपे मारे बिना। और अब जो हमारे पास फरमाइश आई है वो कलाकार हैं केशव और बबीता, और उनके लिए जो फरमाइश सबसे पहले हमारे पास सुनील भाई आई है, ये फरमाइश आई है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, और ये भेज रहे हैं पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। वहीं अगली फरमाइश हमारे पास आई है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और उनके परिवार के सदस्यों की। वहीं अगली फरमाइश जो हमें मिली है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, बिलिस डिकेस्टो और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की। और इसी क्रम में अगली फरमाइश आइए हमारे पास संबलपुर कांकेर भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों की।
1: केशव और बबीता को ही सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतौड़, शुभम, यश कुमार और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: साथ ही अपनी फरमाइश मिली है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और उनके समस्त परिवार की तरफ से, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी और उनके समस्त परिवार की तरफ से, और सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और समस्त परिवार की तरफ से।
0: केशव कुमार और बबीता को ही सुनना चाहते हैं गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी, वंश और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुण वर्मा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति वर्मा और समस्त परिवार की तरफ।
0: अगली फरमाइश गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और हेमंत भाई, देखिए फरमाइश हमें काफी और भी मिली है जो हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे। तो 7:05 पर आप कार्यक्रम कृषि जगत भी सुनते रहिए। और अभी भाइयों की पसंद पर सुनते हैं केशव और बबीता से रागनी किस्सा रहेगा रामायण का। और ये उस मौके की रागनी है जब दासी मंत्रा के भड़काने पर रानी कैकेयी अपनी मांगों को लेकर राजा दशरथ से मनवाने के लिए खाना पीना त्याग कर कोप भवन में लेट जाती है। तब राजा दशरथ वहां आते हैं और कैकेयी से कोप भवन में लेटने हुए उसकी नाराजगी का कारण पूछते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो संवाद होता है इस रागनी में दर्शाया गया है। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी केसव और बबीता से, और किस्सा था रामायण का। और केसव और बबीता की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का दृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे

0: तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को, पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम
0: हेमंत भाई कार्यक्रम
1: जी।
0: लेकर हाजिर हैं। देखिए, किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं और चलाई जाती रही
1: जी
0: हैं। सरकार के साथ साथ अनेक सहकारी संस्थाएं भी किसानों की मदद के लिए कार्य कर रही हैं। इन्हीं में से एक है भारतीय बीज सहकारी समिति। यह समिति देश के कोने कोने से मौजूद सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को असली व प्रमाणित बीज उचित दरों पर उपलब्ध कराती है। और इतना ही नहीं हेमंत भाई, साथ ही ये बीज उत्पादन में जुड़े किसानों को आधुनिक तौर तरीके सिखाने के लिए प्रशिक्षण भी देती है। पिछले दिनों इस समिति की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया
1: जी
0: गया, तो आइए सुनते हैं इसी पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट।
2: विगत दिनांक 29 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के इफको सदन में भारतीय बीज सहकारी समिति द्वारा 4वीं सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय

0: बीज सहकारी समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार, समिति के प्रबंधन निदेशक चेतन जोशी, इफको के प्रबंध निदेशक जेके पटेल और भारतीय बीज सहकारी समिति के निदेशक मंडल के सभी सदस्य और पूरे देश से आए सहकार बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। सबसे पहले भारतीय बीज सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक चेतन जोशी ने सभी का स्वागत करते हुए समिति की अब तक की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा।
1: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निदेशक मंडल के सदस्यगण जो कि आभासी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माननीय श्री मोहन भाई कुंडारिया जी, इफको के प्रबंध निदेशक श्री केजे पटेल जी, श्री राम इकबाल जी, केओएफ के वाइस चेयरमैन और एनसीडीसी से नामित डायरेक्टर, और सामने बैठे हुए सभी माननीय सहकारी समितियों के ऑफिशियल्स और जो बीबीएसएसएल के सदस्य भी हैं, आप सभी का भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की चौथी वार्षिक आम सभा में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन विशेष महत्व हमारे लिए रखता है क्योंकि एक औपचारिक बैठक के अलावा ये पिछले वर्ष के कार्यों का आत्ममूल्यांकन, उपलब्धियों की समीक्षा, कमियों से सीखने और आने वाले वर्ष के लिए स्पष्ट कार्य योजना निर्धारित करने का अवसर है। बीबीएसएसएल की जो यात्रा रही है वो एक विचार से एक कार्यशील संस्था तक की रही है। अगर आप पिछले 3 साल का हमारा सफर, हमारी जर्नी देखेंगे, हमारी स्थापना 25 जनवरी 2023 को सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा हुई थी और देश की कुछ प्रमुख संस्थाएं इफको, क्रिप्को, नेफेड, एनसीडीसी और एनडीडीबी जैसी संस्थाओं ने इसको स्थापित होने में, इसकी नींव डालने में सहयोग प्रदान किया, पूंजी निवेश किया। इन सभी सहकारी संस्थाओं के सहयोग से स्थापित बीबीएसएसएल का उद्देश्य देश के बीज क्षेत्र में सहकारिता की शक्ति को स्थापित करना और किसानों को बीज मूल्य श्रृंखला से जोड़ना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हमारी यात्रा का तीसरा वर्ष था और अगर व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो दूसरा पूर्ण व्यावसायिक वर्ष था। इन प्रारंभिक वर्षों में हमारा प्रमुख प्रयास यही रहा है कि संस्थान की नींव मजबूत हो, सदस्यता का विस्तार हो, सीड प्रोडक्शन नेटवर्क पहले स्थापित हो और फिर विकसित हो, मार्केटिंग चैनल से स्थापित हों और किसानों तथा सहकारी संस्थाओं के बीच बीबीएसएसएल के प्रति विश्वास पैदा हो। मुझे प्रसन्नता है कि इन सभी क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण प्रगति करी है और 2025-26 को यह कहते हुए मुझे खुशी है कि यह बहुत तेज विकास का वर्ष भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के लिए रहा है। माननीय सदस्यों, वर्ष 2025-26 में बीबीएसएसएल ने लगभग 222.34 करोड़ का व्यवसाय किया, जो पिछले वर्ष 59.74 करोड़ की तुलना में 270% की वृद्धि दर्ज करता है। मानव संसाधन और प्रोफेशनल कैपेसिटी के ऊपर तेजी से इजाफा होगा, जैसा कि 2025-26 में 33 से बढ़कर 68 लोग हुए, इस साल ये संख्या 100 से ऊपर चली जाएगी और हम स्पेशलाइज्ड टेक्निकल मैनपावर को दे रहे हैं जो कि अपने अपने विषय में स्पेशलिस्ट हों और किसान के पास सही सीड और सही विपणन स्ट्रैटेजी के साथ हम निकलें। रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे, टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट को बढ़ाएंगे और फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित करेंगे ताकि किसान का विश्वास भारत बीज के साथ बने और बरकरार रहे।
0: इस अवसर पर भारतीय बीज सहकारी समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार ने सभी का स्वागत करते हुए अपने उद्बोधन में कहा।
2: निदेशक मंडल के सम्मानित सदस्यगण, हमारी सदस्य सहकारी समितियों के सम्मानित प्रतिनिधि लोग, हमारी और भी संस्थाओं से आए हुए माननीय सदस्यगण और मंचस्थ विशेष रूप से उपस्थित विष्टजनों का यहाँ आने के लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए उनका बहुत बहुत आभार और सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले मैं अपनी केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री को याद करना चाहूँगा, जिनके विशेष प्रयास से और जिनके विशेष निर्देशन में, नेतृत्व में 3 सहकारी समितियों का गठन राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट नोट से किया गया। एक बहुत ही साहसिक, बड़ा ही दूरगामी और बड़ा ही दूरदर्शी उनका उद्देश्य था और उस उद्देश्य के बारे में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर कहता हूँ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, उन्होंने क्या सोचा होगा, कितनी बड़ी दूरदृष्टि उन्होंने लगाई होगी कि हम अपना उत्पादन करेंगे तो ऑर्गेनिक उत्पादन करेंगे, हमारे पास सहकारिता में कोई एक्सपोर्ट की संस्था नहीं है तो हम एक्सपोर्ट की संस्था बनाएंगे और साथ में बीजों की कमी है देश में क्वालिटी सीड की, उसको पैदा करने के लिए एक संस्था बनाएंगे।

0: उसका नाम रखा भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड। आपको मित्रों याद दिलाना चाहता हूँ, जब पहली हरित क्रांति आई थी तो आपको शायद पता है, नहीं पता है, लेकिन मैं बड़े विश्वास से और बड़ी दृढ़ता से कह सकता हूँ कि उसकी पूरी की पूरी सफलता जो है वो सहकारिता के माध्यम की वजह से हुई थी। कि आंकड़े बताते हैं, सन 1980 या 1990 तक देश में जितना भी कृषि आदान, कृषि निवेश का वितरण होता था, उसका मूल स्तंभ ही सहकारिता था। हम लोग सब सहकारिता में एक बार संकल्प लें कि हम सहकारिता के माध्यम से गुणवत्ता युक्त बीज पैदा करेंगे और वो उसका माध्यम हमारी सहकारी समितियां होंगी। इससे आदर्श स्थिति कोई दूसरी हो नहीं सकती। माननीय केंद्रीय और गृह सहकारिता मंत्री जब हम लोगों की समीक्षा करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि भाई उत्पादन सहकारी समितियों से हो। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी सहकारी समितियां हैं, सभी किसान हैं, वो किसानों का हित अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उस आधार पे हमको वो आशीर्वाद दे सकते हैं, हमको गाइड कर सकते हैं, अगर हम कहीं गलती करें तो उसको सुधारने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये मैं आग्रह आपसे करना चाहता हूँ।
1: इस अवसर पर इफको के प्रबंध निदेशक ने भारतीय बीज सहकारी समिति के भविष्य और उर्वरकों के सही उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए कहा।
2: आप सभी का मैं इफको सदन के इस ऑडिटोरियम में इफको परिवार की तरफ से सादर अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है और बात है कि मुझे BBSSL की समिति के द्वारा यहाँ पर उपस्थित रहने का एक सौभाग्य मिला। जो सोच के साथ BBSSL की शुरुआत की गई, उसकी इस संस्था के जो बीज बोए गए हैं और उस बीज को आज मैं देख रहा हूँ कि केवल ये चौथी आम सभा है और आपके सामने आज जो हमने आंकड़े प्रस्तुत किए हमारे MD साहब ने, मुझे दिख रहा है कि हमारे BBSSL का भविष्य बहुत ही सुंदर, बहुत हम आगे ले जाएंगे संस्था। आज मेरे लिए भी एक बात करने का मौका है। मैं इफको संस्था के साथ जुड़ा हूँ पिछले 42 सालों से। ये संस्था हमारी जो इफको है वो किसानों के हित में कार्य कर रही है। ये केवल किसानों का हित नहीं, देश का हित है। आप सबको जानकर शायद सरप्राइज भी हो सकता है कि हमारे देश की जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट्स है ना, उसका करीब करीब आप अगर DAP की बात कर लें तो 70% केवल इफको बनाती है। यूरिया के बहुत सारे कारखाने हैं, लेकिन अगर इफको की बात कर लें तो हम लोग करीब करीब 20% यूरिया केवल इफको बनाता। देखिए, बात वहां नहीं रुकती है कि कहाँ कौन कितना फर्टिलाइजर बनाता है, बात वहां आकर उठती है कि ये फर्टिलाइजर का उपयोग कैसे हो रहा। आज हमारे देश के अंदर में केवल मैं यूरिया की बात करूं तो 4 करोड़ टन फर्टिलाइजर, यूरिया फर्टिलाइजर का हम लोग उपयोग कर। ये जो फर्टिलाइजर है, चाहे वो यूरिया हो चाहे DAP हो, ये बनाने के लिए जो सामान आता है ना वो विदेशों से आता है, बट उसके पीछे जो लागत होती है ना वो बहुत अधिक होती है। तो आज एक बोरा 4,500 रुपये का किसानों को DAP का 1,350 में और यूरिया का 266 रुपये में हमारी सरकार उपलब्ध कराती है। बाकी के पैसे सब्सिडी के रूप में जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी फर्टिलाइजर का जो उपयोग है वो वैसे हो जिससे कि कम से कम मात्रा में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग, और इसको यदि हमें कम करना है, ये पैसे जो हम सब्सिडी के विदेश से रॉ मटेरियल्स लाने में खर्च करते हैं, वही पैसे अगर हमारे देश के किसान अगर फर्टिलाइजर्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स से हट के धीरे धीरे धीरे धीरे अगर ऑर्गेनिक या स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स या मिनरल बेस्ड फर्टिलाइजर्स की तरफ अगर हम मुड़ेंगे तो ये पैसे हम बचा सकते हैं, और इन पैसों से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे रोड्स हो, चाहे हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स का निर्माण करना, इसमें हमारे देश की सरकार हमारे अपने ही सिटीजन्स के लिए, नागरिक के लिए, देश के नागरिकों के लिए उपयोग कर सकती है। तो हम सब मिल करके इस बात को हर किसान तक इसको पहुंचा, एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
1: भारतीय बीज सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक चेतन जोशी द्वारा सहकार बंधुओं के समक्ष 4वीं सामान्य निकाय की बैठक का वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत किया गया। सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर एजेंडा पास करने की स्वीकृति प्रदान की।
3: एजेंडा मैं अब आम सभा के सामने रखना चाहूंगा। एजेंडा नंबर

0: पिछले साल 27/9/2025 को आयोजित तृतीय वार्षिक आम सभा के मिनट्स ऑफ मीटिंग की पुष्टि। मिनट्स की प्रति एजेंडा नोट के पृष्ठ संख्या 4 से 6 पर अंकित की गई है। मैं जनरल बॉडी के समक्ष पुष्टि एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करता हूँ। एजेंडा नंबर 2, जनरल बॉडी की पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही को नोट करना। एजेंडा 6, पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संवैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति पर विचार करना एवं अनुमोदन प्रदान करना। कार्यवाही पूर्ण हो गई, संवैधानिक लेखा परीक्षक को दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तथा अनुपालन रिपोर्ट केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करना। कार्यवाही पूर्ण, वित्तीय विवरण तथा अनुपालन रिपोर्ट 7 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल की गई। जनरल बॉडी के संज्ञान हेतु प्रस्तुत।
1: जेपी सिंह प्रमुख सहकारी सेवाओं के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही नई दिल्ली के इफको सदन में आयोजित भारतीय बीज सहकारी समिति की 4वीं सामान्य निकाय की बैठक पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर शशि कपूर, सहयोग प्रताप सिंह भाटी, संयोजन शिव नंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
2: सुनील भाई, अभी हमारे साथी सुन रहे थे भारतीय बीज सहकारी समिति की 4थी वार्षिक आम सभा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्वर था शशि कपूर का, संकलन था प्रताप सिंह भाटी और प्रस्तुति थी तुषार पारासर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।
3: बिल्कुल, और देखिए भाई, अब जानकारी के बाद बात मनोरंजन की आती है, तो जैसा कि हमने कहा था भाई, काफी और फरमाइश हमें मिले। आज के हमारे अगले कलाकार हैं भूलन त्यागी, और भूलन त्यागी को सुनने के लिए पहले ही फरमाइश मिली है ग्राम रोजानी जिला महो बुलंदखंड से, और उसको भेजने वाले हैं उदयभान पाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल और उनका समस्त परिवार।
2: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
3: भूलन त्यागी से उपदेश सुनना चाहते हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और कैथल हरियाणा से मधु नायक।
2: अगली फरमाइश है हमारे पास बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
3: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से, उसको भेजने वाले निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू।
2: सुनील भाई, अगली फरमाइश आई है हमारे पास ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी की, और सुनना चाहते हैं भूलन त्यागी को।
3: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं भूलन त्यागी से ये उपदेश।

0: तो सुनील भाई, अभी हमारे साथियों की पसंद पर हमने सुनवाया बुलंद त्यागी को, और जैसा कि पत्रोत्तर पर आधारित ये कार्यक्रम है, सुनील भाई, एक पत्र हमारे पास आया है और ये पत्र लिखते हैं माधव राम, और ये माधव राम जो है माजरा हरियाणा से ये लिखते हैं और कहते हैं कि मैं सब्जी वाली मटर की बिजाई करना चाहता हूं, और इसकी बिजाई का सही समय क्या है, साथ ही इसके लिए कौन सी भूमि अच्छी है, इसकी उन्नत किस्मों के बारे में जरूर बताएं, सिंचाई आदि की क्या व्यवस्था करें जिससे भरपूर उत्पादन मिले।
1: माधाराम जी, सब्जियों की बात करें तो देखिए, सब्जी वाली मटर पहले नंबर पर आती है, और मटर की खेती करके किसान भाई अच्छी आमदनी ले सकते हैं। मटर की खेती के लिए जहाँ तक आपने सही समय की बात की है, तो देखिए 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का समय सबसे उचित माना जाता है। इसके अलावा भाई देखिए, अगेती व पछेती मटर की खेती भी की जा सकती है। जहाँ तक जमीन की बात है, तो देखिए भाई, अम्लीय भूमि को छोड़कर मटर हर प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है, लेकिन अगर दोमट मिट्टी मटर की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मटर की बुआई के लिए और बीज अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित माना जाता है, और फसल के विकास के लिए, बढ़ोतरी के लिए 10 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित माना जाता है। जहाँ तक उन्नत किस्मों की बात हो, तो देखिए सब्जी मटर की उन्नत किस्मों में पंत उपहार और जवाहर मटर 3 3 9, T56, NP 29, अर्ली वेजर बोनीवाल और जवार P4, काशी उदय आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के हिसाब से भाई भी आप उन्नत किस्म ले सकते हैं, और जहाँ से भी लें तो भाई उपचारित बीज लें, अगर बीज उपचारित ना हो तो उपचारित अवश्य कर लें। और सिंचाई की जहाँ तक बात है, देखिए प्रारंभ में मिट्टी की नमी के आधार पर 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई भाई फलियाँ बनने के समय करनी चाहिए। और माधवराव जी, इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई सिंचाई हल्की करें और फसल में अधिक पानी न ठहरे। जहां तक कटाई व मंडाई की बात है, तो मटर की फसल सामान्यतः भाई 130 से 50 दिनों में आपके बीज के हिसाब से पककर तैयार हो जाती है, और इसकी कटाई दराती से करना उचित माना जाता है, तथा 5-7 दिन धूप में सुखाने के बाद इसकी मड़ाई करनी चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे, उन्नत किस्म लेंगे, उपचारित बीज लेंगे, तो भाई आप ले पाएंगे मटर फसल से भरपूर
0: बहुत बढ़िया
1: उत्पादन।
0: जानकारी माधव राम भाई, आपको उम्मीद है कि ये जो जानकारी सुनील भाई ने आपको दी है, उम्मीद है कि आप इसका जो फायदा उठाकर आप अच्छे से मटर लगाएंगे, और उम्मीद रहेगी कि आपकी जो मटर की खेती है बहुत अच्छे से हो। साथ ही जैसे सुनील भाई, अभी हमारे जो अगले कलाकार हैं वो हैं विनोद कुमार, और उनके लिए जो हमारे पास जो फरमाइश आई है वो एक फरमाइश आई है जिला मुरादाबाद से, गांव दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली सिद्धेश्वर नगर से, और इसको भेजने वाले हैं पंजाब रामटेक, यशोधरा रामटेक और उनका समस्त परिवार।
0: एक और फरमाइश हमारे पास आई है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति, लविश प्रजापति और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है जटवाड़ा गाजियाबाद से आशीष पाल अकेला की।
0: अगली फरमाइश आई है हमारे पास विनोद कुमार को सुनने के लिए पटेल नगर मलोट से, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और उनके परिवार के सदस्य।
1: विनोद कुमार से उपदेश सुनना चाहते हैं, गांव खोकरवाली श्री गंगानगर से विनोद बारसा और रोशनी बारसा।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और उनका समस्त परिवार। साथ ही फरमाइश मिली है कस्बा बराड़ जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल की।
0: और अगली फरमाइश हमारे पास आई है MLB रोड ग्वालियर से, और ये फरमाइश आई है सुरेश खुराना पप्पी की, किरण खुराना, लाभ्या आरव, मेगा साक्षी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन प्रभजोत और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश जलादवाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और हमें फरमाइश मिली है भाई देखिए, मोहल्ला रूपनगर हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, सभी बेगम और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है गांव लोड़ा जिलापत से जगमोहन प्रजापति और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: एक और फरमाइश हमारे पास करावल नगर दिल्ली से आई है रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन जी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिले सिरसा हरियाणा से सुभाष लूना और उन समस्त परिवार की तरफ से।
0: गांव अली मोहम्मद जिला सिरसा हरियाणा से सुभाष लूना, उम्बती, चिंटू स्वामी और उनके परिवार के सदस्य।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है गांव उगाला अम्बाला अंबाला से इसको भेजने वाले राजेंद्र कुमार मलकीत और उनका समस्त परिवार।
0: एक फरमाइश मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की भी आई है।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिले गांव कुमार एड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर साइन हसन और उनके परिवार की तरफ से।
0: एक और फरमाइश हमारे पास एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट और उनके परिवार के सदस्यों की हम तक पहुंची है।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला और उनके समस्त परिवार की तरफ से, गोविंदगढ़ मांझी वाला से।
0: एक और फरमाइश आई है, ये आई है हमारे पास नरशाना भिवानी से जगदीश चंडालिया, राजवीर चंडालिया, सतीश चंडालिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं विनोद कुमार से ये उपदेश।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपने पसंद पर उपदेश सुना विनोद कुमार से। और देखिए, मौसम की बात करें तो भाई देखिए, मौसम विभाग के अनुसार जो आने वाले सप्ताह में धूप खिली रहेगी और बारिश की उम्मीद नहीं है। और साथ ही भाई देखिए, जो अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 32 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में देखिए भाई, जो भाई गेहूं की फसल लगाना चाहते हैं, अगेती बुआई करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। चना और मटर की बिजाई भी कर सकते हैं। और साथ ही सरसों की उन्नत किस्मों जैसे पूसा तारक, पूसा विजय, पूसा बोल्ड, करिश्मा की बुआई कर सकते हैं। और सब्जियों की बात करें तो भाई पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, चकुंदर और मटर की बुझाई कर सकते हैं। और गोभी वगैरह की फसलों में फूल गोभी, पत्ता गोभी की बिजाई कर सकते हैं। और भाई देखिए, खेत की गहराई ऐसे जुताई करें और सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं। बुआई से पहले मिट्टी की नमी और उर्वरक क्षमता की जांच अवश्य कर लें।
1: बिल्कुल। और कल आप बता देते हैं कल आने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल 5:10 पे कार्यक्रम रहेगा लोकरंजनी, वहीं 6:30 बजे का समय रहेगा ग्राम संसार का। बातचीत सुन सकेंगे, एक्जोटिक सब्जियां उगाने का सही तरीका, योजना रहेगी वोकल फॉर लोकल। 7:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम, बातचीत आपदा के समय फसल बीमा योजना, और योजना रहेगी फसल अवशेष प्रबंधन योजना।
0: तो भाई ये हमारा था आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा, अपने सुझाव एवं शिकायत अवश्य लिखें। और यदि आप अपना कोई जानकारी चाहते हैं तो भी अभी इस पते पर लिखें। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली 110001।
1: साथ ही हमारे साथी हमें मेल भी कर सकते हैं और मेल आईडी है feedback@fnh.gmail.com। जी हाँ, feedback@fnh.gmail.com।
0: इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदलाल। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे चहल पहल।
1: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। सुप्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका कलरव के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रिंट का कालजयी स्वरूप नामक एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रिंट की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध साहित्यकार अशोक चक्रधर ने कहा,
2: आकाशवाणी से मेरा बड़ा पुराना और घनिष्ठ नाता रहा है। 1967 में मैं आकाशवाणी का ऑडिशनड आर्टिस्ट था, फिर युववाणी में आया और अब मेरी वाणी आपके सामने मुखरित हुआ चाहती है चहल पहल के लिए कलरव करते हुए। चहल पहल का और कलरव का तो संबंध है ना आपस में, तो ये कलरव मजे मजे में हमें उस इतिहास को जानना है जो प्रिंट मीडिया का इतिहास है। अब जो प्रिंट मीडिया है उसका जो स्वरूप है वो अधुनातन प्रविधियों को प्राप्त करते हुए इंटरनेट की दुनिया में आ गया है और अब संवाद संप्रेषण एक त्वरित गति से तत्काल घटित होने वाला काम है कि आपको तत्काल समाचार मिल जाएगा, तत्काल सूचना मिल जाएगी। तो वो जो प्रिंट मीडिया है अब तो दर्शनीय भी है, श्रवणीय भी है। तब केवल प्रिंट मीडिया था जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते थे। तो भला हो एक संस्था का जो फोर्ट विलियम कॉलेज था जिसमें चार लेखक थे जो लिखा करते थे, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खान, सदा सुखलाल नियाजी, ये लोग थे, लिखते थे। अब छपने की प्रविधियां भी आने लगी और उदंत मारतंड नाम का एक अखबार प्रकाशित हुआ जो बहुत दिन नहीं चला। संकट क्या था कि छाप तो लिया, बांटेगा कौन, पोस्ट कैसे होगा, पोस्ट अगर करेंगे तो खर्चा कितना होगा, उतने खर्चे में तो

0: बाहर निकाल लेंगे, भेजेंगे कैसे। तो उन समस्याओं से जूझता हुआ आज इस चरण तक आ गया है कि हम तत्काल, आपने यहाँ रिकॉर्ड किया मुझे और आप इसे इंटरनेट से अपनी स्टूडियो को भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। और तत्काल हमारे भारतवर्ष के सारे श्रोता हैं या कार में चलने वाले लोग हैं, अगर FM पे होगा तो वो तत्काल आपकी चहल पहल जान लेंगे कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो प्रिंट मीडिया हमारा अनेक चरणों में रहा है, वो एक वृहद इतिहास है। उदंत मार्तंड से लेकर आज निकलने वाले जितने भी समाचार पत्र हिंदी के हैं, रायपुर में से तो रायपुर शहर ऐसा है वहां सर्वाधिक अखबार प्रकाशित होते हैं, सबके पास इंटरनेट है। गांव गांव में हम AI से बात करने वाले लोगों को मिल सकते हैं। तो अब हम आगे से पीछे की ओर चलें कि पीछे से आगे की ओर चलें। संक्षेप में मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रारंभिक चरण था ये भारतेंदु के आने के बाद में थोड़ा नवजागरण की ओर बढ़ा। फिर द्वेदी युग आया तो उन्होंने भाषा के परिमार्जन पर, व्याकरण निर्माण पर, भाषा के मानकीकरण पर काम किया और जो समाचार छपते थे कवि वचन सुधा में वो अब यहाँ परिनिष्ठित होने लगे। फिर उसके बाद आया जिसमें कि आजादी पानी थी, तो ऐसा भी होने लगा कि जो पत्रकार हैं उनको बंद भी कर दिया जाता था कि ये ऐसा समाचार क्यों आपने छाप दिया। फिर हमें मिल गई आजादी। आजादी के लिए ये था कि जो जनतंत्र हमने बनाया है इसको अक्षुण्ण कैसे रखें। तो कुल मिला के आजादी के बाद हम धीरे धीरे धीरे धीरे अब आप समझ लीजिए एमरजेंसी तक आ गए, जहां पत्रकारिता को बहुत तगड़ा ब्रेक लगा। फिर एक भूमंडलीकरण का दौर 90 के दशक में आया और फिर चीजें आवागमन करने लगी देश विदेश। कोई ऐसा नहीं रहा कि बाहर की प्रगति की छाया हमारे तक नहीं आई हो, हमने उसका प्रयोग न किया हो। खुला बाजार हो गया तो खुला अखबार हो गया, उसके पास साधन सुविधाएं आ गई। प्रिंट मीडिया में ऑफसेट का अवतरण हुआ कि कितनी ही लाखों में आप प्रतियां निकाल सकते हो। टेक्नोलॉजी बदली, फिर ये टेक्नोलॉजी फिर 10 साल बदली। सन 2020 में कंप्यूटर के क्षेत्र में, वर्तनी के क्षेत्र में और कीबोर्ड्स के क्षेत्र में हम कलम छोड़ बैठे और टाइपराइटर ले आए।
1: संगोष्ठी में आमंत्रित विशिष्ट अतिथि आलोक पुराणिक कहते हैं।
2: आलोक पुराणिक मेरा नाम है, व्यंग लेखक हूँ और आर्थिक पत्रकार हूँ। देखिए, प्रिंट यानी छपित शब्द, इसकी एक अपनी महत्ता है और इंटरनेट युग के बावजूद इसकी अपनी महत्ता है। इंटरनेट या दूसरे चैनल्स का जो माध्यमों का जो जोर है वो स्पीड पर है, सबसे तेज। विश्वसनीयता उनका मुख्य बिंदु नहीं है, लेकिन विश्वसनीयता, ऑथेंटिसिटी, वो आज भी हम तलाशते हैं प्रिंट में। वो किताबें हों, जैसे कि मैं अगर शोध कार्य कर रहा हूँ अम्बेडकर साहब के लेखन की, तो ऐसे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं कि आपको एक विषय पर उनकी क्या राय थी आपको इंटरनेट पर दिखा दिया जाएगा। लेकिन विश्वसनीयता के लिए मुझे वो छपी किताबें रेफर करनी पड़ेंगी, तो वॉल्यूम 8 या वॉल्यूम 9 कहाँ है। तो अभी भी आप देखेंगे कि जिन मोबाइल एप्लीकेशंस की या टीवी चैनल्स की और माध्यमों की जो विश्वसनीयता है वो उनकी है जिनका ताल्लुक एक जमाने के प्रिंट के पब्लिकेशंस है। तो इंटरनेट कहें या नई तकनीक कहें, इसने गति तो बहुत दे दी है मगर विश्वसनीयता उनकी भयंकर है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि शोध के कार्य से, गंभीर कार्य से, जहां हमें रेफरेंसेस देने हैं, जहां हमें अपनी क्रेडिबिलिटी कायम करनी है, प्रिंट था, प्रिंट है और प्रिंट रहेगा।
1: कलरव पत्रिका के गौरवशाली 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रोशनी डालते हुए पत्रिका के संपादक अनिल तिवारी बताते हैं।
3: कलरव पत्रिका की शुरुआत आज से 20 साल पहले 6 सितंबर 2006 को की गई थी। हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को इसे प्रकाशित किया गया था। तमाम उतार चढ़ाव के बाद पत्रिका लगातार 20 साल से निरंतर छप रही है। पत्रिका का प्रकाशन जब शुरू किया गया था तब यह तय किया गया था कि पत्रिका किसी एक मुद्दे पर केंद्रित करके निकाली जाएगी। प्रारंभ से लेके अब तक पत्रिका अपने लक्ष्य पर टिकी है और पाठकों के बीच अपनी जगह भी बनाई है। 20 साल होने पर यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब स्पीकर हॉल में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि रोज रोज बदलते इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आ जाने और तकनीक के विकसित होने के कारण, आजकल तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी जोर है, यह शंका जताई जा रही है कि प्रिंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन हम लोगों का मानना है कि प्रिंट कालजयी है, प्रिंट पहले था, अब है और आगे भी रहेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है ताकि लोगों में एक जागरूकता बढ़े, लोग प्रिंट को लेकर के जागरूक हों, खुद भी पढ़ें, दूसरे को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें।
1: आयोजित संगोष्ठी में ज्योतिष विद्या पर आधारित ज्योतिष जीवन पथ का विज्ञान नामक एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए लेखक अरुण कुमार मिश्र ने कहा,
4: कलरव प्रकाशन के 20वें वर्ष पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई है। साथ ही हमारी रचना ज्योतिष

0: जीवन पथ का विज्ञान इसका लोकार्पण है। ग्रंथ कलरव प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ की रचना को चार क्रम में किए हैं। प्रथम भाग ज्योतिष का वास्तविक स्वरूप 1 से 25 अध्याय में, जीवन की समस्याएं जो कि 26 से 50 अध्याय में, 51 अध्याय से 75 अध्याय तक जो तृतीय खंड है वह ज्योतिष के उपाय और व्यवहारिक पक्ष। ग्रंथ का चतुर्थ खंड है ज्योतिष से जीवन दर्शन। इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि ग्रंथ का वास्तविक स्वरूप से आरंभ होकर जीवन की समस्याओं, उनके उपायों और व्यवहारिक पक्षों से गुजरते हुए जीवन दर्शन की एक क्रमबद्ध वैचारिक यात्रा प्रस्तुत करता हूँ। हम चाहते हैं कि पाठक इस ग्रंथ को केवल एक ज्योतिषीय पुस्तक के रूप में न देखें, बल्कि इसे भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के प्रश्नों और मानवीय विवेक के संबंध में विचार करने का एक प्रयास करते हुए पढ़ें। हमारे लिए ज्योतिष मनुष्य के पुरुषार्थ का विकल्प नहीं है। हम यह नहीं मानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के समस्त उत्तरदायित्व ग्रहों के ऊपर छोड़ दे, स्वयं को कर्म से विमुख कर दे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्टतया कहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। उसे कर्म फल के प्रति आसक्ति में बदकर कर्म नहीं करना है, अकर्मण्यता से आसक्त नहीं होना चाहिए। हमारा ग्रंथ रचना का यही उद्देश्य है।
1: और इसी कार्यक्रम में अपने अनुभवों को साझा करते हुए एक अतिथि बताती हैं।
2: मेरा नाम स्वाति है, मैं खुद कवित्री हूँ, शिक्षिका भी हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। और कलरव के कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह की ध्वनि करती हुई ये 20 साल के सफर को आगे बढ़ा रही है, और इस तरह से हमारे आपके बीच में प्रिंट मीडिया एक्चुअली जिस तरह से समाज में इंटरनेट एक तरह से सूचना की क्रांति लेकर के आई है, और लोग सोशल मीडिया पे इस तरह से आदत होती जा रही है, जिस तरह से हम हैबिचुएटेड होते जा रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि अब किताबें पढ़ना, पत्रिकाएं पढ़ना थोड़ी कम हो गई है। उस बीच में प्रिंट मीडिया के भविष्य को लेकर के हम सब अगर थोड़ा सा सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना करके अगर इस पे अगर हम ध्यान दें तो बहुत अच्छा भविष्य बन सकता है। इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें जितने मूर्धन्य और बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, सब विद्वान हैं, विद्वत जनों को सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: और इसी के साथ अब आज का चहल पहल का ये अंक संपन्न होता है। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग रहा श्रीनाथ दीक्षित का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चहल पहल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज। शाम के 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: दी, ये देख कैसे?
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
5: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
7: RBI कहता है
8: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
10: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
11: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत आज दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं के लिए EKYC अभियान शुरू किया। अभियान के अंतर्गत अधिकृत कर्मी घर घर जाकर उपभोक्ताओं की जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में जम्मू कश्मीर और राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद आज तालकटोरा स्टेडियम में 4th राज्य पैरा तैराकी चैंपियनशिप

0: गोंडा और कोंडली में लगाए गए। अगला विशेष शिविर कैंप 11 अक्टूबर को लगाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम बदला है। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं के लिए EKYC अभियान शुरू किया गया है। जल बोर्ड ने बताया कि अभियान के अंतर्गत अधिकृत कर्मी घर घर जाकर उपभोक्ताओं की जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। साथ ही बोर्ड ने उपभोक्ताओं को सतर्क करते हुए अपील की है कि EKYC के लिए आने वाले किसी व्यक्ति को पैसे या उपहार न दें। ऐसी मांग होने पर तुरंत 1916 हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही OTP, आधार या अन्य संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी किसी के भी साथ साझा न करें और जानकारी सिर्फ अधिकृत अधिकारी को ही दें। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली में सड़कों पर धूल और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में 35 किलोमीटर लंबे 25 सड़क मार्गों की जांच की गई है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली इन सड़कों पर जांच के दौरान 17 जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। इनमें निर्माण और तोड़फोड़ से निकले मलबे का जमाव और सड़कों पर अधिक धूल शामिल है। आयोग ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों को धूल पर नियंत्रण के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि वायु प्रदूषण रोकने के उपायों के क्रियान्वयन की जांच के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन एयर के अंतर्गत निरीक्षण जारी रहेगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
3: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और इसने सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा है कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों के कारण अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रही है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति को बरकरार रखा है।
4: मुझे लगता है कि यह विकास दर काफी उत्साहजनक है। पिछले 3 वर्षों पर नजर डालें तो हम लगातार 7% से अधिक की दर से वृद्धि कर रहे हैं। पहली तिमाही के आंकड़ों में भी यह देखा जा सकता है जिसमें 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में जम्मू कश्मीर और राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के भेष में व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से

0: पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट किया और उससे 6 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। मामले की जांच के बाद पुलिस ने यह पाया कि एक आरोपी के खाते में लगभग 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। साथ ही अलग अलग राज्यों की 10 राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP शिकायतों से जुड़े होने का भी पता चला। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक आरोपी को पालमगांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 1 एयर गन बरामद की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों की ओर से पुलिस कर्मियों पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध नियंत्रण शाखा को सौंप दी है। आरोप है कि ये घटनाएं कल नई दिल्ली इलाके में एक प्रदर्शन के दौरान हुई, जब पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में दिल्ली की विभिन्न रामलीला समितियों के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान रामलीला समितियों ने मुख्यमंत्री को अपने अपने आयोजनों में शामिल होने का निमंत्रण दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि रामलीला दिल्ली की आस्था, संस्कृति और भगवान श्री राम के संस्कारों की जीवंत परंपरा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल रामलीला आयोजनों के लिए सिंगल विंडो मंजूरी, समयबद्ध NOC और विभागों के बीच समन्वय की व्यवस्था की गई थी। इस साल इन व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाया जा रहा है ताकि रामलीला समितियों को आयोजन में सुविधा हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज हरेवली गौशाला के नवनिर्मित भवन और 45 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये सौर संयंत्र गौशाला को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में एक सार्थक पहल है। गौ माता को सनातन संस्कृति की चेतना बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ सेवा और गौ संरक्षण की चिरंतन परंपरा को आगे बढ़ाना सांस्कृतिक दायित्व है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: यह आकाशवाणी है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सेवा सेतु शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर का उद्देश्य सीतापुरी क्षेत्र में नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं और सुविधाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार जनसेवा को सरल, सुलभ और जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सीतापुरी में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद आज तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित 4थी दिल्ली राज्य पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2026 में शामिल हुए। उन्होंने पैरा खिलाड़ियों के जज्बे, उनकी प्रतिभा और खेल भावना की सराहना की। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और मजबूत मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वो अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियानों ने देश भर में दिल्ली में खेलों को लेकर लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया है।
2: दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के द्वारा आयोजित इस स्विमिंग कंपटीशन के लिए मैं एसोसिएशन के पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं और दिव्यांगता कोई बाधा नहीं है, ये अपने आप में हौसलों को टेस्ट करने का मौका है। दिल्ली सरकार इस एसोसिएशन को यथासंभव जो मदद कर सकती है जरूर करेंगे।
0: कनॉट प्लेस में आज राहगीरी डे और संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी और दिल्ली पुलिस के विशेष यातायात आयुक्त अजय चौधरी ने साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिलिंग कार्यक्रम के लिए श्री सूद के साथ एशियाई खेल 2026 के पदक विजेता नवरेम रोशिबिना देवी, जय मीना और सुचिका तरियाल हुड्डा भी शामिल हुए।
3: इस दौरान कनॉट प्लेस का इनर सर्किल वाहन मुक्त रहा और दिल्ली वासियों ने साइकिलिंग, योग, जुम्बा, बैडमिंटन, क्रिकेट

0: नृत्य और अन्य गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन तथा सार्वजनिक स्थलों में जनभागीदारी को बढ़ावा देना था। श्री सूद ने कहा कि राहगिरी केवल व्यक्तिगत फिटनेस की पहल नहीं बल्कि यह समग्र रूप से दिल्ली के स्वास्थ्य और कल्याण का उत्सव है। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग पर्यावरण संरक्षण का एक सशक्त माध्यम है क्योंकि यह न केवल वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान देती है बल्कि शारीरिक फिटनेस स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार शहर भर में समर्पित साइकिल ट्रैक विकसित करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुराग नामदेव।
1: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत आज दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं के लिए EKYC अभियान शुरू किया। अभियान के अंतर्गत अधिकृत कर्मी घर घर जाकर उपभोक्ताओं की जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में जम्मू कश्मीर और राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद आज तालकटोरा स्टेडियम में 4th राज्य पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2026 में शामिल हुए। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज राहगीरी डे और संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हिंदी पखवाड़े के शुभ अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली और विश्व हिंदी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आकाशवाणी दिल्ली के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित कवि सम्मेलन के संपादित अंश। इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं प्रसारण कर्मी श्री पार्थ सारथी तपलियाल।
3: उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जब हिंदी का पखवाड़ा मना रहे हैं तो इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यालयों में अलग अलग गतिविधियां होती हैं। उन गतिविधियों में एक गतिविधि ये भी होती है कि हम कवि सम्मेलन या कवि गोष्ठी या कोई परिचर्चा करते हैं। आज के इस कवि सम्मेलन में हमारे साथ जो कवि हैं तो अभिनव पहला नाम है और फिर जो है मनोज कुमार शुक्ल जी अभिदा हैं, फिर ऋचा बनर्जी हैं, देवी प्रसाद मिश्र जी हैं, सुबोध भारद्वाज जी हैं, दिनेश प्रसाद ध्यानी हैं, साथ में जो है रजनी सेन है जो कि अपने अपनी कविताएं यहाँ पर सुनाएंगे। अभिनव भारद्वाज एक संवेदनशील और विचारशील लेखक हैं जिनके रचनाओं में आत्मा की गहराई, जीवन की नजाकत और समय की परतें झलकती हैं। कविता उनके लिए केवल एक संवाद नहीं है बल्कि एक पुल है। उनके शब्द उन भावनाओं को आवाज देते हैं जिन्हें अक्सर लोग खुद भी महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। खुशी की तलाश में जिंदगी गुजर गई, उम्र तो ढल गई मगर खुशी किधर गई। अभिनव भारद्वाज।
4: मैं अक्सर जीवन के ऊपर लिखता हूँ या फिर जो भी मुझे दिखता है रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, तो मैंने एक कविता लिखी है हिंदी के ऊपर, उसी से शुरुआत करेंगे। हम हिंद देश के वासी, हिंदी हमारी भाषा है, चुनौतियों से लड़ती मानवता की उम्मीदों भरी एक आशा है। कहीं दिनकर के वीर रस से सुशोभित, कहीं सुमित्रा नंदन के प्रेम की अभिलाषा है। कभी हरिवंश ने दर्शन पिरोया तो कभी गुलजार ने जीवन तराशा है। हम हिंद देश के वासी, हिंदी हमारी भाषा। युग बदले संसार भी बदला, बदली शब्दों की परिभाषा है, स्वरूप भी बदला इस हिंदी का, देखा समय का सारा तमाशा है। कल भी थी आज भी है ये, कल भी थी आज भी है ये, और कल भी यही आशा है। चाहे जितने रंग बदल ले, हिंदी भारत की परिभाषा है। हम सब हिंद देश के वासी, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी भाषा है। अब वो खुशी ढूंढ रहे थे तो सुनिए, खुशी की तलाश में

0: जिंदगी गुजर गई, उम्र तो ढल गई मगर खुशी किधर गई। रोज पहिए की तरह घूमता रहा था मैं, रोज पहिए की तरह घूमता रहा था मैं। एक शाम माँ ने पूछ लिया, बेटा हंसी किधर गई। रोटी कपड़ा और मकान, बस इतना सा फलसफा, बस शोर में उलझा रहा पर शांति किधर गई। वक्त की चाल में ढलता ही गया था मैं, वक्त की चाल में ढलता ही गया था मैं। इस झूठ के नकाब में वो असलियत किधर गई। इश्क भी रुसवा हुआ फिर किसी मोड़ पर, जिस्म तो रह गया मगर वो रूह किधर गई। जिंदगी की शाम को बस रात की है आरजू, आखिर सवाल यही रहा, ये जिंदगी किधर गई, जिंदगी किधर गई।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था कि युवा दिल की धड़कने होती हैं, वो अलग धड़कती हैं। कविता के माध्यम से इस सफर को और आगे बढ़ाएंगे, और मैं आमंत्रित करता हूं अब रजनी सेन को, जो कि एक अनुभवी एंकर, लेखिका, कवियत्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। आपको विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ 20 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है, और हिंदी से इनका जबरदस्त प्रेम है। अपनी बात इस तरह से कहती हैं कि धीरे धीरे मन की सारी गांठें खोल रही हूँ, कानों से नहीं हृदय से सुनना, कानों से नहीं हृदय से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। आपका स्वागत है रजनी सेन।
2: हिंदी मेरे और आपके हृदय की भाषा है, मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, लेकिन सबसे अधिक ये एक हृदय को दूसरे हृदय से जोड़ने की भाषा है। तो इसी भाषा को नमन करते हुए मैं यहाँ ये काव्य पाठ शुरू कर रही हूँ। धीरे धीरे मन की सारी गांठें खोल रही हूँ, कानों से नहीं हृदय से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। मेरे मन की पीड़ा अब जागेगी तेरे मन में, मेरे मन की पीड़ा अब जागेगी तेरे मन में, मेरे सुख के बेर भी अब टपकेंगे तेरे आंगन में। मेरे शब्दों का ताप चढ़ेगा तुझ पर हौले हौले, मेरे शब्दों का ताप चढ़ेगा तुझ पर हौले हौले। ढाई आखर प्रेम के गाकर मैं नब्ज टटोल रही हूँ, कानों से नहीं हृदय से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। शब्द मेरे हैं सपन सुनहरी रात की गोद से कूदे, शब्द मेरे हैं राग सुबह का सुनना आंखें मूंदे। शब्द मेरे हैं रजनी गंधा जीवन की रात में महके, शब्द मेरे हैं आस परिंदा जीवन की भोर में चहके। जीवन की कड़वाहट में थोड़ी मिसरी घोल रही हूँ, कानों से नहीं हृदय से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। शब्द झरे अब मोती बनकर यही मन की अभिलाषा है, इस भाषा का मौन भी सुंदर हिंदी मेरी प्रिय भाषा है। थाम के इस बोली की उंगली, थाम के इस बोली की उंगली, नए द्वार में खोल रही हूँ, कानों से नहीं हृदय से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। दूसरी कविता कि लिखो की कहानी है बाट जोहती, लिखो की कहानी है बाट जोहती, कागज के आंचल पे टांको तो मोती, लिखो की अफसाने कब से कराहते, बयां होना चाहती कविता है रोती। लिखो की गीतों का अंबर है सूना, लिखो की गीतों का अंबर है सूना, लिखो की सियाही का शोक है दूना, गीतों के धागों में सदियां पिरो दो, जला दो अंधेरे में आखर की ज्योति। लिखो लिखो भी कि लोरी में घुल जाए मिसरी, लिखो भी कि लोरी में घुल जाए मिसरी, लिखो भी कि गुड़िया की माला है बिखरी, लिखो भी कि चंदा को मामा है बनना, लिखो भी कि सूनी है जादू की नगरी। लिखो लिखो भी कि कान्हा की बंसी तो बाजे, पाती हो प्रेम की राधा जो बाचे, सीता का कोई संदेशा ले आए, कांस पे आखर के फूल खिलाए। लिखो लिखो ना कि पक गई है मौन की फसलें, लिखो ना कि पक गई है मौन की फसलें, लिखो ना कि सुनने को आतुर है नस्लें, लिखो कि अतीत है आधा अधूरा, भरो उनमें स्याही करो गीत पूरा। लिखो कि दहरी के भीतर की चीख, मांगे है तुमसे शब्दों की भीख, लिखो ना कि अंधियारे मन की पीड़ा, बनकर कविता तोड़ेगी लीक। लिखो कि किसी को हिम्मत सी आए, लिखो लिखो ना किसी को कि हिम्मत सी आए, टूटे हृदय में साहस सा आए, मिला क्या है तुमको यू मौन रहकर, लिखो अब की ऐसा की जग मुस्कुराए, लिखो अब की ऐसा की जग मुस्कुराए। एक अपनी अंतिम कविता कि क्या सोचा था मैंने कि जामुन के गुच्छों को तोड़कर, जामुन के गुच्छों को तोड़कर झट झोली में भरना था, और घुइया की ओस की बूंदे संदूकों में धरना था। जाने क्या क्या सोचा था और जाने क्या क्या करना था। झालर वाली फ्रॉक

0: पहन के फूलों वाला ताज सजा, झालर वाली फ्रॉक पहन के फूलों वाला ताज सजा, वहीं पे अपना महल बनेगा जहां पे बहता झरना था, जाने क्या क्या सोचा था और जाने क्या क्या करना था। नन्ही तितली रानी बनकर गुड़हलपुर की सैर करूं, नन्ही तितली रानी बनकर गुड़हलपुर की सैर करूं, फूलों पर ही जीना था और फूलों पर ही मरना था, जाने क्या क्या सोचा था और जाने क्या क्या करना था। रेत की गीली चूनर से सीपों के तारे चुन चुन कर बड़े जतन से उन तारों को जूड़े में अपने जड़ना था, जाने क्या क्या सोचा था और जाने क्या क्या करना था। बैठ के जिसकी डालों पर चिड़िया के घर में झांका था, बैठ के जिसकी डालों पर चिड़िया के घर में झांका था, उसके कटने से पहले उसको बाहों में भरना था, जाने क्या क्या सोचा था और जाने क्या क्या करना था।
1: वो कविता ही अर्थपूर्ण है जो कहीं ना कहीं भावों को जो है दिल तक पहुंचा दे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कविता सुनाने के लिए। और अब सुबोध भारद्वाज, साहित्य में बचपन से ही रुचि रही है आपकी और 1983 से लगातार लिखते चले जा रहे हैं। दर्शन, अध्यात्म, प्रेम, विरह, प्रकृति चित्रण और प्रकृति के मानवीकरण जैसे विषयों पर आपके लेखन के प्रति बहुत रुचि है। लेकिन बात तो यह है कि दमकता रहा देश अपना यहाँ, आंधियां भी आई लाखों, मगर हौसलों ने न झुकना सीखा इधर, घाव इतिहास के वो भरते गए, देश को वो सदा चमकाते रहे। और अब चमकाने की बात आपकी है, यहाँ पर सुबोध भारद्वाज जी सादर आमंत्रित हैं।
2: देश की बात हुई है तो देश की बात करते हैं। भारत भू पर शीश धरूं और प्राणन को बलिदान करूं, मात पुकारे जबरन में तब हंस निज जीवन दान करूं, अरि अध सीमा लांग चले तब वज्र समान विधान करूं, भारत की जय बोलत ही तन मन धन सब कुर्बान करूं। अब जब भारत की बात है तो भारत तो मेरा देश है, तो मैं आज फिर उसकी वसीयत कर देता हूँ। कहते हैं ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ, खून पसीने से सींचा है, मैं तुमको विरासत करता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। सीमा पर जो गिरते देखे वे फूल नहीं चिनगारी हैं, सीमा पर जो गिरते देखे फूल नहीं चिनगारी हैं, उनकी शहादत की लौ से ये दुनिया सारी हमारी है, उनके सपनों का बाग तुम्हें सिर माथे पर धरता हूँ, भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। नदियों की तहजीब संभालो, नदियों की तहजीब संभालो, नदियां रूठ गई तो जानो, सूखे खेत और सूखे मन दोनों रोते और हारे हैं, गंगा जमुना के जल जैसा मैं सभी में घुलता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से पहले मनुष्य बन जाना, कर्म धर्म से ऊपर है इसे दिल में उतार लेना, असली पूजा तो सेवा है बस इतना याद करवाता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। भाषा बोली चाहे गलती हो या सुर में थोड़ा फर्क रहे, पर दिल में भारतवाद रहे तो शब्द हमेशा ठीक रहे, एकता को मत टूटने देना बस इतना आदेश मैं धरता हूँ, भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। अंतिम संदेश लिख जाता हूँ शोषित की आवाज बनोगे, दबे कुचले के साथ रहकर अन्याय के विरुद्ध बोलोगे, इस भीगते आकाश के नीचे सबको अपना घर दोगे, तो समझो मैं अमर हूँ और मैं तुम पर नाज करता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। माटी भारत माँ की देन है ये इसे न गिरवी कभी रखना, तिरंगे की लकीरें तीनों इंसानियत और कानून से रखना, सिर ऊंचा करके जा रहा हूँ, अभय सौंप कर जाता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। हिंदी की पहचान बचाना, हिंदी का सम्मान करो, माँ के मुख की मधुर वाणी का सारे जग गुणगान करो, ज्ञान विज्ञान कला साहित्य में इसका मान बढ़ाओ तुम, अपने शब्दों के दीप जलाकर तम का तिमिर हटाओ तुम, जन जन की भाषा हिंदी को जन जन की आवाज करो, जन जन की भाषा हिंदी को जन जन की आवाज करो, नई पीढ़ियों के हाथों में इसका सुंदर ताज धरो, मातृभाषा के इस गौरव को मैं तुम पर अर्पित करता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ, ये भारत देश तो मेरा है, मैं इसकी वसीयत करता हूँ। अभी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां बोली वही।

0: समय भारत देश की है वो भी, कि दीप जलते रहे राह दिखाते रहे, दीप जलते रहे राह दिखाते रहे, और जगमग करता रहा कारवां, कदम बढ़ते रहे स्वप्न सजते रहे, और दमकता रहा देश अपना यहाँ, दीप जलते रहे। सीमा पर वो दुश्मन भगाता रहा, सीमा पर वो दुश्मन भगाता रहा, वीर हर पल तिरंगा उठाता रहा, नींद आंखों से अपनी चुरा कर सदा शांति का गीत संगीत गाता रहा। हम सुरक्षित रहे और वो तपते रहे, हम सुरक्षित रहे और वो तपते रहे, गूंजती ही रही उनकी कुर्बानियां, कदम बढ़ते रहे स्वप्न सजते रहे, और दमकता रहा देश अपना यहाँ। खेतों में कोई पसीना बहाता रहा, खेतों में कोई पसीना बहाता रहा, ज्ञान का दीप कोई जलाता रहा, शब्द बनकर किसी की कलम से सदा, शब्द बनकर किसी की कलम से सदा, वो देश को सदा वो चमचमाता रहा। रंग थे तो अलग, रंग थे तो अलग, पर वो मन से जुड़े और खिलाता रहा एकता का जहां, कदम बढ़ते रहे स्वप्न सजते रहे, और दमकता रहा देश अपना यहाँ। आंधियां भी आई लाखों मगर, आंधियां भी आई लाखों मगर, हौसलों ने न झुकना सीखा इधर, घाव इतिहास के वो भरते गए, घाव इतिहास के वो भरते गए, देश को वो सदा चमकाते गए। हम बढ़ाते कदम, हम बढ़ाते कदम, स्वप्न सजते रहे, और गाता रहा देश अपना यहाँ, कदम बढ़ते रहे स्वप्न सजते रहे, और दमकता रहा देश अपना यहाँ। श्रम की धुन में कोई गाता रहा, नव सृजन का वो दीपक जलाता रहा, साहित्य और विज्ञान की राह पर भारत को जग में सजाता रहा। जोर अपनों की थामे बढ़ते कदम, और अपनों की थामे बढ़ते कदम, गूंजता ही रहा कर्म का गाना यहाँ, कदम बढ़ते रहे स्वप्न सजते रहे, और दमकता रहा देश अपना यहाँ। अंतिम संदेश में, आने वाली पीढ़ी जब भी चले, आदर्श की मशालें वो लेकर चले, त्याग सेवा समर्पण की ही राह पर, देश की ही शान वो बढ़ाते चले, सूरज सा उजाला करे हर दिशा, गूंजता ही रहे देश सारे जहां, कदम बढ़ते रहे स्वप्न सजते रहे, और चमकता रहा देश अपना यहां, दीप जलते रहे।
1: सुबोध भारद्वाज जी ने कई तरह के रंग यहां पर बिखेरे हैं, और ये उनके उस अनुभव को बताता है कि हिंदी की सेवा जिस तरह से वे शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे उत्तर में जो अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, उत्तर में हिमालय है और हिमालय से आए हैं। स्वागत करेंगे हम दिनेश ध्यानी जी का। हिंदी गढ़वाली साहित्य संवर्धन के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं। पहाड़ों से मैदानों में उतरे, विस्तार दिया मैदानों को, और गंगा भी ऐसी ही उतरी थी, वह विश्व पदा कहलाई थी, उसी को कोस रहे हैं, तुमने क्या कर डाला। अब आप ही बताए कि क्या कर डाला, आप ही की कविता का एक अंश है ये, दिनेश ध्यानी।
2: जैसा कि आपने कहा कि कोसी तुमने क्या कर डाला, ये मेरी कविता कोसी को मैंने एक मानक रूप में लिया है कि बिहार में बहुत बाढ़ आती कोसी पे, लेकिन नेपाल से लेके उत्तराखंड से लेके तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो एक वानगी आपके सामने रखता हूँ, कोसी तुमने क्या कर डाला, घर परिवार बोर और डंगर सबको बनाने वाला, कोसी तुमने क्या कर डाला, कोसी किस खातिर ये तांडव, किस खातिर यह मौत का मंजर, हमने जो सपने देखे थे पल में उनको तुमने तोड़ा, तुमने अपना पथ क्यों मोड़ा, कोसी तुमने क्या कर डाला, घर परिवार ढोर और डंगर सबका बनाने वाला। मेहरू की बेटी के सपने, पीले हाथों की ये मेहंदी, कंगना और माथे की बिंदी, तैर रही है लाश में उसकी, उसके सपनों का क्या होगा, कोसी अपनों का क्या होगा। माँ से बेटा बहन से भाई, अपना घर और अपने पराए, पल में सबका किया बिछोहा, तनिक जरा तो सोचा होता, इस बस्ती का हाल क्या होगा, इस बस्ती का हाल क्या होगा। बस्ती में मानवता बस्ती, गांव खेत और सपने अपने, कल तक किलकारी थी घरों में, पल में सुना पन भर डाला, कोसी तुमने क्या कर डाला। पानी उमड़ा सर से ऊपर, डूबे घर और गांव नगर सब, भागे अपनी जान बचाने, घेर घेर कर सबको मारा, कोसी तुमने क्या कर डाला। लाशों का अंबार लगा है, सूनी बस्ती सड़ता पानी, कल तक घर थे हैं अब खंडहर, सबको पल में क्यों हर डाला, कोसी तुमने क्या कर डाला। कोसी तुम तो शांत नदी थी, तुमसे जीवन वन उपवन धन, बस्ती और नगरों में बहकर हमको तुम रसपान कराती, हमको जीवन सार बताती, फिर क्यों बनी तुम बिस्की हाला, कोसी तुमने क्या कर डाला। और अंत में है, सूनी आंखें बंजर बस्ती, पेड़ पे लटका बस्ता तक थी, कहाँ गए ये बस्ते वाले, कहाँ खो गए हैं घर वाले, कैसा तूने ये रथ डाला, कोसी तुमने क्या कर डाला। और एक रचना है, हर व्यक्ति का अपना नजरे होता है, क्या क्या भाव आते हैं उसमें, एक वानगी देखिए। जिंदगी कभी धूप कभी छांव, गर्म रेत पर नंगे पांव, कभी शहर कभी गांव, अपनत्व की छांव। जिंदगी ओस पर चलने का एहसास, कभी आम कभी खास, कभी दूर कभी अपने अपनों के पास। जिंदगी एक बंद किताब, आधी अधूरी बात, कभी घात अपघात, कभी पूस की ठंडी रात। जिंदगी अपनों की चाह, बहुत कठिन राह, कभी एकदम सपाट जैसे बोरी की टाट। जिंदगी पथरीली जमीन, पानी बिन मीन, कभी धरती की माटी, कलम और पाटी। जिंदगी अधरों की प्यास, उम्मीदों की बारात, रेत पर लिखी इबादत, कभी कभी अधूरी बात। जिंदगी गांव की सौंधी महक, धान की बालियों की चमक, कभी मुंडेरों पर पसरी घास, बुने भुट्टों की बास। जिंदगी गांव का पंजेरा, स्कूली बस्ता, पहाड़ी रास्ता, बचपन की बात, विष्णु से मुलाकात। जिंदगी पहाड़ का जीवन, पहाड़ों से लड़ती औरत, ममता की मूरत, पहाड़ की चमकाती सूरत। जिंदगी बचपन की यादें, माँ बाप के सपने, कभी भाई बहन की कस्में, रीत रिवाज और रस्में। जिंदगी स्कूल के वो दिन, घास पात खेती पाती, हंसिया और दराती, दूर प्रदेश से आती पाती। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कई बार शब्द चमत्कृत कर देते हैं, और कई बार जो है कहने वाला अपनी बड़ी बात को भी छोटे शब्दों में बहुत बड़ा आकार दे जाते हैं। भारत का साहित्य और संस्कृति राम और कृष्ण के बिना हो नहीं सकता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीलामय, तो पलकों से मैं बुहार दूं पथ आज राम का, दिल में जो बसे थे सामने आ गए, मेरे राम आ गए। आइए डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल उपाख्य अविदा की रचना सुनते हैं,

धन्यवाद। एक आपके सामने चित्र खींच रहा हूँ, एक सैनिक है जिसका विवाह हुआ है, विवाह के पश्चात वो जाता है, पत्नी से वापस कह के आता है कि मैं आऊंगा। जब उसका ताबूत आता है तो इस स्त्री की क्या मनोदशा होती है?

0: ス、マハヌデシュキ。アヌジャネ、ナディ、イス、マハヌデシュキ。マルミタデシュパルジャン、ブルバーキア。ケヘガヤブ、キワパス、ジョアウンガメ。
1: तो दो दृश्य हमने देखे हैं और दोनों का ही अलग अलग दृश्य है और अलग अलग भाव है और जो सीधे दिल तक उतरता है. तूफान के थम जाने के बाद कितना विचित्र लगता है सड़कों पर गुजरना, पत्तियों के ढेरों को रौंदते हुए चुपचाप चलना. उस सरसराहट को जब हम फील करते हैं तो हम जो है सीधे ऋचा बनर्जी साहिबा को हम आमंत्रित करना चाहेंगे. ये बताना चाहते हैं कि वे विश्व हिंदी परिषद दिल्ली की अध्यक्ष हैं और आप माखनलाल चतुर्वेदी परिवार से जो है हैं. सभी साहित्यिक पत्रिकाओं में कविताएं, लेख, संस्मरण, कहानियां प्रकाशित हो चुके हैं और मुझे सामाजिक परिवेश और पारिवारिक संबंधों पर प्रेरित रहती हैं इनकी रचनाएं. मैं आमंत्रित करता हूं आप आएं और अपनी रचना सुनाएं.
2: मेरी कविता का शीर्षक है प्रतिदान. एक तूफान के थम जाने के बाद कितना विचित्र लगता है सड़कों से गुजरना, पत्तियों के ढेरों को रोंगते हुए चुपचाप चलना, डरे हुए चेहरों पर उड़ती हुई मुस्कुराहट भांपना और लड़खड़ाते पैरों से खोई हुई शक्ति को संचित

0: करने का एहसास लिए मकानों के पास से गुजर जाना। क्या तुम बता सकते हो जब नब्ज की हरकत रुक जाती है तो परिवार और डॉक्टर को कैसा लगता है? अचानक भयानक बिल्ली का चूहा बन जाना या खौफनाक डाकू का वाल्मीकि में बदल जाना और लंबे वर्षों के बाद कारावास से मुक्त होना। अच्छा लगता है किसी परिचित का नाम लेकर पुकारना और उसे समीप पा जाना, या जिंदगी के उस लम्हे में जब सब व्यस्त होने का नाटक करते हैं स्वयं को बेकार की गुत्थियों में उलझाए रखना। ये कविता का नहीं सच का इतिहास है। ये मोड़ सकता है दिशाओं को, घृणा से जलते हुए दो व्यक्तियों को, और कदाचित मोड़ सकता है रास्ते अपने आत्मीय होने के विश्वास में। ये विश्वास बहुत ढूंढने से भी कहीं मिलता है, और मिलता है तो वह छीनता नहीं है कुछ, अपितु वह तो देता है स्नेह और शक्ति। ये जो मैं आपको अपनी कविता पढ़ने जा रही हूँ, खामोशी शीर्षक है। सारे शहर में ये कैसा अंधकार समाया, अनगिनत तस्वीरें दीवारों में समा गईं, सुर्खियों में लिपटी हुई शाम की हल्की धुंद सिमटती गई काली बजरी की सड़क पर, या उस आसमान की ओर जो नजर आता है इस बेरंग दीवार की ओट से। वह इस दरख्तों के खामोश शहर को नया नाम देना चाहती है और बदल देना चाहती है उस चीखती संस्कृति को जिसने रोज नए विभीषण पैदा किए, और शताब्दियों से गूंजती हुई शंखनाद की ध्वनि को सड़कों पर बेतहाशा दौड़ती हुई स्त्रियों के विलाप में बदल दिया। कर दी गई मानवीय संवेदनाओं की हत्या और सरेआम बदल दिए नैतिक मूल्य। इस नए युग ने सब कुछ बदल दिया, ऋतुओं के रंग बदल गए, खड़े रहे देवदार के वृक्ष मौन और उदास, पूरा शहर एक बस्ती में बदल गया और बदल गया आत्मबोध। आओ हम इस बदली हुई संस्कृति को नया रूप दें और उतार फेंके मुरझाई हुई मुस्कानों की परत या बेरंग खामोश आकृति।
1: भावपूर्ण प्रस्तुति आपके सुनी है, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: कि शब्दों में जिनके उजियारा, भावों में संस्कार मिले, हर पंक्ति में जीवन दर्शन, हर छंद में सत्कार मिले, अर्जुन के सारथी की लेखनी का ये वैभव देखो, सूखे मन के आंगन को भी उनसे नव अभिसार मिले, उनसे नव अभिसार मिले। मैं बुला रहा हूँ पारसार्थी जी को। पारसार्थी जी,
1: भारद्वाज जी ने बात शब्द की है, तो शब्द शब्द में रस की धारा, शब्द शब्द में भाव अपार, मधुरिम स्वर में गूंजे हिंदी, हिंदी का अद्भुत शब्द भंडार, कहीं प्रेम की कोमल सरगम, कहीं वीरता की हुंकार, कहीं भक्ति की निर्मल गंगा, और कहीं ज्ञान का अद्भुत सार। तत्सम तद्भव देशज शब्दों का है इसमें सुंदर संसार, लोक जीवन से लेकर वेदों तक मिलता इसका शब्द विस्तार। कबीर की साखी की सादगी, तुलसी का मंगल उद्गार, मीरा के पद सूर का सागर, शब्दों से शोभित भंडार। शब्द नहीं ये संस्कृति के दीपक, शब्द नहीं ये जीवन का सार, विश्व मंच पर नित्य प्रकाशित हिंदी का शब्द बृहद आकार। तो आपने शब्द से बात की थी, शब्द से ही हम बात अपने करें। उत्तंग शिखरों से उठे भारत का जयगान, दशों दिशाएं गा रही भारत का यश गान, मात पिता सम्मान का भारत में प्रतिमान, गुरु चरणों में ज्ञान है गुरु से बढ़ता मान, सत्य वचन जीवन बने सत्य रहे व्यवहार, मीठे वचन मन जीतते बढ़ता प्रेम अपार, अतिथि देवो भव रहा भारत का संस्कार, आगत का सम्मान ही ईश्वर का सत्कार, योग साधना ने दिया तन मन को विज्ञान, आयुर्वेद ने विश्व को जीवन का वरदान, भाषा वेश अनेक हैं फिर भी एक विधान, विविध रूप में एकता भारत की पहचान, नारी को सम्मान मिले घर का रखे ध्यान, माँ बहना

0: बेटी बहू सबको भगवती जान, श्रम को पूजा मानकर कर्म बने संधान, श्रम से अर्जित द्रव्य ही नित्य बढ़ाए शान। ऋषि परंपरा की धरा संतों का सम्मान, त्याग तपस्या साधना बढ़े ब्रह्म का ज्ञान। एक कविता छोटी सी है, गिरना किसी इंसान का तब समझ आया, जब आदमी सब हदें तोड़ आया, न नाते न रिश्ते फकत मैं ही मैं हूँ, न नाते न रिश्ते फकत मैं ही मैं हूँ, दुनिया है मुझसे मैं दुनिया से नहीं हूँ। ये पर्वत ये नदियाँ और मौसम भी बदले, दिलों की दुआएं और छलावे भी बदले, बदलता है मौसम इंसान बदला, बदला है बदले से इंसान बदला, बदलते जमाने ने रफ्तार बदली, बरगद बन गए तुम और रहे हम कली। निगाहें हैं बदली नजारा है बदला, निगाहें हैं बदली नजारा है बदला, धनवान होते ही एहसान बदला। गिरने से औकात का पता है चलता, कोई गिरता है ठोकर से कोई है फिसलता, कोई गिरता है आंखों से कोई दिल से उतरता, इंसानियत न होती तो कभी ना संभलता। गिरने में ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती, कोई निगाह से गिरता है ऊंचाई कहाँ रखती है, मर्यादा से गिरा कब कौन कहाँ उठता, गिरने की औकात का तब पता चलता। विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवी प्रसाद जी मिश्र, भारतीय संस्कृति, राजभाषा हिंदी और भाषाओं के संवर्धन और विकास के प्रति आप जो है समर्पित व्यक्तित्व हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा और वैश्विक भाषा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं।
1: मेरी जो कविता है हिंदी भाषा हिंदुस्तान की, लिखी गई भारत की गौरव गाथा जिस भाषा में, वह भाषा हिंदी हिंदुस्तान की, प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो, सीख दिया जिस भाषा ने वह भाषा हिंदी हिंदुस्तान की, जन जन के अधरों में रहती मिठास जिस भाषा की, वह भाषा हिंदुस्तान की, सूर तुलसी कबीर की वाणी का संगम जिस भाषा में, वह भाषा हिंदी हिंदुस्तान की, आजादी का बिगुल बजा जिस भाषा में, वह भाषा हिंदी हिंदुस्तान की, भारत छोड़ो का जय घोष दिया जिस भाषा में, वह भाषा हिंदी हिंदुस्तान की, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की अजस्र ऊर्जा दिया जिस भाषा ने, वह भाषा हिंदी हिंदुस्तान की, अमर शहीदों को प्राणहूत की प्रेरणा दी जिस भाषा ने, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की, उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम आजादी का अलग जगह जिस भाषा में, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का बिगुल बजा जिस भाषा में, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की, करो या मरो का बिगुल बजा जिस भाषा में, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की, राष्ट्र गौरव छिपा जिस भाषा में, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की, संस्कृत भाषा है जननी जिसकी, वो भाषा हिंदी हिंदुस्तान की।
0: विश्व हिंदी परिषद और आकाशवाणी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले कवि थे श्री देवी प्रसाद मिश्र, श्रीमती ऋचा बनर्जी, डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल अभिधा, श्री दिनेश प्रसाद ध्यानी, श्री सुबोध कुमार भारद्वाज, श्रीमती रजनी सैनी, अभिनव भारद्वाज, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी पखवाड़े के शुभ अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली और विश्व हिंदी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आकाशवाणी दिल्ली के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित कवि सम्मेलन के संपादित अंश। इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे थे प्रसारण कर्मी श्री पार्थ सारथी थपलियाल।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी

हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और लीजिए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुरमुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय

0: श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
2: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणि मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर

0: निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
1: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
1: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
3: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वज वाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
6: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
5: Citing the Quad as an example, Dr. Jaishankar said it demonstrates cooperation among middle powers with an established major power.
6: Today, in a maritime space, in the Indo-Pacific space, we have Quad as an example of, I would say, emerging middle power cooperation with an emerged power. A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India, Middle East, Europe connectivity corridor, the international north-south transport corridor, even the polar route, the northern sea route could be the subject of cooperation.
5: Second Principal Secretary to the Prime Minister Shaktikant Das has said restoration of the health of the financial sector has been the defining feature of India's resilience in recent years. He was speaking at the

0: Minister Narendra Modi extended compliments to every member of the Indian contingent for representing the nation with determination, passion, and remarkable sporting spirit. In their messages, the Vice President and the Prime Minister congratulated all the medal winners and expressed hope that these games inspire even greater achievements in the years ahead and strengthen sports at the grassroots too. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over coastal and south interior Karnataka, Kerala, Mahi, Tamil Nadu and Puducherry for the next 2 to 3 days. The IMD said thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds may prevail over Andhra Pradesh, Telangana, Uttarakhand and Tripura tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं हबीबुर रहमान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख से ज्यादा मकानात सुपुर्द किए जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपए है। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले आदमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा हल्के के लिए जिमनी चुनाव की मुहिम अपने अख्ताम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी। ईरान ने कहा है कि अबनाई हुरमुस उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं कर देता। ईरान का इरादा है कि वो अपने मिसाइलों की किस्मों में इजाफा करेगा और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई एक तकरीब के दौरान अपने अख्ताम को पहुंचे। भारत 85 तमगों के साथ 4th मकाम पर रहा, उसने सोने के 21 तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बैनुल अक्वामी अमनो सलामती, सप्लाई चेन की मजबूती और कनेक्टिविटी वो अहम शोबे हैं जिनमें उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतें अहम रोल अदा कर सकती हैं। डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में 62वीं म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि दुनिया, इसका एजेंडा और इसका जोग्राफियाई व सियासी मंजरनामा, ये सब अहम तब्दीलियों के मरहले से गुजर रहे हैं जिससे उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का एक खातिरखा माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह सब अमरीका की एक नई हैसियत कायम होने, चीन के तरक्की करने और बढ़ते हुए आलमी इन्हिसार के मुतरादिफ है।
2: देयर इज टुडे अ सब्सटेंशियल एजेंडा फॉर इमर्जिंग एंड मिडिल पावर्स टू कोऑपरेट। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट्स एजेंडा इज चेंजिंग, द लैंडस्केप इज चेंजिंग, द आर्किटेक्चर इज चेंजिंग। And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: क्वाड को एक मिसाल के तौर पर पेश करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इससे औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का इजहार होता है।
2: Today in a maritime space, in the Indo-Pacific space, we have Quad as a example of, I would say, emerging middle power cooperation with an emerged power. A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India, Middle East, Europe connectivity corridor, the international north-south transport corridor, even the polar route, the northern sea route.

की जा रही हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके की जिमनी चुनाव की मुहिम आज खत्म हो गई। मंगल को इन 6 सीटों के लिए पोलिंग कराई जाएगी और वोटों की गिनती जुमा को की जाएगी। असेंबली हलकों की पोलिंग तमिलनाडु में मधुरांतकम और धारापुरम, पुडुचेरी में थट्टन चाउड़ी और मगरबी बंगाल में रेजीनगर नीज नंदीग्राम में कराई जाएगी। आसाम में पोलिंग नावगांव लोकसभा हलके में कराई जाएगी। ये असेंबली सीटें मौजूदा कानून साज अरकान की तरफ से इस्तीफा दिए जाने की वजह से खाली हो गई थीं, जबकि नौगांव लोकसभा सीट कांग्रेस रहनुमा प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। इसी दौरान बीजेपी ने दिनेश आर्या को उत्तराखंड में राज्यसभा के 2 साल में 1 बार होने वाले आइंदा इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। बीजेपी ने रुक्मिणी मलिक का नाम मगरबी बंगाल में राज्यसभा के जिमनी चुनाव के अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नीज मगरबी बंगाल में जिमनी पोलिंग इस महीने की 16 तारीख को कराई जाएगी। अदादोशुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत के सेक्रेटरी सौरभ गर्ग ने आज कहा है कि भारत की इकतसादी मजबूती, जिसे कारपोरेट की जानिब से पुख्ता कारकर्दगी और मुस्तकिल सरमायाकारी की मदद हासिल है, अब मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी एजेंसियों के भारत की तरक्की से मुतालिक तखमीनों से ऊंचाई की तरफ बढ़ती हुई जाहिर हो रही है। नई दिल्ली में कौटिल्य इकतसादी कॉन्क्लेव से अलग नामा निगारों से बात करते हुए जनाब गर्ग ने कहा कि भारतीय मईशत ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% शरह तरक्की हासिल करने के बाद अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि भदोही जिला अब संत रविदास नगर भदोही के तौर पर जाना जाएगा। भदोही में मुनाकिदा आज एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि नए नाम से कुरून उस्ता के साधु संत और समाजी मुसलह संत रविदास की जिले से वाबस्तगी का इजहार होता है। इस मौके पर वजीर आला ने 1,340 करोड़ रूपये के 112 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। भारत और कनाडा कल से ओटावा में जामे इक्तसादी शराकतदारी के अपने मुजव्वजा मुआहदे CEPA के बारे में 5वीं दौर की मुदाकरात शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तजारती मुआहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों के आला मुजाकरातों की क्यादत में ये 5 रोजा मुजाकरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। गुज़िश्ता दौर की बातचीत नई दिल्ली में पिछले महीने 18 तारीख को मुकम्मल हुई थी, जिसके तहत अफसरान कतई मुआहदे की जानिब तेज तर पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस साल मार्च में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हममनसब मार्क कार्नी ने तय किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान CEPA के मुजाकरात साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में अपनी मीटिंग के दौरान तवानाई और अहम मैदानियात के शोबों में दो तरफा तालमेल में गहराई लाने से इत्तफाक किया था। एशिया के शोबे में भारत कनाडा की दो तरफा तजारत 2024-25 के दौरान 8.66 अरब अमरीकी डॉलर थी, जबकि इससे मुल्क के लिए भारत की बरामदात 4.22 अरब अमरीकी डॉलर थी। ईरान ने कहा है कि अबनाए हुरमुज उस वक्त तक दोबारा नहीं खोली जाएगी जब तक अमरीका उन 7 शर्तों को पूरा नहीं कर देता जो जून के एक अबूरी मुआहदे में पेश की गई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने आज पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने पर ईरान का मौकिफ पूरी तरह वाज़ह और मुसम्मम है। उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं हो जाएंगी। ये शर्तें इस्लामाबाद मुफाहमतनामे पर मबनी हैं। इसके अलावा ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्रामीनिया ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ अपनी हालिया जंग के बाद अपने मिजाइलों की तादाद में इजाफा करेगा। एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तनाजे से ईरान की यह जरूरत उजागर हो गई है कि वो तवील दूरी की मिजाइल तैयार करे और मुल्क ने इस तरह के इकदाम शुरू कर दिए हैं। स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमिलिन भारत के 3 रोजा दौरे के लिए कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। वह आला सतही वफ्द, सीनियर सरकारी अफसरान और कारोबारी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। वजीर आजम मोदी और सदर परमिलिन मुख्तलिफ मामला समेत दो तरफा ताउन में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बाहमी बातचीत करेंगे। जापान के आइची नागोया में मुनाकिदा शानदार तकरीब के साथ एशियन गेम्स इख्तिताम पजीर हो गए। इस दौरान 43 खेलों के लिए 2 हफ्तों से ज्यादा जारी रहने वाले सनसनीखेज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इख्तितामी प्रोग्राम में रवायती तौर पर खिलाड़ियों की परेड, एशियन गेम्स के परचम को उतारने और 2030 के मेजबान शहर दोहा को बाजाब्ता तौर पर मेजबानी सौंपने की

तकरीब शामिल थी। एशियन गेम्स की अलामत समझे जाने वाली मशाल और परचम कतर के नुमाइंदों के हवाले किए गए, जिसके साथ अगले एशियाई खेलों की मेजबानी की बाबता तौर पर मुंतकली अमल में आई। इख्तामी तकरीब में भारतीय तिरंगा उठाने का एजाज शूटिंग की उभरती हुई भारतीय खातून खिलाड़ी नीरो धांडा को हासिल हुआ। सोने के दो तमगे जीतने वाली नीरो ने इस काबिले फख्र लम्हे में भारतीय दस्ते की कयादत की। भारत मजमुई तमगों की फेहरिस्त में चीन, जापान और जनूबी कोरिया के बाद चौथे मकाम पर रहा। भारतीय दस्ता 85 तमगों के साथ वतन वापस लौटा, जिनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। ये एशियन गेम्स की तारीख में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तमगों की तादाद है। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख से ज्यादा मकानात सुपुर्द किए, जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपए है। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले आत्माइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी चुनाव की मुहिम अपने अख्ताम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई तकरीब के दौरान अपने अख्ताम को पहुंचे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और

0: दृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा है कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के अधिकारी अब इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के इच्छुक हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भदोही जिले का नाम अब संत रविदास नगर भदोही होगा। उन्होंने भदोही में एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 1,340 करोड़ रुपए से अधिक की 112 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन तक मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान जताया है। रायगढ़ और रत्नागिरी में भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। हालांकि कल से कोंकण क्षेत्र में मौसम के ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jayashankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi yesterday.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्य रात्रि के 1:10 हुए हैं। आपकी दोस्त कीर्ति आपके साथ है कार्यक्रम गीत सुनहरे लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे जो आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं बसे हैं, और बस इस कार्यक्रम के माध्यम से उन यादों को ताजा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला गीत आपके लिए आ रहा है मुकेश की आवाज में।
1: किसी की मुस्कान।

मुकेश की आवाज के बाद अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत फिल्म काला पानी से। इस गीत के बोल लिखे थे मजरूह ने और संगीत से पिरोया था एस डी बर्मन ने।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे।

0: और अगला गीत फिल्म 20 साल बाद से हेमंत कुमार के स्वर में, आइए सुनते हैं।
1: नजरों से कह दो जी,

0: गीत सुनहरे कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत के बोल मजरूह ने लिखे थे और संगीत ST बर्मन ने दिया था।
1: मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
2: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
2: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे
2: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
2: सोच लो।
1: सोच लिया।
2: और अगर ना कर सकी तो?
1: हार मान जाऊंगा।
2: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
1: क्या?
2: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
1: टोकरी?
2: मंजूर?
1: मंजूर। काम तो बताइए।
2: जरा सोच तो लू।
1: हाँ।
2: वो देखते हो वो?
1: हाँ हाँ।
2: क्या?
1: मुर्गी।
2: हाँ पकड़ लाओ।
1: मुर्गी?
2: हाँ।
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।
2: ओक, ओक, ओक, ओक, ओक, ओक, ओक, ओक।

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त कीर्ति के साथ, और अगला गीत जो हमारी फेहरिस्त में है वो हम आपको सुनवाएंगे फिल्म गाइड से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

और अगला गीत फिल्म श्री 420 से। मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में श्री, आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

और अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म हम दोनों से अगला गीत आ रहा है। गीत के बोल साहिर ने लिखे थे और संगीत जयदेव का है। आइए सुनते हैं जो आपका दिल हमारे लिए कह रहा है।

0: आखिरी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। फिलहाल समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को

0: एक दूसरे से जोड़ती है।
1: रियली इज अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस।
2: उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के अधिकारी अब समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के इच्छुक हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलेन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलेन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को कल 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस भूमि पर किसी भी प्रकार की अनुचित और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के नेता अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के अवसर पर कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राष्ट्र विरोधी ताकतें पूरे देश में सक्रिय हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय युवा मंच माई भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर इंटेलिजेंस फोर्स नामक नई सरकारी कार्यबल की घोषणा की है। यह कार्यबल संघीय सरकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जुड़े प्रयासों के बीच समन्वय का काम करेगा। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जे क्लेटन के नेतृत्व वाले इस कार्यबल में संघीय व्यापार आयोग, रक्षा विभाग और कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज और चमक के साथ वर्षा तथा बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पवार। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle class can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi yesterday. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers.
4: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
3: The minister

ये चेहरा ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: गीत के साथ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलेन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के अधिकारी अब समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के उत्सुक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की पांच विधानसभा सीटों तथा असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 23 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ये चुनाव स्नातक और शिक्षा निर्वाचन क्षेत्रों की पांच सीटों के लिए होगा। भाजपा ने पुणे संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से स्मिता जाधव, नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सुधाकर कोहले और पुणे संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कौस्तुभ गावड़े को उम्मीदवार घोषित किया है। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतिम समझौते में निर्धारित सात शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने अगले एक दो दिनों तक मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान जताया है। रायगढ़ और रत्नागिरी में भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। हालांकि कल से कोंकण क्षेत्र में मौसम के ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट और सिंधुदुर्ग में बुधवार और बृहस्पतिवार को हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गढ़चिरौली के कुछ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले एक दो दिन के लिए कर्नाटक, केरल, माही और तटीय आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi yesterday. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred packing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Dr. Jaishankar termed the Russia-Ukraine conflict as unfortunate, saying that India's position has been very clear and that it would like to see an end to this conflict. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will hold bilateral discussions in New Delhi today.

पहली बार एक गजल पेश कर रहा हूँ जो उर्दू बहर या मीटर के बजाय हिंदी छंदों के वजन है। उम्मीद है ये तजुर्बा आपको पसंद आएगा। मुलाहिज़ा फरमाएं।

श्रोताओं, इसी के साथ है गीत और गज़लों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइन न्यूज़ 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4:20 हुए हैं। ये वक्त है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम का। लीजिए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे शीरगाजी एस गोविंदराजन का रागम कल्याणी में गायन। आपके साथ वायलिन पर हैं तिरुप्परल करल एस वीरर राघवन।

0: இசைந்த தாண்டவ மூகில்.
1: इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म अब यहीं संपन्न होता है. नमस्कार.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 5 अक्टूबर 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकेंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी ही देर में ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे गौ मुखासन के बारे में। 5:20 का वक्त है देशभक्ति गीतों का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी आप सुन सकते हैं 5:30 पर। प्रातः 6:10 का वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री कृष्ण नीति, राजनीति और आध्यात्म का समन्वय।

0: 6:45 का वक्त है श्री रामचरितमानस से पाठ का। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 69। राधे 7:10 पर आप सुन सकते हैं संगीतिका कार्यक्रम। आज के संगीतिका में आप सुनेंगे सुकृति सेन के भजन। 7:30 का वक्त है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा, इसका वक्त रहेगा प्रातः 8:45। नौ बजकर 15 मिनट पर सुनेंगे आप आर गेस्ट। 9:30 का वक्त है कार्यक्रम मिट्टी दी महक का और 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। तो ये थी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलिन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर खतरा था, उस समय रूस ने कई तरह से भारत का साथ दिया। नई दिल्ली में हुए 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश भारत के पड़ोस में सैन्य शासन का समर्थन कर रहे थे, तब रूस के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंधों पर इस ऐतिहासिक विरासत का गहरा प्रभाव है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। आजादी के

डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। डॉ सिंह इस वर्ष 13 मई को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की गाथाओं को उजागर करने वाले छोटे पोस्टर जारी करेंगे। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र को भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य पर गर्व है जिन्होंने समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे योग गौमुखासन के बारे में।
1: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें। यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठे। हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर

एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती हैं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें। गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंधासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें। बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को